सुप्रभात। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 जुलाई सन 2026। प्रातः के 5:56 हुए हैं और हमारी आज की प्रसारण सेवा अब आरंभ हो रही है।

0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। अब श्रोता सुने समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।
2: अब जैसे जालंधर है, यहाँ की पहचान खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तख्त श्री केशगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारी संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देवोभव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंचे। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिससे सिंधु को वॉकओवर मिल गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

0: मन ठीक है ही, तुम्हें ठीक करने की जरूरत नहीं है। मन और विचार एक हैं, अलग नहीं हैं, क्योंकि मन से ही विचार आते हैं। जब मन अशांत हो तो गाने बजाने और भजन करने से मन ठीक हो जाएगा। ध्यान करने से मन साफ होता है। जैसे पानी गंदा है, पानी में हलचल है, तो हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते हैं। ठीक उसी तरह मन में हलचल है तो हम अपना स्वरूप नहीं देख पाते, इसलिए ध्यान करना जरूरी है। जब कोई आपके साथ कुछ समय के लिए रहता है तब उसके जाने पर मन दुखी हो जाता है, क्योंकि आप इस दौरान उस व्यक्ति से बंध गए। आप जब ज्ञान में उतर जाओगे तो पता चलेगा कि आप न बनते हैं न ही दुखी होते हैं। मन हमेशा नीचे की ओर जाता है, गलत कामों और विषय वासनाओं में। मन को मारो नहीं, सुधारो, साफ करो। जब मन साफ होता है तो भक्ति, निष्ठा और प्रेम का उदय होता है। प्रभु ने आपको अपार प्रेम दिया है, घुट घुट कर क्यों जीते हो? प्रेम से जियो। प्रेम अनुभव की चीज नहीं है, वो स्वयं अपने आप में है। जब आप किसी से मिलते हो, मिलते ही खूब हंसते हो, खुश होते हो, इसके लिए आपने कोई प्रयत्न तो नहीं किया। ये अनुभव हुआ या अपने आप हुआ? प्रेम मांगने से कम होता है, देने से बढ़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति प्रेम चाहता है। प्रेम चाहने से नहीं, देने से होता है। देखने से, मिलने से प्रेम होता है। प्रेम से प्यार हो जाता है, प्यार से त्याग हो जाता है, और फिर त्याग ज्ञान में बदल जाता है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी हर बात बहुत ध्यान से सुनते हैं। उसका हर काम, हर बात बहुत ही अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। सबसे प्रेम करो, सब सुंदर लगेंगे। प्रेम व्यक्ति से मत करो, उसके आत्मा से, चेतना से करो। व्यक्ति से प्रेम करोगे तो आसक्त हो जाओगे, उलझन पैदा होगी और फिर उलझ जाओगे। तुम्हें हमें कुछ नहीं करना पड़ता। परमात्मा ने बहुत प्रेम दिया है, जितना बांटते हैं उससे 10 गुना बढ़ता है। ज्ञान और प्रेम के रास्ते में चलने से ऐसा देखने में आया है कि जो इस रास्ते को अपनाता है वो आनंद, प्रेम और खुशी पाता है। प्रेम में डूब जाना ही जीवन है, प्रेममय हो जाओ। मनुष्य का प्रकृति की ओर से स्वभाव प्रेम का ही है, ये न घटता है न ही बढ़ता है। ये उसी प्रकार है जैसे पानी का स्वभाव है शीतल रहना।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन मनोविकार, वाचन स्वर था विनय ध्यानी का। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ मातृवंदन के साथ।

समूह स्वरों में गाए इस मातृवंदन के बाद आइए अब आरंभ करते हैं प्रभु आराधना। प्रथम पूज गणपति वंदना के साथ। हे गणनाथ गणेश, आप गुणों और ज्ञान के अथाह भंडार हैं। शुभ कार्यों में आप प्रथम हैं। हम श्रद्धा भक्ति के से आपका स्मरण कर रहे हैं। आप हर बाधा को दूर करने का वचन दीजिए। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर भक्त के जीवन में मंगल कीजिए।

हे प्रभु, आपका दिव्य धाम मनोहर है। मंद, शीतल और सुगंधित हवा मन को शांति और आनंद से भर रही है। आपके प्रेम से सजा ये मंदिर प्रेम भक्ति से ओतप्रोत हो रहा है। आपके पास ही बहती ये गंगा उस स्थान की पवित्रता को और भी बढ़ा रही है और आपके होने का आभास हमें सभी सांसारिक चिंताओं से दूर कर रहा है और आपके समीप ला रहा है।

हे भोले शंकर, आपका ये दिव्य रूप जिस पर भस्म लगी है वैराग्य और नश्वरता का प्रतीक है। गले में लिपटा विषधर निर्भयता और प्रकृति पर आपके नियंत्रण को दर्शा रहा है। आपकी जटाओं से निकली पवित्र गंगा की धारा संसार के कल्याण का संकेत है और मस्तक पर विराजमान चंद्रमा शीतलता और शांति का प्रतीक है। आपके इस कल्याणकारी रूप को हम बार बार प्रणाम कर रहे हैं।

हे माँ शिरोवाली दुर्गा, हमारी भक्ति को स्वीकार कर जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति दीजिए। हम भक्त श्रद्धा और प्रेम से आपके चरणों पर अपना शीश झुका रहे हैं। आप अपनी कृपा से हमें दृढ़ और सही मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दीजिए।

इसी मसीह भजन के साथ वंदना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रातः के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति।

पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ के अवसर पर अपने पति शिव के अपमान के कारण सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला था। आत्मदाह के समय उन्होंने भगवान से ये वर भी मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव के चरणों में उनका अनुराग बना रहे तथा अगले जन्म में पति रूप में उन्हें शिव की ही प्राप्ति हो। इसी इच्छा के फलवती होने के लिए उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता मैना के संशय के बावजूद पार्वती ने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। तपस्या में ऐसा मन लगा कि शरीर की सुधि बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने कंद मूल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिता दिए। कुछ दिन मात्र जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया।

अभी श्रोता सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की आज की प्रस्तुति। गायक कलाकार थे सुधा मल्होत्रा और रामकृष्ण। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण, आज की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का।

रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट, रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

प्रातः 7:30 पर शैल संगीत कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुनेंगे कविता देवी के गाए जौनसारी लोकगीत। प्रातः 8:30 पर सूचना परक कार्यक्रम होगा नमस्कार देहरादून। सुबह 10:02 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा लम्हे। 10:35 पर लोक संगीत में आज हमारे श्रोता सुनेंगे रफल सिंह की गाई रागिणियां। और सुबह 11:00 श्रोता अपनी फरमाइश की फिल्मी गीत सुनते हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में।

आज दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत में श्रोता सुनेंगे शान ए आलम और साथियों से कव्वाली। दोपहर 12:30 पर आज बहनें सुनेंगी कार्यक्रम महिला जगत। इस कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी श्रीमती रुचिरा जोशी की वार्ता, बेटी को दहेज नहीं शिक्षा और सुरक्षा करें भेंट। ये कार्यक्रम एक बार पुनः समय नोट कर लीजिए, दोपहर 12:30 पर हमारे श्रोता सुनेंगे। दोपहर 1:30 पर क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति होगी।

सैनिक साथी फिल्म संगीत सुनते हैं दोपहर 2:30 पर, गाने नए तराने 3 बजे, और अपराह्न 4:02 पर हमारे श्रोता सुनेंगे शास्त्रीय संगीत में राग भीम पलासी पर शमशेर सिंह से सरोद वादन।

अपराह्न 4:30 पर एक कलाकार कार्यक्रम में आज की अदाकारा होंगी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा। युवा साथी युवाणी कार्यक्रम सुनते हैं सायं 5:10 पर। सायं 5:45 पर पर्वतीय अंचलों के कार्यक्रम ग्राम जगत में हमारे श्रोता सुनेंगे गढ़वाली फिल्म कहानी अभिनय और निर्देशन पर बी.एस. नेगी की वार्ता।

0: श्रोता, रात्रि 8:15 पर सुगम संगीत में आप सुनेंगे शर्मा बंधुओं से भजन। ये थी जानकारी आज के कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रातः के 6:55 होने को है, अब आप सुनिए समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री को रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय से पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौत की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया है। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची हैं। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय संजय मट्टू।

जुल्फ थीम पर कार्यक्रम का ये पहला गीत सूरज फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

0: पिया का घर फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इसी के साथ कार्यक्रम गीतों के मोती अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गीता नेगी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित हर्रावाला रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज रामनगर देहरादून रामनगर एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में उत्तराखंड पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों में प्रथम स्थान पर। प्रदेश में अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी। 4 जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट। देहरादून और चंपावत के स्कूलों में 1 दिन का अवकाश घोषित। और पिथौरागढ़ की 3 महिला मुक्केबाजों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीते 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया। इसी क्रम में देहरादून का हर्रावाला रेलवे स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि आधुनिक रेलवे अवसंरचना से उत्तराखंड में पर्यटन, व्यापार, कृषि, स्थानीय उत्पादों, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हर्रावाला रेलवे स्टेशन देहरादून आने वाले पर्यटकों, तीर्थयात्रियों, विद्यार्थियों, सैनिक परिवारों और अन्य यात्रियों के लिए राज्य का आधुनिक प्रवेश द्वार बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि लगभग 19 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित इस स्टेशन की वास्तुकला दून घाटी की प्राकृतिक सुंदरता और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है। स्टेशन परिसर में पारंपरिक ऐपण कला को भी प्रमुखता से स्थान दिया गया है। पुनर्विकसित स्टेशन की घुमावदार छत हिमालय पर्वतमाला की छवि प्रस्तुत करती है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर आधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की गई है। रामनगर रेलवे स्टेशन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नैनीताल जिले के रामनगर रेलवे स्टेशन से रामनगर देहरादून रामनगर एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को चलेगी। ट्रेन रामनगर से सुबह 5:50 पर रवाना होकर दोपहर 12:40 पर देहरादून पहुंचेगी। वापसी में यह उसी दिन देहरादून से अपराहन 3:55 पर चलकर रात 11:03 पर रामनगर पहुंचेगी। मार्ग में ये ट्रेन काशीपुर, रोशनपुर, पीपलसाना, मुरादाबाद, नजीबाबाद और हरिद्वार स्टेशनों पर रुकेगी। इस नई रेल सेवा में नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, मुरादाबाद और बिजनौर के यात्रियों को बेहतर रेल संपर्क मिलेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन में वातानुकूलित द्वितीय और तृतीय श्रेणी, वातानुकूलित चेयर कार, शयनयान द्वितीय श्रेणी चेयर कार तथा सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बे उपलब्ध रहेंगे। केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र के पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले कल मंत्रियों के समूहों की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि माटी कला सांस्कृतिक विरासत है और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना सभी की जिम्मेदारी है। रुड़की में आयोजित माटी कला सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार माटी कला से जुड़े कारीगरों को प्रोत्साहित कर रही है। श्री चौधरी ने कहा कि कुंभ 2027 में उनके उत्पादों को विशेष पहचान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिट्टी के बर्तन और हस्तशिल्प पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ रोजगार का भी बेहतर माध्यम है।
2: जी, माटी कला बोर्ड में भी हमने जो कुम्हार लोग हैं उनको जो है इलेक्ट्रिक चाक जो है 75% सब्सिडी पे देने का की घोषणा की है। उसके अलावा माटी की जो उनकी समस्या है उसका भी समाधान निकालने का प्रयास सरकार कर रही है। ताकि आने वाले कुंभ में और चार धाम यात्रा में जो है अधिक से अधिक जो है उनके द्वारा निर्मित कुल्हड़ों का उपयोग किया जा सके और जो प्लास्टिक के ग्लास हैं उनको प्रतिबंधित किया जा सके।
1: इस अवसर पर रुड़की की महापौर अनिता अग्रवाल ने लोगों से प्लास्टिक के बजाय मिट्टी के बर्तनों के अधिक उपयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय कारीगरों की आय भी बढ़ेगी।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: उत्तराखंड ने नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 47.5 अंकों के साथ राज्य को 11वां स्थान मिला है, जिसे उत्तराखंड फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल हुआ है। यह सूचकांक राज्यों का आकलन व्यावसायिक वातावरण, आधारभूत संरचना, संसाधनों की उपलब्धता और वित्तीय स्वास्थ्य जैसे मानकों के आधार पर करता है। उत्तराखंड ने पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों में वित्तीय स्वास्थ्य में प्रथम, व्यावसायिक वातावरण और संसाधनों में दूसरा तथा आधारभूत संरचना में तीसरा स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि को प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण बताते हुए कहा कि राज्य सरकार की निवेशक हितैषी नीतियों, पारदर्शी शासन व्यवस्था और बेहतर औद्योगिक वातावरण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी निवेश गंतव्य बनाने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। और अब एक नज़र मौसम पर। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले चार दिनों तक कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज देहरादून, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि अन्य सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर देहरादून और चंपावत जिला प्रशासन ने आज सभी आंगनबाड़ी केंद्रों तथा कक्षा 1 से 12 तक के सरकारी, गैर सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। राज्य सरकार ने चारधाम यात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने तथा गाढ़ गदेरों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की। पिथौरागढ़ जिले की 3 महिला मुक्केबाजों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। आरती धारियाल ने रोमानिया में आयोजित गोल्ड बेल्ट बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 54 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आरती ने सभी का धन्यवाद देते हुए जीत का श्रेय अपने कोच और टीम सदस्यों को दिया।
4: मेरी फाइनल बाउट रोमानिया के साथ थी, जो मैंने थर्ड राउंड आरएससी के साथ जीता है। मैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और साई का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उनने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। मैं मेरे कैंप के सारे कोचेज, मेरे पर्सनल कोच सबको धन्यवाद दूंगी कि उनने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं इस गोल्डन बेल्ट टूर्नामेंट में गोल्ड जीत के जा रही हूं, और सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।
1: वहीं निकिता चंद ने इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित अंडर 23 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 60 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। इस प्रतियोगिता के 65 किलोग्राम भार वर्ग में काजल भरसवाण ने भी रजत पदक जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया। इन तीनों खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर प्रदेश भर में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने तीनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि इनकी मेहनत, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारत और उत्तराखंड का गौरव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों की उपलब्धि प्रदेश के युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा के जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की हरी झंडी दिखाकर रवाना करने की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इस खबर पर दैनिक जागरण का शीर्षक है, हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन करने वाला 5वां देश बना भारत। नवोदय टाइम्स लिखता है, दौड़ी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में युवाओं से संवाद की खबर को सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान समाचार पत्र ने राहुल के हवाले से लिखा है, सरकार ने रोजगार खत्म किया। इस खबर पर अमर उजाला की सुर्खी है, देश में पेपर लीक, रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड की तरह पैसा दो पेपर लो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित हरावाला रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज रामनगर देहरादून रामनगर एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में उत्तराखंड पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों में प्रथम स्थान पर। प्रदेश में अगले चार दिन भारी बारिश की चेतावनी। चार जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट। देहरादून और चंपावत के स्कूलों में एक दिन का अवकाश घोषित। और पिथौरागढ़ की तीन महिला मुक्केबाजों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीते एक स्वर्ण और दो रजत पदक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। प्रातः के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शैल संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं कविता देवी के गाए जौनसारी लोकगीत।

0: रविंद्र, ये बताओ सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
1: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
0: सच में? क्या क्या है उसमें?
1: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
2: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: शैल संगीत कार्यक्रम में इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं कविता नेगी के गाए जौनसारी लोकगीत।

कार्यक्रम के समापन में आइए आपको सुनवाते हैं एक और जौनसारी लोकगीत कविता देवी की आवाज में। कार्यक्रम चल रहा है शैल संगीत।

0: शैल संगीत कार्यक्रम में आज हमारे श्रोताओं ने सुने कविता देवी के गाए जौनसारी लोकगीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप सुने समाचार।
1: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
1: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
4: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छिहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
4: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तीन दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन तीन परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का पहला चरण है। इसके अलावा

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं ये कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
3: Working to strengthen each other's
4: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
1: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
5: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पे बैठने की

0: अभी तक 100 से ज्यादा आइलैंड बनाया।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
3: हॉकी इंडिया आज से देशभर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
4: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नव भारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या ये है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने SIR से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, SIR में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम संजय मट्टू। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off 2 new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. In Japan Open Badminton, PV Sindhu faces Chen Yufei of China in semi-final of women's singles in Tokyo, and in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi, Vikas Bhi, the stations incorporate elements reflecting local culture, heritage and architecture. On the occasion, Mr. Modi flagged off the Kartoli-Ambala train service, which will improve connectivity across Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. He also flagged off the Sant Ravidas Express between Amritsar and Varanasi, establishing a direct rail link between two of India's most revered spiritual and cultural centres. He also inaugurated the 30.9-kilometre long Package 6 of the four-lane Greenfield Delhi-Amritsar-Katra Expressway. Speaking on the occasion, Mr. Modi said the inauguration of the 75 redeveloped railway stations reflects the rapid transformation that Indian Railways has undergone over the past few years.
6: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है आज ऐसे ही

बरसती बूंदों से जैसे धरती मुस्कुरा उठती है, वैसे ही भक्ति की फुहार से मन भी खुल उठता है। आस्था के पहिए जब चल पड़ते हैं तो हर रास्ता जगन्नाथमय हो जाता है। जय जगन्नाथ। नमस्कार देहरादून, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा दैनिक सूचना परक कार्यक्रम में। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त प्रियंका जेना। श्रोताओं, आज की सुबह अपने साथ एक अलग ही सुकून और भक्ति का एहसास लेकर आई है। ठंडी हवाएं और बारिश की भीनी भीनी फुहारें कुछ संदेशा देने आई है। श्रोताओं, उड़ीसा के पुरी से शुरू हुई भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा आज विश्वविख्यात बन चुकी है। इसकी भव्यता और दिव्यता का आकर्षण देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जब अपने भव्य रथों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो मानो स्वयं भगवान अपने भक्तों के घर आंगन तक पहुंच जाते हैं, और यही इस रथ यात्रा का सुंदर संदेश भी है। भगवान सबके हैं, इसलिए वह रथ यात्रा के माध्यम से अपने भक्त तक स्वयं पहुँचते हैं। श्रोताओ, आजकल देहरादून में भी अनेक संस्थाओं द्वारा भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है, और इस दिव्य परंपरा की झलक आपको आज भी शहर में देखने को मिलेगी। जी हां, इस्कॉन मंदिर द्वारा आज शहर में भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। कार्यक्रम में आगे और भी विस्तार से जानेंगे और भी बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल लेते हैं हरि का नाम और पहुँचाते हैं आप तक ये गीत। जय जगन्नाथ।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून, आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर अपनी होस्ट प्रियंका जैना के साथ। और अब आपको बता देते हैं आज कार्यक्रम में आगे क्या सुनेंगे आप। आज इस्कॉन देहरादून द्वारा आयोजित श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में बातचीत होगी। इस्कॉन टेम्पल से परम करुणा माधव प्रभु से नेल्सन मंडेला जयंती पर जानकारी साझा करेंगे DAV PG कॉलेज के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर विकास चौबे। वक्त है स्थानीय अखबारों की सुर्खियों का। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ना धुआं ना प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शुक्रवार को लोकभवन में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी एवं प्राधिकरण के सदस्यों ने शिष्टाचार भेंट की। देहरादून में शुक्रवार का दिन युवाओं के नाम रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नेता राहुल गांधी का दिल युवाओं के लिए धड़का, वहीं परेड ग्राउंड में युवा दिलों की धड़कन बनी जैस्मीन। लोक संवर्धन पर्व के समापन पर उमड़ी युवाओं की भीड़। हर्रावाला रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन। राज्यपाल ने कहा स्टेशन का डिजाइन हिमालय की थीम पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर्रावाला रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है। PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर के 75 अमृत रेलवे स्टेशनों के लोकार्पण के साथ हर्रावाला स्टेशन भी

आधुनिक सुविधाओं से युक्त नई पहचान बनकर उभरा है। और अब बात मौसम की। आज से 21 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। सतर्क रहने की सलाह। तो ये थी स्थानीय अखबारों की सुर्खियां। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और ले चलते हैं आपको इस अगले गीत की ओर।

0: जय जगन्नाथ। आस्था, संस्कृति और समर्पण का ऐसा अद्भुत संगम जो सदियों से करोड़ों श्रद्धालुओं को एक सूत्र में बांधे हुए हैं, वह है जगत के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा। श्रोताओं, ओडिशा के पुरी से शुरू हुई ये परंपरा आज देश विदेश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है और आज देहरादून से भी इस्कॉन देहरादून मोथरावाला द्वारा भव्य रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। तो आइए अब इस रथ यात्रा के बारे में विस्तार से जानते हैं इस्कॉन देहरादून मोथरावाला से परम करुणा माधव प्रभु से।
1: हरे कृष्णा, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ इस प्रोग्राम में आने के लिए।
0: सबसे पहले तो बताइएगा, आप ये जो श्री जगन्नाथ रथ यात्रा हर वर्ष इस्कॉन करवाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है?
1: ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा, ये एक सनातन तौर से चली आ रही है। ब्रह्मा जी जब अवतरित हुए जगन्नाथ जी, तो उनको आज्ञा मिली थी कि इस तरह से हमारी यात्रा को कराना चाहिए, भगवान का स्नान यात्रा करना चाहिए। तब से ये रीत चली आ रही है। हर साल इस समय भगवान श्री जगन्नाथ, सबसे पहले उनका स्नान होता है। स्नान होने के बाद उनका एक नेत्र मिलन उत्सव होता है, क्योंकि स्नान के बाद वो कुछ दिनों तक दर्शन नहीं देते हैं। उसके बाद जब वो दर्शन देते हैं, तो उनको बहुत ही उत्साहपूर्वक उनके जो जगन्नाथ मंदिर है पुरी में, वहां से गुंडिचा मंदिर लिया जाता है। और ये कहते हैं, ये दर्शाते हैं कि ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा है, ये यात्रा है भगवान की द्वारका से वृंदावन की। तो ये हमारे शास्त्रों में इसका विवरण है कि भगवान श्री जगन्नाथ, जो स्वयं कृष्ण हैं, जो द्वारका में मौजूद थे, ये उनकी इच्छा व्यक्त उन्होंने की कि वो अपने भक्तों से मिलें। तो वो अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं और वो अपने भक्तों को सड़क पे हर तरीके से खुद दर्शन देने जाते हैं। और शास्त्र में ये कहा गया है कि जगन्नाथ रथ यात्रा का मतलब है भगवान को अपने हाथ से रस्सी से खींच के द्वारका से वृंदावन लेके जाना, क्योंकि भगवान का हृदय वृंदावन में है। और रथ यात्रा का मतलब है भगवान को वृंदावन की तरफ, उनके प्रस्थान हेतु हम सबका साथ में जुड़ना।
0: परम करुणा माधव प्रभु जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो हमारी आज की रथ यात्रा है जो देहरादून इस्कॉन टेम्पल द्वारा आयोजित की जा रही है, इसका समय क्या रहने वाला है और क्या रूट रहेगा जहाँ से ये यात्रा प्रारंभ होगी?
1: इस्कॉन देहरादून मोथरावाला आज दोपहर 2 बजे से ये रथ यात्रा निकालेगा और ये बहुत ही भव्य रथ यात्रा होगी। एक बहुत ही बड़ा भव्य रथ पे श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुद्रा महारानी और सुदर्शन जी को प्रस्तुत किया जाएगा इस रथ यात्रा के लिए। और इसका आरंभ होगा ONGC कम्युनिटी हॉल से, जो राजेंद्र नगर में है। उसके पश्चात यात्रा किशन नगर, चक्राता रोड, घंटाघर, एसले हॉल एवं सचिवालय के सामने से होते हुए भगवान श्री वेंकटेश्वर कल्याण मंडप में संपन्न होगी।
0: किस तरह की व्यवस्था की गई है?
1: ये बहुत ही भव्य समारोह होगा। इस यात्रा के बीच में हजारों हजारों भक्त जुड़ेंगे, जो जगन्नाथ जी के रथ की रस्सी को खींचेंगे। इसके लिए स्पेशल सिक्योरिटी, स्पेशल क्लीनिंग के लिए टीम्स रहेंगी। हमारे 100 से ज्यादा वॉलंटियर रहेंगे जो क्राउड मैनेजमेंट में रहेंगे। 8 से ज्यादा ऐसी छबीलें होंगी जहां पे भक्तों को पानी और प्रसाद की सुविधा की जाएगी। प्रोग्राम के शुरुआत में, प्रोग्राम के अंत में सबके लिए प्रसाद होगा। और इसके साथ साथ इस प्रोग्राम में बहुत मुख्य हाईलाइट्स भी रहेंगी, जैसे कि वृंदावन से करीब 60 से ज्यादा संत आ रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए। इसके साथ साथ 3 से ज्यादा कीर्तन की टीम रहेंगी, जिसमें बहुत ही भव्य कीर्तन होगा। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि कीर्तन की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, बहुत सारे संत आएंगे, बहुत सारे हमारे देहरादून के वासी जुड़ेंगे और इस रथ यात्रा में सब शामिल होंगे।
0: अब अंत में जो आपको सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून के माध्यम से, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: हमारे शास्त्रों में बताते हैं कि कोई भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी को एक बार खींच ले, तो जितनी भी रस्सियां हमारे जीवन में हमें रोक के बांधी हैं, वो सारी रस्सियां खत्म हो जाती हैं। जो भी रुकावटें हैं, जो भी कलेश हैं, जो भी चिंताएं हैं, भगवान श्री जगन्नाथ की ऐसी महिमा है कि एक बार आपने उनकी रस्सी को खींच लिया उनके इस रथ यात्रा के महोत्सव में, तो जीवन के बहुत तरह के कलेश खत्म हो जाते हैं और जगन्नाथ जी के द्वारा एक उनकी भक्ति में काफी प्रगति होती है। तो मेरा यही सबसे निवेदन है कि आज का जो दिन है, घर ना हैं, सब आएं। कुछ घंटों में रथ यात्रा शुरू होने वाली है, सब आएं और रथ की रस्सी खींचें। और अकेले ना आए, अपने सह परिवार सभी सदस्यों को लेके आएं। जिस भक्त को आप चाहते हैं कि उनके जीवन में कृपा बटे, कृपया करके उनको आज जरूर लेके आएं। ये बहुत ध्यान रखिएगा कि जो रथ यात्रा है वो 2 बजे से ONGC कम्युनिटी हॉल राजेंद्र नगर से शुरू होगा। सब प्रयास करें कि आप वहीं से हमारे साथ जुड़ के चलें। अगर आप वहां नहीं आ पाते, तो आप बीच में भी रथ यात्रा में जुड़ सकते हैं। और जगन्नाथ जी के रथ खींचें, और साथ साथ 1008 भोग दिए जाएंगे जगन्नाथ जी को। आप अपने घर से कुछ भोग बना के लेके आना चाहते हैं, कुछ अर्पण करके लेना चाहते हैं, तो वो अर्पण भी करने के लिए ला सकते हैं।
2: बहुत धन्यवाद आपका परम करुणा माधव प्रभु जी, आज आप कार्यक्रम नमस्कार देहरादून से हमारे साथ जुड़े और आपने श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में हमारे श्रोताओं संग जानकारी साझा की। आपका बहुत आभार कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
1: हरे कृष्ण।
3: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, संघर्ष, साहस और समानता की मिसाल एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि क्षमा और एकता से भी बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला की। बहुत कम लोग जानते हैं कि नेल्सन मंडेला को दुनिया भर में मदिबा के नाम से भी जाना जाता है। आज उनकी जयंती है और इस दिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पे भी हम मनाते हैं। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं विस्तार से डीएवी पीजी कॉलेज के प्रोफेसर विकास चौबे से।
1: पहले तो डॉक्टर विकास चौबे, आपका बहुत स्वागत कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में।
2: धन्यवाद प्रियंका जी। अगर देखें तो 2009 में इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई कि हम इसको नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के तौर पे मनाएं, और 2010 में इसे प्रथम बार मनाया गया। जैसे आप इस बार का इसका अगर थीम देखें तो वो भी बहुत रोचक है। इस बार का इसका थीम है कि इट इज स्टिल इन आवर हैंड टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्विटी, यानी ये हमारे

0: बस में हमारे हाथों में है कि हम गरीबी और अन्याय से लड़ सकें। तो इसके विभिन्न थीम रहते हैं, और जो एक इसका सबसे सेंट्रल कोर आइडिया है जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिया गया है वो है द 67 मिनट ट्रेडिशन। ये 67 मिनट ट्रेडिशन इसलिए है कि अगर आप नेल्सन मंडेला जी के पूरे जीवन काल को देखें तो लगभग 67 ईयर्स का उनका एक्टिव फेज रहा या स्ट्रगल रहा, जिसमें उन्होंने एपार्थाइड या रंगभेद के खिलाफ काम किया, पॉलिटिकल लीडरशिप दी, और इनमें से 27 वर्षों का वो कार्यकाल भी है जो उन्होंने रॉबिन आइलैंड पे जेल में मनाया। तो इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य अगर आप एक तरीके से देखें, और जहां तक मैं बात को समझ पाता हूँ, कि जो आज की मौजूदा चुनौतियां हैं, जैसे हमें कई बार ये लगता है कि जो एक्टिविज्म है या जो कोर आइडियाज हैं डेमोक्रेसी के या एक अच्छे मानव जीवन के, जैसे आप पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट के आसपास की जो बुनियादी बातें देखते हैं, मुझे लगता है कि उनके बारे में लोग जागरूक हो सकें, और विशेष रूप से जो हमारे युवा हैं, युवा वर्ग है, जो आम जनमानस है, या दुनिया भर में जो कंसर्न्स डेवलप हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, उनके बारे में लोग सामने आए, विचार विमर्श हो, और कुछ एक्टिव तरीके से कुछ कॉन्क्रीट स्टेप लिए जा सके, ये पूरा उद्देश्य इसको नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने के पीछे।
1: भारत रत्न पाने वाले पहले ऐसे विदेशी थे, और साथ ही उनको शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया, तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उनकी उपलब्धियों को लेकर?
0: बड़ी सरल सी बात है, और वैसे जो क्योंकि नमस्कार देहरादून को सुनने वाले बहुत हमारा युवा वर्ग भी अच्छा खासा है, तो पहले तो जो इनकी दो प्रमुख पुस्तकें हैं नेल्सन मंडेला की, जैसे लॉन्ग वॉक फ्रीडम, सभी उसके बारे में जानते हैं, एंड उनकी एक दूसरी पुस्तक है आई एम प्रिपेयर्ड टू डाई। मुझे लगता है कि ये तो सभी जो हमारा युवा वर्ग है, जो भी पढ़ सके, आयु वर्ग से कोई मतलब नहीं है, वो उनको पढ़ना चाहिए। अब अगर आप इस पूरी बुनियादी चीज को देखें तो दुनिया में जो महान व्यक्तित्व होते हैं, जैसे आप महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद को लें, अन्य इस प्रकार से, तो कुछ ऐसे लोग समय समय पर आप मानव इतिहास में देखेंगे, और आप 20वीं शताब्दी में देखें, अभी भी कुछ ऐसे 21वीं शताब्दी में आपको एक्टिविस्ट सोशल पॉलिटिकल लीडर्स मिल जाएंगे जो पूरे विश्व के हैं, जिनकी दुनिया भर में जिनके कार्यों ने अमिट छाप छोड़ी चीजों पर। तो नेल्सन मंडेला वंस सेड की वायलेंस इज इजी, जब उन्होंने अपना एक रिवोल्यूशनरी के तौर पे जीवन शुरू किया तो अर्लियर ही वॉज इन टू आर्म्ड रिबेलियन ग्रुप, लेकिन बाद में उन्होंने हिंसा को छोड़ा और एक्टिवली जो बुनियादी कंसर्न्स हैं जो अफ्रीका में रंगभेद के आसपास, या सिर्फ रंग भेद तक ही सीमित नहीं रहा, वो एक बुनियादी कंसर्न था कि पहले आपको सामाजिक राजनीतिक तौर पे एक प्रकार की समानता की जरूरत है। उन्होंने न सिर्फ सामाजिक तौर पे बल्कि राजनीतिक तौर पे भी उन कंसर्न्स को एक आवाज दी, और जिससे बिल्कुल बुनियादी स्तर तक, निचले स्तर से सुधार हुए। तो मुझे लगता है कि चाहे उनको भारत की बात करें या पीस प्राइज की बात करें, ये बहुत सार्थक एक संदेश देने का काम करते हैं। ऐसे जो व्यक्तित्व हैं, ऐसे लोगों का जो जीवन है, वो एक संदेश देता है कि यस स्टिल वी कैन डू।
1: कहा जाता है कि ये महात्मा गांधी से भी काफी प्रेरित रहे, और इन्होंने अपने जीवन में महात्मा गांधी के सिद्धांतों को भी उतारा और उन्हें अपना मार्गदर्शक माना।
0: नेल्सन मंडेला ने जो गांधीवादी बुनियादी विचार, जो गांधी जी ने बहुत वर्षों से न सिर्फ प्रैक्टिकल तौर पे जिनको इंप्लीमेंट किया, बल्कि जिनको एक, क्योंकि आज भी हम गांधीवाद को एक बहुत बड़े थ्योरेटिकल कंसर्न के तौर पे भी देखते हैं, उन्होंने कुछ बहुत बुनियादी चीजें कही, लेकिन जो आप एक्टिविस्ट के तौर पे उनका देखेंगे और जिसका इतना व्यापक प्रभाव हुआ, आपका जो एरिया है, जो दायरा है, और जो कोर गांधीयन प्रिंसिपल्स आपको दिखाई देते हैं, नेल्सन मंडेला ने उनको काफी हद तक चरितार्थ किया। बड़ी अच्छी पंक्तियां याद आ रही हैं जो नेल्सन मंडेला के जीवन को पूरे एक खांचे में उतारती हैं, और आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं या जो हमारा वर्तमान युवा वर्ग है, तो लाइनें कुछ इस प्रकार से, सपने हर किसी को नहीं आते, सपनों के लिए लाजमी है सहनशील दिलों का होना, इसीलिए सपने सभी को नहीं आते। तो जो इस सहनशीलता की जो जरूरत थी दुनिया को, जो गांधी जी ने जो संदेश दिया और जिसको नेल्सन मंडेला और उन्हें चरितार्थ किया, उस सहनशीलता की विश्व को बहुत जरूरत है, ये हम महसूस कर रहे हैं आज के दौर में।
1: जी बिल्कुल, बहुत सुंदर पंक्तियां आपने आज उनकी जयंती पर उनको समर्पित की, और आज के दिन आप हमारे साथ जुड़े, आपने नेल्सन मंडेला जयंती पर हमारे साथ जानकारी साझा की, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार डॉक्टर विकास चौबे, आप कार्यक्रम से आज जुड़े।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमसे बातचीत कर रहे थे डीएवी पीजी कॉलेज के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर विकास चौबे, और उन्होंने हमसे जानकारी साझा की आज नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। आइए श्रोताओं, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले और अंतिम गीत की ओर।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही अब वक्त हो चला है कार्यक्रम से आपको अलविदा कहने का, लेकिन इससे पहले नोट कर लीजिए आप हमारा पता, ताकि आप हमें लिख भेज सकें आपको हमारा ये दैनिक सूचना परक कार्यक्रम कैसा लगता है। तो हमारा पता है श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार देहरादून, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून, पिन है 24801। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है namaskardehradun@gmail.com। तो श्रोताओं, इसी के साथ ही अब मुझे यानी प्रियंका जैना को दीजिए अनुमति और सुनते रहिए आकाशवाणी का देहरादून केंद्र, नमस्कार देहरादून।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं, पेश हैं सदाबहार फिल्मी गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत, अभिनंदन।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: श्रोताओ, हैसियत फिल्म में अभी आपने यशुदास को सुना था। श्रोताओ, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। तो इस बीच समय बहुत थोड़ा सा कम है, तो क्यों ना आपको कार्यक्रम संबंधी कुछ जानकारी दे दें। सुबह 10:35 पर हमारे श्रोता सुनेंगे लोक संगीत कार्यक्रम में रफल सिंह की गाई रागिणियां। सुगम संगीत में दोपहर 12:12 पर शान ए आलम और साथियों की गाई कव्वालियां होंगी। बहने महिला जगत कार्यक्रम सुनती हैं दोपहर 12:30 पर। आज इसमें आप सुनेंगे श्रीमती रुचिरा जोशी से वार्ता, विषय रहेगा बेटी को दहेज नहीं शिक्षा और सुरक्षा करें भेंट। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अभी आपने जानी कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी देहरादून का केंद्र है। अब हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली, वहां से आपको सुनवाएंगे अगला कार्यक्रम
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए तालाबों के संरक्षण और विकास के लिए प्रयासरत पॉन्डमैन के नाम से प्रसिद्ध रामवीर तंवर के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है नीति शुक्ला।
5: जल ही जीवन है, ये कहावत तो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसे सही मायने में समझकर और इसके लिए काफी अच्छा काम किया है आज की हमारी इस शख्सियत ने, जिनसे कि हम आपको मिलवाने वाले हैं। मैं हूँ आरजे नीति और हमारे आज के जो गेस्ट हैं, इन्हें पॉन्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने तालाब के संरक्षण के लिए, उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए काफी अच्छा काम किया है। और यहां तक कि इनका जिक्र मन की बात प्रोग्राम में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। तो आइए स्वागत करते हैं रामवीर तंवर जी का। बहुत बहुत स्वागत है।
6: बहुत बहुत धन्यवाद
5: रामवीर जी। आपको पॉन्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन कब इसकी आपने शुरुआत की? क्या आपने सोचा कि अब तालाबों का संरक्षण करना है, इन्हें पुनर्जीवित करना है?
6: देखिए, ये अचानक से ऐसी कोई घटना नहीं है जिसकी वजह से मैंने काम किया हो। इस तरह की घटनाएं किताबों में अच्छी लगती है, लेकिन ये है, मेरा मानना है कि वो धीरे धीरे धीरे धीरे ना कोई भी इनिशिएटिव आपको अपनी ओर खींच लाता है, और उसके लिए जिम्मेदार होती है कई बार आपकी चाइल्डहुड यादें, बचपन में आपने जो देखा है और जवानी में आप जो नहीं देख पा रहे। मैं 10th क्लास तक अपने गांव में भैंसों को चराने जाता था जंगल में, और मैंने अपना पूरा होमवर्क किसी तालाब के या नहर के किनारे किया। मुझे याद है मेरे गांव से और जंगल जाते समय पे एक नहर पड़ती है बहुत छोटी सी, और हमें वो नहर क्रॉस करनी होती थी, अदरवाइज तो 2-3 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था। जब हम जाते थे, मैं 3री-4थी क्लास में जब था तो तैरना नहीं आता था, बहुत छोटा बच्चा था, तो हम भैंस की पूंछ पकड़ के क्रॉस करता था मैं, और कई बार भैंस जो है वो बीच नहर में जाके लेट जाते थे, तो हमें भी लेटना पड़ता था उसके साथ, तो उस वजह से तैरना सीखा। लेकिन आई एम सो सैड टू टेल यू कि वो नहर अब एक नाला है, और वो ऑफिशियली नाला है। वहां पे सिर्फ अभी पूरे शहर का इंडस्ट्रियल वेस्ट और म्युनिसिपल वेस्ट वहां से बहके जाता है। आप वहां किनारे 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते, जबकि

0: उस नहर का पानी कई बार हमारे मुंह में चला जाता था, पेट में चला जाता था, मुझे कभी याद नहीं है कि हम बीमार हुए हों। वही नहर, मैं कई बार जब वहां से गुजरता हूँ तो आज अपने रुमाल को नाक पे रख के गुजरता हूँ। दुख होता है। जब मैं 11वीं क्लास में गांव से बाहर 20 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाता था बस में, डेली मुझे 25-30 किलोमीटर जाना था, 25-30 किलोमीटर आना था, तो वहां जब मैं रास्ते में ये देखता था कि जो भी रोड के किनारे के तालाब है वो धीरे धीरे धीरे धीरे लैंडफिल साइट बनते जा रहे हैं, क्योंकि आदत होती है कि जब हम जाते हैं हाथ में जो भी कचरा होता है वो सबसे पहला निशाना हमारी बनती है कोई नाली, नाली नहीं मिले तो नाला, नाला ना मिले तो नहर, नहर नहीं मिली तो तालाब। तो आज भी आप गांव में देखिए तालाब सबसे इजी टारगेट है कचरा फेंकने के लिए। तो जब मैं बाहर निकला गांव से और मैंने देखा कि ये मेरे गांव की समस्या नहीं है, ये तो सब जगह सेम इशू होता जा रहा है। जब मैं अपना ग्रेजुएशन में था, कॉलेज डेज में था, तो पॉकेट मनी के लिए मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। मेरे पास दो स्टूडेंट थे और दोनों भाई थे। उसके पिताजी ने पूरे दिन इधर उधर कंचा खेलते हैं, सारे दिन उधर जाते हैं, तो तुम अगर इनको पास करवा दो 33% से तो मैं तुम्हें जो है इनाम दूंगा। मैंने उनको पढ़ाया और उनके 70% आ गए। तो उन्होंने इतना प्रचार किया कि मेरे पास 40-50 बच्चे आ गए। वो ऐसे प्रचार करते थे, किसी का बच्चा पास नहीं हो रहा हो तो रामवीर के पास भेज दो पास हो जाता क्योंकि मुझे मैथ फिजिक्स से बहुत प्यार था। तो मेरे पास इतने सारे बच्चे हुए। वीकेंड पे हमने एक्टिविटी करना शुरू किया। एक्टिविटी क्या थी कि गांव में नए नए समर सर्विल लगे थे, पंप, सबके घर में समर सर्विल पंप है। एक गिलास पानी की जरूरत है तो वो 1000 लीटर पानी निकालेंगे। छोटे बच्चे को नहाना है तो उसको बाल्टी नहीं लाएंगे, उसके लिए बस समर सर्विल का स्विच ऑन कर देंगे, जाओ बेटा नहा लो। अब 10000 लीटर पानी में बच्चा नहा रहा है। सोचिए जो 5 लीटर बच्चा नहा सकता था वो 10000 लीटर में नहा रहा है, और वो ड्रिंकिंग वाटर, उसकी कॉस्ट जोड़ेंगे 20 रुपए के हिसाब से तो लाखों रुपए में बैठ रही है वो। पूरे परिवार की इनकम 10000 रुपए महीना है और पानी बहा रहे हैं 5 लाख रुपए का। तो हमने डिसाइड किया खेल खेल में कि जो भी हमारे गांव में सबसे ज्यादा पानी बर्बाद करता है उसके घर के सामने हम जल ही जीवन लिख के आएंगे चुपचाप। वो हमारी एक्टिविटी थी और वो हम वीकेंड में करने वाले थे। जब वो एक महीना किया, दो महीना किया, बहुत सारी गालियां भी खाई, कई पेरेंट्स ने अपने बच्चे हटा लिए। हमने सोचा था अच्छा पढ़ाते हो तुम तो, इनको ऐब करना सिखा रहे हो लड़ाई करना सिखा रहे हो लोगों के साथ। तो कुछ बच्चे हट गए, कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। नेक्स्ट फेज में हमने क्या किया कि एक जगह हम बैठ के मीटिंग करने लगे। गांव की जो चौपाल बनी हुई है, चौपाल पे किया, हमने उसका नाम रखा जल चौपाल, और हमने उस ग्रुप का नाम दिया था जागरूक युवा समूह। जब हमने मीटिंग किया और सब कुछ हुआ तो कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ लोग आए। एक बार क्या हुआ, किसी ने फोटो क्लिक करके मीडिया में लगाया, अखबार में आया, अखबार से डीएम साहब के पास गया। डीएम साहब ने कॉल किया उन भैयाओं के पास कि उन बच्चों को बुला के लाओ। हमको बुलाया, उन्होंने अप्रिशिएट किया और कहा कि अगली बार मैं आऊंगा। वो अगली बार आए तो हम तो 20 लोग थे, वो आए तो 500 लोग इकट्ठा हो गए। देन आई रियलाइज कि ये जो हम कर रहे थे ये कोई छोटी चीज नहीं है, जिस काम के लिए खुद डीएम साहब, कलेक्टर साहब आपके गांव में आ सकते हैं, जिन्होंने अभी तक गांव देखा ही नहीं हमारा और उनको पता चला। देन आई रियलाइज कि वी आर डूइंग समथिंग बिग। और वहां से ये फिर मैंने कॉलेज किया, 2 साल जॉब के साथ भी मैंने यही किया, अवेयरनेस कैंपेन चलाया, लेकिन अवेयरनेस कैंपेन थोड़ा बड़ा हो गया टाइम के साथ। और फिर मैंने सोचा कि जॉब छोड़ के फुल टाइम अभी मैं ये करूं। वहां से निकल के धीरे धीरे यहां तक पॉन्डमैन की जर्नी शुरू हुई।
1: तो पॉन्डमैन की जर्नी इतनी आसान तो नहीं रही होगी, कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, तो किस तरह की मुश्किलें सामने आई?
0: शुरुआती दौर में क्या था, आपके पास पैसा नहीं था, रिसोर्सेस नहीं थे, आपके पास टीम नहीं थी, आपके पास नॉलेज नहीं थी, आपके पास रिसोर्सेस नहीं थे, आपके पास कोई रेफरेंस नहीं था जिसको आप ये बोल सके कि मैंने वो काम किया है जी, आपको लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे। इंडिया में क्या है, वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। कोई भी वाटर बॉडी है, तालाब है, पोखर है, कुआं है, कुछ प्राइवेट हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आप उसको बिना परमिशन के गंदा तो कर सकते हैं लेकिन बिना परमिशन के साफ नहीं कर सकते। साफ करना है तो आपको एनओसी लानी पड़ेगी। तो एनओसी के लिए हम चक्कर काटते थे। हमसे हर पूछता था एनओसी तब देंगे, पहले बताओ एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारा। अब एक्सपीरियंस हो तो बताए, हमने तो 0 एक्सपीरियंस, हमने कभी तालाब ही साफ नहीं किया। गांव वालों से बात करें वो कहते थे कि यार तुमने कभी किया ही नहीं कुछ, तो ये कैसे करोगे। तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट नहीं था जिसको हम उदाहरण के तौर पर बता सके कि हमने वहां पे किया उसको देखिए। दूसरा, आप तालाब साफ करेंगे आप मैनुअली कितना कर लेंगे, 5 किलो कचरा हटा लेंगे, 100 किलो हटा लेंगे, लेकिन बड़ा अगर आपको इम्पैक्ट करना है तो मशीन चाहिए, आपको डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, मैन पावर चाहिए, टूल्स चाहिए, उसके लिए हमारे पास फंड नहीं था। हमने क्या किया कि जितना हमारे बस की है उससे करते हैं। तो जो भी सोशल मीडिया से, कॉलेज से जितने लोग जुड़े थे अपने साथ, उन सबको हमने साथ जोड़ा और क्लीन अप ड्राइव शुरू किया। मुझे याद है जब हम पहले दिन क्लीन अप ड्राइव किया था तो हमें लगा था बहुत सारे लोग आएंगे लेकिन मैं और मेरा दोस्त दो ही रह गए कोई नहीं आया। हम दो ही लोग हो गए क्योंकि बारिश हो रही थी उस दिन, है ना। हम दोनों को तो जुनून था, सबको थोड़ी ना। हम गए वहां पे, हमने फावड़ा शुरू किया। अब बहुत सारे लोगों के साथ तो आपके अंदर हिम्मत होती, लेकिन हम तो दो ही लोग थे। और जब वहां पे हम तालाब साफ कर रहे थे, कोई भी हमसे निकल रहा था, क्यों कर रहे हो, कहां से हो, तो हमारे पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम जवाब दे सके कि हम ये कुछ करना चाहते हैं। कोई भी आता था, हाँ भाई कौन हो, क्यों साफ कर रहे हो, तो हम ये कहते थे जी नगर पालिका से है। अच्छा अच्छा, वो उधर भी करके जाना। मैंने कहा हाँ जी बाबू जी करके जाएंगे।
1: अच्छा, तो रामवीर जी मैं ये पूछना चाहूंगी कि बात तो सही है कि आपको सफाई का किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि जो कचरा होता है वो किसी भी तरह का कचरा हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ वो कपड़ा और पॉलिथिन बैग्स हो, उसमें मेडिकल वेस्ट भी हो सकता है, तरह तरह के केमिकल्स हो सकते हैं, कांच हो सकता है। तो किस तरह के प्रिकॉशंस आप लेते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको सामने आई?
0: देखिए, हम शुरुआत में कोई एक्सपर्ट तो थे नहीं कि हम बता सके मेडिकल वेस्ट है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये प्लास्टिक वेस्ट है। तो हमारे लिए तो सब एक प्लास्टिक में बंद कचरा है, हम तो सबको ऐसे ही उठा के फेंक देते। तालाब क्या है, वो सिंक होल है। आपके घर में कुछ भी निकलेगा ना, आपके रजाई, गद्दे, जूते, चप्पल, कांच, जो भी है, बस उसमें डाल दो जाके। चाहे वो नाला मिल जाए उसमें डाल दो, तालाब मिल जाए उसमें डाल दो। जब हम तालाब को रिस्टोर करते हैं, और कई बार हम जब डीवॉटरिंग करके उसको खाली करते हैं पूरे तालाब को, ताकि नीचे से खुदाई कर सके वापस से, आप यकीन मानिए कई बार 1 से 1.5 मीटर की एक लेयर मिलती है, पूरी कचरे की लेयर मिलती है। मान लो यही बोतल है, आप इसको फेंकिए तालाब में, अब दो चांस हो सकते हैं, या तो ये इसमें ढक्कन लगा हुआ है और हवा भरी हुई है तो ऊपर तैरेगा, या इसका ढक्कन खुला हुआ है तो पानी भरेगा जाके नीचे बैठ जाएगा। तो जब हमने तालाब को खाली किया तो 1 से 1.5 मीटर की हमें लेयर मिली, और उस लेयर में सिर्फ बोतल नहीं है, उसमें सब कुछ है, उसमें जूते हैं, उसमें चप्पल है, उसमें कांच है, घर का बचा हुआ सामान है, बहुत सारी मूर्तियां हैं, तमाम सारी चीजें हैं जो सालों से वहीं पे पड़ी पड़ी सड़ रही हैं। और कई सारे तालाबों में तो ऐसा भी हमने देखा, क्योंकि जैसे जलकुंभी और सिल्ट और गाद और सिलज हो जाती है, तो जानवर भी फंस के मर जाते पानी पीने के चक्कर में, लेकिन उसमें गाद इतनी सारी हो जाती है, उस कचरा डलते वहीं फंस जाता है। तो कई तालाबों में सहता हुआ हमने पानी निकाला तो नीचे ऐसे कंकाल के कंकाल खड़े हुए मिले, जो नीचे फंस गए थे, पानी में डूब गए थे वापस, ऐसे पड़े हुए मिले। बहुत दुख लगा उनको देख के हमें, क्योंकि गांव वाले को लगता था भैंस चोरी हो गई है। भैंस चोरी नहीं हुई थी, भैंस डूब के मर गई थी तालाब में।
1: जब आप कचरा उठाते हैं, आपकी टीम जाती है किसी लोकेशन पर, तो किस तरह से वो कलेक्शन करते हैं कि उन्हें हार्मफुल इफेक्ट से?
0: देखिए, उसके लिए जो सेफ्टी टूल्स होते हैं, एक स्पेशली ग्लव्स आते हैं जो इस तरह के वेस्ट को एक तरह से उठाने के लिए काम आते हैं, वहाँ पे प्रॉपर मास्क, और हमारे पास ना एक ड्रेस होती है प्रॉपर जो पहन लेते हैं तो यहाँ तक आती है, वो बहुत मोटी होती है, प्लस उसमें पानी भी नहीं घुसता है, सेफ्टी किट होती है, तो उसी को पहन के वो तालाब में घुसते हैं। एक तो आपके कपड़े भी गंदे नहीं होते, प्लस आपको नहीं पता कि पानी में क्या केमिकल घुला हुआ है, तो वो भी आपके टच में नहीं आता है, और वो उसी तरह से फिर वो उठाते हैं। अब तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, नगर पालिका गाड़ियों में भी अलग अलग बॉक्स बने हुए होते हैं, क्योंकि हम कचरे को निकाल तो सकते हैं लेकिन उसको अपनी मर्जी से डिस्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं क्या करूंगा, एक्स जगह से उठा के वाई जगह पे डाल दूंगा, बात तो एक ही हुई। तो इसलिए हम जब भी कोई तालाब करते हैं तो वो एक उसमें मल्टीपल पार्टी होती है, एक ट्राईपार्ट एग्रीमेंट होता है, एक होता है कॉर्पोरेट या स्पॉन्सर, एक होता है हम एग्जीक्यूटिंग पार्टनर, एक होता है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जहाँ पे भी उनका निस्तारण एक प्लांट है वहाँ तक उसको लेके जाए। जी जी, लेकिन अभी क्या है, टाइम के साथ हमें भी नॉलेज हुई है, तो उसको अच्छे से सेग्रीगेट करते हैं, और जिस तरह से उसका एक आधुनिक तरीका होना चाहिए उसको सेग्रीगेट करने का, निस्तारित करने का, उसी को निस्तारित किया जाता है। क्योंकि तालाबों में सिर्फ 2-3 तरह का ही वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, इनऑर्गेनिक वेस्ट है। ऑर्गेनिक वेस्ट तो तालाब के अंदर चला जाता है, स्लज ले लेता है। इनऑर्गेनिक वेस्ट जूते, चप्पल, प्लास्टिक, ये सारे हमने क्या है, कुछ स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, वो प्लास्टिक उनको देते हैं, उस प्लास्टिक से हमें वो बेंच, ट्री गार्ड, मेज, उसको मोल्ड करके वापस से पिंगला के वो हमें देते हैं, और उसी बेंच को हम तालाब किनारे रख देते हैं वापस। अच्छा। ताकि उसी बेंच पे बैठ के लोग शाम को फिर तालाब को निहारे।
1: तो पूरा आपने एक ये सिस्टम क्रिएट कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली वो अच्छे तरह से वो जो कचरा है वो जा रहा है, और स्टार्टअप उसे किसी अच्छे फॉर्म में लेकर वापस कर रहे हैं। तो जब आप तालाबों को पुनर्जीवन देने की कोशिश करते हैं, उनकी सफाई करते हैं, तो लोकल्स का किस तरह से सपोर्ट मिलता है या विरोध करते हैं, क्या रिएक्शन?
0: देखो, लोकल दोनों तरह के ही है। जिन लोगों ने तालाब के किनारे घर बनाया हुआ है, उनका हमेशा सपना रहता है कि अगले साल 100 गज और कब जाएंगे, उससे अगले साल 100 गज और एंक्रोचमेंट करेंगे। उनका जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है ना तालाब को बचाने की, वो सबसे ज्यादा तालाब को कब्जाने की फिराक में रहते हैं, और ये 90% सक्सेस रेट है मेरी इस बात का। आप कहीं भी जाके देखिए, तालाबों को उन लोगों ने कब्जाया हुआ है जो तालाब के किनारे पे रहते हैं, क्योंकि वो उस जगह को अपनी मानने लगते हैं। उनका डायरेक्टली कोई फायदा नहीं हो रहा है तालाब से, इनडायरेक्टली तो बहुत सारे हैं भाई। पर्यावरण बच रहा है, आसपास का माहौल ठंडा होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट मिलती है। डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली तब मिलता था जब पानी पीते थे उस तालाब से, जब उसमें नहाते थे, जब उसमें से मटका भर के लाते थे। तो इसलिए अब उसको लैंडफिल की तरह यूज करते हैं। ऐसे लोग तो हमेशा विरोध करते हैं जो उसको कब्जाना चाहते हैं, कुछ भी करके आपका काम रुकवाना चाहते हैं। दूसरे टाइप के लोग हैं जो थोड़े अवेयर हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा है कि सपोर्ट करने वाले लोग अभी भी भारत में विरोध करने वालों से ज्यादा हैं, इसलिए शायद हमारा काम चल भी रहा है। दूसरा, जो अलग अलग टाइप के लोग मिलते, कुछ लोग हैं जैसे आज हमने तालाब पे काम शुरू किया, शाम तक आ जाएंगे, पहले ये बताइए पैसा कहाँ से मिला, क्यों कर रहे हो, वो सारे लोग हैं। कुछ होते हैं जो अच्छी सलाह भी देते हैं कि भाई यहाँ पे ये पेड़ लगाइएगा, क्योंकि मुझे लगता है हम लोगों को इसलिए उसमें पार्टिसिपेट कराते हैं, इसलिए हम जन भागीदारी करते हैं उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि तालाब एक दिन में तो मरा नहीं होगा, तालाब को मरने में 30-40-50 साल लगे हैं, और तालाब को मरते हुए उन्हीं लोगों ने देखा है जो उस गांव में रहते हैं, इसलिए उस तालाब के बारे में सबसे ज्यादा, चाहे उसकी हिस्ट्री हो चाहे मरने की कहानी हो, उन्हीं लोगों को पता है जो वहां पे रह रहे हैं, इसलिए हम उसको पार्ट बनाते हैं और हम बताते हैं कि आपको ही रेस्टोर करना है, हम तो सिर्फ आपको सपोर्ट करने आए हैं। तो दोनों तरह के लोग मिलते हैं, बहुत सपोर्ट भी करते हैं, बहुत विरोध भी करते हैं।
1: तो जैसे आपने एक बार किसी तालाब की सफाई कर दी, उसको पुनर्जीवन मिल गया, तो बाद में उसकी कौन देखभाल करता है?
0: अब मान लो अगर हम घर बना रहे हैं, या मेरा खुद का खेत है, या मेरा खुद का प्लॉट है, हमेशा वही देखभाल करेगा जिससे उसकी इनकम जुड़ी हुई है, या जो ऑनर है उस जगह का। तालाबों के साथ इश्यू क्या है, तालाबों का कोई ऑनर नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जब तालाबों को रेस्टोर करते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि तालाबों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाए। सेल्फ सस्टेनेबल बनाए मतलब तालाब अपने मेंटेनेंस का खर्चा खुद निकाले, तालाब अपने लिए इनकम करे। सिंगाड़ा कहाँ से आता है? तालाबों से। लोटस कहाँ से आता है? तालाबों से। मछली कहाँ से आती है? तालाबों से। और आजकल ये बिहार में तो मखाना देखिए, तालाबों से। बहुत सारी चीजें हैं जो तालाबों से आती है। और अब दिल्ली में, गुड़गांव में तो तालाब इको टूरिज्म के लिए, आप तालाब के किनारे रेस्टोरेंट खोलिए और एक दूसरी जगह खोलिए, तालाब किनारे वाला के इनकम ज्यादा होगी। तो तालाब अपने लिए इनकम करना सीख तो तालाबों की इज्जत भी बढ़ेगी, और इज्जत बढ़ेगी मतलब तालाब के किनारे वाले जो रेस्टोरेंट है या कोई भी चीज है वो आपको मेंटेन करेंगे। तो इसलिए हम तालाबों को इस तरह से एक्वा कल्चर, इको टूरिज्म या किसी ना किसी एक्टिविटी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि उसका अगर कोई 5 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं तो वो 50,000 रुपए तालाब के मेंटेनेंस पे खर्च करें। अदरवाइज तो फिर हम अपने ऊपर ले लीजिए भाई, अगर हम ये उम्मीद करके चलें कि मैंने तालाब को रिस्टोर कर दिया और अब जनता इसको खुद ही मेंटेन कर लेगी, तो हम भी जनता है। हम महीने में कितनी बार जाते हैं आसपास के तालाबों को मेंटेन करने के लिए? मैं कितनी बार जाता हूँ, आप कितनी बार जाते हैं, आप और जो इस तरह की बातें करते हैं वो कितनी बार जाते हैं? तो तालाबों को हमेशा वही मेंटेन करते हैं जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे कुछ फायदा।
1: तो जैसे आपने किसी तालाब को रिवाइव किया और कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद आप पलट कर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर पक्षी आने लगे, जीव जंतु आने लगे, एक जनजीवन वहां पे पनप रहा है, तो देखकर कैसा फील होता है, क्या इमोशंस होते
0: हैं? बहुत अच्छा लगता है।
1: कोई एक्सपीरियंस भी हो तो बताइए।
0: हम क्या है, हमारे एक USP है तालाब रेस्टोर करने का। हम जब भी कोई तालाब बनाते हैं तो उसके बीच में नेस्टिंग आईलैंड बनाते हैं।
1: अच्छा।
0: बीच में छोटे छोटे टापू बनाते हैं, उस टापू पे वहीं की लोकल नेटिव घास भी लगाते हैं। उसका हमारा जो पर्पज है नेस्टिंग आईलैंड बनाने का, वो ये है क्योंकि हमें लगता है कि देखो पिछले 50-100 साल में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आई है। आजकल तो जो घरों में फिल्टर है वो भी AI वाले आ रहे हैं, लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी आई किसके लिए है? इंसान ने बनाई है, इंसान के लिए आई है। आज से 100 साल पहले एक तालाब जिसमें इंसान भी उतना ही डिपेंड था उस तालाब पे और एक पक्षी भी उतना ही डिपेंड था। इंसान के पास तो पानी आ गया, पाइपलाइन से आ गया, RO से आ गया, रिमोट से आ गया, लेकिन उसके लिए तो आज भी उतना ही रिलेवेंट है वो तालाब। तो जैसे ही मेरी पूर्ति हुई, जैसे ही मेरी जरूरत खत्म हुई, अब मैं तालाब को पाट दे रहा हूँ, अब मैं तालाब को मार दे रहा हूँ, अब मैं तालाब को कूड़ा घर बना दे रहा हूँ? नहीं भाई, आपके लिए ही तो टेक्नोलॉजी आई है, उनके लिए थोड़ी ना आई है। वो तो आज भी तालाबों पे उतने डिपेंड है। दूसरा, अभी पॉपुलेशन उतनी है, ट्रैफिक साउंड उतना है, तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि अब डेवलपमेंट क्या है, बिल्कुल या तो तालाब जो है वो शहर के बीच में आ गए या रोड किनारे आ गया, पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पे बैठने की व्यवस्था करते हैं
1: पक्षियों के।
0: बिल्कुल। आप और मैंने अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाए, आप इस साल बनाइए आईलैंड, आइलैंड और अगली साल देखिए कम से कम आपको 100 बर्ड्स मिलेंगे, एक्वेटिक बर्ड्स मिलेंगे, बहुत सुंदर सुंदर बत्तखें मिलेंगे, क्योंकि बीच में फिर आप वो ना घोंसला रख सकती है, बीच में वो अपना नेस्ट बना सकती है, बीच में अपने बच्चों को पाल सक, अपने बच्चों को ट्रेन कर सकती है। मैं अभी एक महीने पहले गया था एक तालाब पर, ग्रेटर नोएडा में हमने वो डेवलप किया था दुजाना गांव में, मैंने बीच में देखा तो मिट्टी के ना बहुत सारे छोटे छोटे होल थे नेस्टिंग आइलैंड के ऊपर, वहां बत्तखों ने अपने बच्चे छिपाए हुए थे और पूरा तालाब एकदम बत्तखों से भरा हुआ है। अब सोचिए अगर वो बीच में नहीं होता, किनारे पे तो कोई नहीं रखेगा, रखेंगे भी तो कुत्ते बिल्ली खा जाएंगे, कोई बच्चा उठा लेगा। तो जब भी मैं एक ऐसे तालाब पे जाता हूँ जो मैंने 2 साल पहले रेस्टोर किया था और आज पूरा पक्षियों से भरा हुआ है, बत्तखों से भरा हुआ है, जलीय जीवों से भरा हुआ है, उसको देख के जो तसल्ली मिलती है दिल को, बुरा नहीं लगता कि मैंने जॉब छोड़ दी।
1: अब मैं इसी पे आ रही थी कि इतना मुश्किल रहा होगा कि जॉब छोड़ के आप फुल टाइम इस काम में लग रहे थे, अपने डिसीजन से ज्यादा मुश्किल रहा होगा घर वालों कन्विंस करना, उन्हें समझाना, क्योंकि आप अच्छी पढ़ाई लिखाई कर चुके थे, तो उसके बाद कैसे कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को?
0: क्या है, 5 भाई बहन है अभी, मैं सबसे छोटा हूँ और मेरी मम्मी बताती है कि हम 5 नहीं, हम 10 भाई बहन थे, 10 में से 5 नहीं रहे, 5 बचे और 5 जो भी नहीं रहे वो गरीबी के कारण नहीं रहे। 5ों में से भी मैं ऐसा हूँ जिसने 11th क्लास में पढ़ाई की, पहली बार घर का सबसे छोटा, क्योंकि मेरे बाद तो नेक्स्ट जनरेशन शुरू होने वाली थी, हमारे बच्चे आने वाले थे, तो आई वॉज द पर्सन जिसने 11वीं क्लास में एडमिशन लिया और मैं कॉलेज गया पहली बार और जिसने पहली बार एमएनसी में जॉब भी की। तो मेरे घर वालों के लिए तो कितना बड़ा अचीवमेंट था कि कोई कॉलेज गया है। जब मैं कॉलेज गया था तो मैं कॉलेज में घुसने के अगले दिन ही मेरे इतने सारे रिश्ते आने वाले थे, क्योंकि रिश्तेदारियों में कोई था नहीं जो कॉलेज
1: पढ़ा लिखा और एमएनसी में जॉब
0: करने वाले। जबकि जो मेरे साथ के थे वो बता रहे हैं कि मेरे दादाजी वहां के ग्रेजुएट थे, मेरे परदादाजी वहां दरोगा थे और मैं वहां पहली बार कॉलेज में जा रहा हूं। वहां पे मुझे शर्म लग रही थी कि हम कितने पीछे हैं, लेकिन मेरे घर वालों को लग रहा था कि हम कहां पहुंच गए चांद पे। प्राउड फील कर रहे थे। घर वालों को उम्मीद थी और जब जॉब लगती है किसी की, पहली बार कोई जॉब करता है तो अलग बात होती है। तो जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि जॉब छोड़ना मेरे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आपके पास खोने को कुछ है ही नहीं तो आपको डर किस बात का, जॉब ही तो अगले साल फिर लग जाएगी, यहाँ छोड़ के कहीं और लग जाएगी। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जस्टिफाई कैसे करूं। तो उन दिनों में क्या था, ये 2016 से 18 जॉब किया था, तो 18 में जब मैंने जॉब छोड़ी तो नक्सली वाला कुछ चल रहा था इधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तरफ, झारखंड की तरफ। मैं जॉब छोड़ चुका था और मैं जॉब छोड़ने के 1 महीने तक मैं घर से उसी समय निकलता था जिस समय जॉब के लिए निकलता था।
1: अच्छा।
0: और उसी समय घर पे आता था जिस समय जॉब से आता था,
1: तो क्या बताया,
0: ताकि घर वालों को रियलाइज ना हो।
1: अच्छा।
0: और मैं करता क्या था उस बीच की, कहीं पे कोई पर्यावरण का सेमिनार हो रहा है, 1-2 भैया थे जो काम कर रहे थे उनके ऑफिस पे जाके बैठता था, कहीं ऐसा प्रोग्राम चल रहा है उसको जाके सुनना है, और कई बार उधर से मेट्रो में बैठ के आता था, यहाँ एक सीपी में बीच में गोल चक्कर है बहुत बड़ा सा, उस पे जाके बैठ जाता था। तो वो मेरा काम था। तो मैंने फिर एक दिन ऐसे ही कहा अपनी मम्मी से कि वहां जो है मेरा ट्रांसफर उधर हो रहा है छत्तीसगढ़। तो मम्मी ने पूछा छत्तीसगढ़ कहाँ पढ़ता है, क्योंकि मम्मी तो हमारी कभी स्कूल देखी नहीं कैसा होता है स्कूल, उन्होंने छत्तीसगढ़ क्या, उन्होंने अपने नोएडा के बाहर कभी जाके नहीं देखा। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा छत्तीसगढ़ वही जगह है जहाँ पे आजकल नक्सली और बहुत हमले हो रहे हैं जो टीवी में देखा था। तो उसने कहा नहीं नहीं बेटा वहां नहीं जाना, तुम जॉब छोड़ दो कहीं और ढूंढ लो।
1: अच्छा।
0: तो मैंने कहा ठीक है कल छोड़ दो।
1: तो पहले आपने पूरा वो भूमिका तैयार की, उसके बाद
0: क्योंकि जस्टिफाई करने में मुझे समय लगा उसको कि उनको बताऊं कैसे, है ना, मैं बोलूंगा क्या, हाल तो मेरी जॉब मेरा डिसीजन वो वाला नहीं है, बट हम गांव के लोग हैं, हमें पेरेंट्स को भी साथ लेके चलना है, को भी बुरा नहीं फील कराना है, उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई है हमसे हमारे। लेकिन पिताजी इस काम से बिल्कुल ना खुश थे, वो मुझसे नहीं कहते थे लेकिन मेरी मम्मी को बहुत डांटते थे, तुम्हारी वजह से ये कर रहा है, तुम बोलती नहीं हो, कुछ ही है, घर का नाश हो जाएगा, ये है वो है।
1: तो ऑब्वियसली लगता है कि बेटा इंडिपेंडेंट हुआ,
0: बेटा जो है
1: कर रहा है,
0: तो छोड़ के गलत डायरेक्शन में जा रहा है, है ना, उनके लिए गलत डायरेक्शन थे, और कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि बच्चा इनसिक्योर फील्ड की तरफ। तो कई बार ऐसा होता था कि न्यूज पेपर में मेरा आता था, आज इंटरव्यू देकर आया हूं तो कल आएगा ही आएगा, तो मैं गली के बाहर खड़ा हो जाता था, न्यूज पेपर वाले को रोकता था, वो पेज फाड़ लेता था और बोलता था हाँ तुम ले जाओ इसको, तो पिताजी तक नहीं पहुंचता था। लेकिन भाई गांव में आया तो गांव वाले खुद ही आ जाते थे, आज तो तुम्हारे लड़के का।
1: तो वो बताइए मुझे घटना कि जब मन की बात में पीएम मोदी ने आपका जिक्र किया तो फिर क्या माहौल था, आपने सुना था वो?
0: नहीं, मैं तो सुन नहीं पाया था, उस दिन मैं अपने घर पे ही था और लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, मेरा भतीजा आया था, मैं ऊपर था फर्स्ट फ्लोर पे, वो ग्राउंड फ्लोर पे था, तो वो भगा भगा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है। तो मैंने तुरंत लैपटॉप साइड में रखा और मैं भगा भगा नीचे गया, और जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया। तो मैंने उसको बोला कि तुम मजाक क्यों करते हो, अरे नहीं अंकल अभी देखा था, सच में देखा था मैंने। तो मैं वापिस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था।
1: अच्छा।
0: और बार बार बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे, कॉल थे, मेरे जितने भी लोग मुझे जानते थे आसपास के तो सब लोग कॉल करके बधाई देना चाहते थे। तो जब मैंने एक दो मैसेज पढ़ा तो फिर मुझे अपने भतीजे की बात पे यकीन आया कि हाँ वो सही कह रहा था। उसके बाद से जो लोग कुछ मजाक उड़ाते थे क्या ये ऐसा काम करते हो, ये करते हो,
1: वही लोग,
0: तो मेरे पास एक जस्टिफिकेशन और आ गया कि जब प्रधानमंत्री जी

0: तारीफ कर सकते हैं तो आप कौन हो कि मजाक उड़ाने
1: और आपके
0: वाला।
1: पिताजी का क्या रिएक्शन था?
0: देखो गांव में ना हमारे एक बेटा और पिताजी के बीच में इस तरह के कन्वर्सेशन होते नहीं है। उनको मनी मन खुशी हुई होगी लेकिन उन्होंने कभी कहा नहीं कि बेटा आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ऐसा सिर्फ हम टीवियों में देखते हैं कि पिताजी कहते हैं जाके।
1: तो जब इतने बड़े लेवल पे आपकी तारीफ आ गई और सब कुछ अच्छा चलने लगा, तो आपने अपने पिताजी को फिर कैसे कन्विंस किया?
0: नहीं, मैं तो क्या करता था कि जैसे शुरू में जब तालाबों की बात आती थी तो हमारे पिताजी चाहते थे कि तुम कुछ भी करो लेकिन ऐसा काम करो जिससे पैसा आए। तुम्हें इसलिए पढ़ाया ताकि तुम पैसे कमा सको। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं जब भी तालाबों के बारे में पूछते थे तो मैं कहता था मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मछली पालन में बहुत पैसा आए। हाँ,
1: अच्छा
0: इससे मछली पालन करेंगे और करोड़ों रुपए कमाऊंगा मैं। तो वो उस बात से खुश हो जाते थे। अच्छा, मछली पालन का काम करना है? मैंने कहा हाँ जी, मैंने सुना उसमें बहुत पैसा है, 1 साल ट्राई कर लेता हूँ, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मेरे पिताजी को किसी भी काम से कोई दिक्कत नहीं है जिससे पैसा आए। तो इसलिए मैंने तालाबों के काम को मछली पालन से जोड़ के मैंने उनको जब बताया तो ही साइड की ठीक है भाई, मछली पालन में मैंने भी सुना है बहुत पैसा
1: तो
0: है।
1: कभी फिर ट्राई किया आपने सच में मछली पालन?
0: नहीं, मेरे साथ के करते हैं ना,
1: अच्छा
0: मैंने मछली पालन कराया। अगर तालाबों को सस्टेन कराना था तो किसी ना किसी तरह से एक्वा कल्चर से जोड़ना है। अदरवाइज तो आज आप तालाब साफ करेंगे अगले साल फिर उतना ही भर जाएगा। आप 1 साल में तालाब ही तो रेस्टोर कर सकते हैं, लोगों का माइंडसेट थोड़ी ना रेस्टोर कर सकते हैं। जो लोग कचरा फेंक रहे हैं उनको दिमाग को थोड़ा ना अंडू कर सकते हैं कि आज से कचरा फेंकना बंद। क्योंकि आदत खराब होती है, धीरे धीरे धीरे खराब होती है तो धीरे धीरे सही भी होती है। अब हमारा हाथ चलता ही नहीं है डस्टबिन की तरफ। अब तो माननीय प्रधानमंत्री ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और ये स्वच्छ भारत मिशन चलाया तो थोड़ा थोड़ा आदत में आ रहा है डस्टबिन की तरफ, अदरवाइज तो फेंकने की तरफ ही चलता है। मैं तो जब कॉलेज में जाता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, बच्चों को उदाहरण देता हूँ कि भाई अगर मैं आपको आज होमवर्क देके आऊँ, होमवर्क देके जा रहा हूँ कि आपको नेचुरल सीनरी ड्रॉ करके लानी है कल, तो मुझे पता है 90% बच्चे क्या ड्रॉ करके लाएंगे। दो पहाड़ पीछे से उड़ता हुआ, एक पक्षी आगे, झोपड़ी, एक
1: सूरज
0: छोटा सा
1: निकल रहा
0: पॉन्ड,
1: है
0: सूरज निकल रहा है, कहाँ से आया ये, है ना? क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही बनाते आ रहे हैं। लेकिन अब वो सब झूठ है, अब ऐसे तालाब नहीं बचे हैं। अब तालाबों की असली पिक्चर बनाइए ना कि तालाब कैसे कचरे से भरे हुए हैं।
1: तो अब तक आपने कितने तालाब साफ किए हैं और उन्हें पुनर्जीवन दिया है?
0: अभी तक तो हम 100 से ज्यादा तालाब कर चुके हैं
1: अच्छा
0: और ये 100 तालाब कोई बड़ा है कोई छोटा है ना, कोई 50-50 एकड़ के भी है जिसमें एक में से भी 50 तालाब निकल सकते हैं छोटे छोटे। है क्या, जैसे उत्तर भारत में आप रहेंगे तो यहाँ पे अगर 500 एकड़ की भी कोई वाटर बॉडी है ना, ह्यूज वाटर बॉडी, उसको भी तालाब ही बोलेंगे। वैसे आमतौर पर तालाब एक छोटी वाटर बॉडी है और झील बड़ी वाटर बॉडी है, लेकिन यहाँ पे उत्तर भारत में आप चाहे कितनी भी बड़ी वाटर बॉडी ले लीजिए उसको तालाब ही बोलेंगे। उदाहरण के लिए कहता हूँ भोपाल का बड़ा तालाब, आप उसको इस किनारे खड़ा होकर देखिए आपको दूसरा किनारा ही नजर नहीं आता और वो समुंदर लगता है आपको, लेकिन नाम क्या है, बड़ा तालाब, उससे थोड़ा छोटा होता तो छोटा तालाब। तो इसलिए यहाँ अपने झील भी रिवाइव करिए तो वो भी तालाब ही है। तो ऐसे कर करके हमने 100 से ज्यादा तालाब अभी तक रिवाइव किए और अभी हम 11 स्टेट्स में काम कर रहे हैं एक साथ।
1: अच्छा
0: हमने एक गाँव से शुरू किया था लेकिन अभी हम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, पौंडीचेरी, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, एवरीवेयर वी आर वर्किंग।
1: आने वाले समय में किस किस जगह को, कौन से तालाब आपने टारगेट किए कि अब यहाँ पर काम करना
0: नहीं,
1: है?
0: टारगेट हम नहीं करते हैं। हम क्या है, अगली साल के लिए हमेशा एक नई लिस्ट बनाते हैं
1: अच्छा
0: और वो लिस्ट बनती है लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग। भाई मान लो आप स्पॉन्सर है, आप किसी गांव से निकले हैं और आप यूएस में रहते हैं और आपके पास अभी पैसे की कोई कमी नहीं है और आप बोलते हैं मुझे अपने गाँव के तालाब की बहुत याद आती है, मैं जिस तालाब में नहाया हूँ अभी वो एकदम कचरा घर बन चुका है, मैं इसको रिवाइव कराना चाहता हूँ, तो हमारी टीम जाती है उसको रिवाइव करती है, जो खर्चा होता है वो देते हैं,
1: अच्छा तो इस तरह से फाइनेंशियल हेल्प
0: ना?
1: भी मिल जाती
0: हाँ,
1: है और आपकी
0: फाइनेंशियल हेल्प
1: टीम।
0: मिल जाती है। दूसरा है कुछ कॉरपोरेट है, मान लो मैं एक कंपनी हूँ और मैंने इस जिले में एक अपनी कंपनी लगाई हुई है और मैं पूरा मेरा प्रोडक्शन ग्राउंड वाटर से है, मान लो मैं कोल्ड ड्रिंक ही बना रहा हूँ, मैं पैक्ड वाटर बना रहा हूँ, तो मैंने ऊपर वाला प्लॉट खरीदा है उस जिले का या उस गाँव का, मैंने नीचे का पानी नहीं खरीदा है। क्योंकि जब मैं वाटर एक्सट्रैक्ट करता हूँ, स्पेशली ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो वो उसी प्लॉट का पानी नहीं कि निकल के आता है, वो वहां से 1 किलोमीटर के दूर का भी पानी आता है, वो 500 मीटर दूर का भी, लेकिन वो तो आपने खरीदा नहीं है, आपने तो सिर्फ वो प्लॉट खरीदा है। तो फिर आपकी एक कॉरपोरेट जिम्मेदारी बनती है कि जिस क्षेत्र का आप रिसोर्सिस यूज कर रहे हो, जिस पर पब्लिक का हक था,
1: जी
0: यहाँ की हवा पर पब्लिक का हक है, जितना एक कंपनी के मालिक का हक है उतना ही गाँव के एक आदमी का हक है, तो आप कम्युनिटी रिसोर्सिस को यूज कर रहे हो फ्री में, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस सोसाइटी के लिए, उस क्षेत्र के लिए आप कुछ करें। इसीलिए CSR लाया गया, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो बड़े कॉर्पोरेट है वो अपने प्रॉफिट का 2% निकाल के अलग रखते हैं और उस क्षेत्र के

0: लिए खर्च करते हैं जहां पे उनका प्लांट काम कर रहा है, और ये मैंडेटरी है, ये हर कॉर्पोरेट को करना ही करना है। हम क्या करते हैं, उन कॉर्पोरेट को बोलते हैं कि भाई आपकी फैक्ट्री यहाँ पे है, आपसे 20 किलोमीटर दूर एक तालाब है जो गांव वाले रिवाइव कराना चाहते हैं और हम उसको रिवाइव करने के लिए रेडी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है हमें सपोर्ट करने की। तो वो CSR के अंतर्गत जरूरी नहीं है सब मदद करते हैं, कुछ कॉर्पोरेट हमारी मदद करते हैं, और ऐसे करते करते अभी तक हमारा 60 से ज्यादा कॉर्पोरेट पार्टनर्स हमारे बन चुके हैं अलग अलग क्षेत्र।
1: जैसे मेरे जैसे कोई आम जन के लोग अगर जुड़ना चाहे सफाई के या रिवाइव करने के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं?
0: देखो, शुरुआत तो घर से होती है। अगर तालाब में जो कचरा है वो भी हर इंडिविजुअल का ही कचरा है ना, किसी ने जाके एक ट्रक कचरा तो डाला नहीं है एक साथ, तो हमारा हर घर से एक एक बोतल निकलती है जब वहाँ पे एक ट्रक कचरा होता है। तो जब मैं स्कूलों में जाता हूँ, मैं बच्चों को बोलता हूँ, अगर आपने 5 किलो प्लास्टिक स्कूल में इकट्ठा कर लिया तो मतलब आपने 1 स्क्वायर मीटर पॉन्ड आपने साफ
1: कर लिया। बेहतर है कि उसे गंदा ही ना किया जाए।
0: हाँ, तो तालाब को रिवाइव करने के दो तरीके हैं, एक आप जाके तालाब से कचरा निकाले, एक आप तालाब में कचरा जाने ही ना दे। तो जब आप जाने नहीं देते तो वो ज्यादा एफिशिएंट होता है और ज्यादा काम का होता है, इसलिए हम स्कूल के बच्चों को जोड़ते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे ही बदलाव ला पाएंगे, इसके अलावा और कोई, क्योंकि जब आप बड़े पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं और एक छोटे पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं, मतलब अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो बड़े पेड़ का सक्सेस रेट बहुत 5-10% होता है, बड़े पेड़ नहीं बच पाते, छोटे पेड़ तो आप लगाते ही रहते हैं, जंगल लगाइए, तो वो एडॉप्ट कर लेते हैं नई जगह को, उनको अंदर सीखने की क्षमता होती है। तो इसलिए हम बच्चों को जाके बहुत सारी वर्कशॉप करते हैं, हम बच्चों के साथ जाके बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो तालाबों को गंदा ना हो।
1: मतलब हर बड़े काम की शुरुआत जो है वो छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे बदलाव से की जा सकती है। रामवीर जी, आप यहाँ पर आए और हमारे पॉडकास्ट में इतने सहज तरीके से आपने इतनी अच्छी बातें बताई जल संरक्षण के बारे में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप भी ये छोटे छोटे बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं, कचरा कम फैलाएं ताकि जो हमारी वाटर बॉडीज है वो गंदी ना हो। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए नीति को, नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे तालाबों के संरक्षण और विकास के लिए प्रयासरत पॉन्डमैन के नाम से प्रसिद्ध रामवीर तंवर के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और यूट्यूब चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं, सुबह के 9:40 हुए हैं। आप सबका स्वागत आपके अपने सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम। श्रोताओ, सावन का महीना समझिए बस आ ही गया है। वैसे हमारे उत्तराखंड में तो हरेला पर्व के रूप में हम सावन के महीने की शुरुआत कर चुके हैं। इस प्यासी धरती, तपती आंखों का इंतजार अब बस खत्म हुआ है, और इसी सावन का इंतजार हमारे कुछ गीत जो सावन पर बने हुए हैं वो भी कर रहे हैं कि सावन आए तो उनको भी हम आपके लिए अपने केंद्र से सुनाए। तो आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत। फिल्म है सावन को आने दो, जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की आवाज में, गौहर कानपुरी के बोल हैं और राज कमल का संगीत।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोता, बारिश की बूंदें कुदरत को हर दिन सवार रही हैं और इसी सावन का इंतजार हमारे कुछ फिल्मी गीतकारों को भी रहता है। सावन का महीना हमारे गीतकारों फिल्मकारों का भी पसंदीदा महीना है। मूड चाहे जैसा भी हो, मिलन का हो जुदाई का हो, सावन की बूंदों से हर जज्बात सराबोर नजर आता है। ऐसा ही एक गीत जिसमें इंतजार भी है और प्यार भी। फिल्म है गजब, आवाज दी है लता मंगेशकर ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओ, सावन के इस हंसते खिलखिलाते मौसम में बारिश की बूंदें जब चेहरे को छूती हैं तो उसका एक अपना ही अलग मज़ा है। और ऐसे में जब सनसन करके हवा चलती है ना, तो उस पवन के उस शोर के साथ एक गीत हमारे कानों पर गूंजने लगता है और हम मन ही मन उस गीत को ठीक करने लगते हैं कि शोर नहीं, शोर शोर। कुछ ऐसा हमारे मन में हमेशा चलता रहता है जब भी हम इस गीत को सुनते हैं। और सावन का महीना हो और ये गीत ना हो तो कुछ अधूरापन तो लगेगा ही। तो आइए आपको सुनवाते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में मिलन फिल्म का गीत, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: श्रोताओ, बॉलीवुड ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन हो गया, पर सावन के गीतों का कोई तोड़ नहीं मिल पाया। गर्मी में तपती धरती और सूखती जमीन पर जब बदरा की बूंदें पड़ती हैं तो मन मयूर कुछ यूं झूम उठता है। हवाओं के हिचकोलों पर सवार बदरा बरसते हैं तो सावन का स्वागत कुछ इसी अंदाज में होता है। आइए आपको सुनवाते हैं परख फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल हैं और सलिल चौधरी का संगीत।
1: सजना

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ सदाबहार फिल्मी गीत अब यहीं पर संपन्न होते हैं। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, सुबह के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप गीता नेगी से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। केंद्र सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में उत्तराखंड ने पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों, अग्निवीरों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, जनता को सुलभ और पारदर्शी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के हर जिले में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित की जाएगी। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने 9वीं और 11वीं के छात्रों को डेटा अपडेट करने की प्रक्रिया को शुरू किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की डॉक्टर पलक मित्तल ने महिलाओं से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में देहरादून समेत 4 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया। शेष जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई। कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसबी में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए बीए प्रथम सेमेस्टर के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई। केंद्र सरकार ने देश में खेलों के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम को लागू करने की अधिसूचना जारी की। चमोली के जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित करने वाले स्थलों के चौड़ीकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसबी में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए बीए प्रथम सेमेस्टर के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत पौड़ी में 5 नई औद्योगिक इकाइयों को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा, राज्य महिला आयोग की समस्याओं के त्वरित समाधान और न्याय दिलाने के लिए कार्य कर रहा है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:02 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हाय दोस्तों, स्वागत है आपका लम्हे प्रोग्राम में और मैं हूं आपका आरजे चेतन। आसपास के वातावरण साफ सुथरा हो तो किसे अच्छा नहीं लगता है, और इसमें नगर निगम और स्वच्छता कर्मी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वो तो अपने तरफ से पूरा योगदान देते हैं, परंतु इसके बावजूद कुछ लोग गंदगी और कचरा करने से बाज नहीं आते। वह भी इंसान ही है, आखिर कितना साफ करेंगे। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास को साफ रखने की जिम्मेदारी स्वयं ही करना है, ताकि साफ सफाई से हम स्वस्थ रहे और हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहे। आसपास की रखो सफाई, इसमें हम सबकी भलाई। स्वच्छ रखेंगे वातावरण, स्वस्थ रहेंगे हम हर पल हर क्षण। घर को हर दिन करें सफाई। हमें हमारे घर के हर रोज सफाई करना चाहिए। वह कचरा इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, इससे कीटाणु पनपते हैं और बीमारियां फैलती है। घर में कुछ ऐसे कोने होते हैं जिसे नियमित रूप से सफाई करना चाहिए, जैसे रसोई घर। रसोई घर जहाँ हमारा भोजन इत्यादि बनता है, उसकी सफाई नियमित होना चाहिए। बर्तन को अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए। गैस स्टैंड बर्तन रखने की जगह सभी जगह साफ करना चाहिए। रोज किचन की झाड़ू लगाना चाहिए, ताकि खाने के साथ हम कोई गंदगी अपने खाने में आने न दे और साफ सुथरा भोजन ही खाए, साफ सुथरा किचन रखे। नियमित पोंछा और धोने जैसे सामान को धोए, बाथरूम को रोज साफ करे, दीवारें साफ करे, कुछ अच्छे से एंटीमाइक्रोबियल यूज करके साफ करे तो और भी अच्छा है। जहाँ हम हमारी गाड़ी रखते हैं वहाँ रोज झाड़ू लगाए और बगीचे में सफाई रखे हो। कोई भी कचरा और प्रयोग में ना आने वाले सामान को इकट्ठा न होने दे। यदि हम हमारे किचन, बाथरूम और पूरे घर में साफ सफाई नहीं रखेंगे तो चचुंडर, कॉकरोच, मक्खी, चींटियां, मच्छर आदि पनपते हैं। और साफ सफाई में अगर हम लापरवाही बरतते हैं, बर्तन और अन्य सामानों के साथ ये गंदगी हमारे मुंह में जाते हैं, जिससे हमें कई तरह की बीमारियां पकड़ लेते हैं। यदि मच्छर पनपते हैं तो मलेरिया, कॉलरा, निमोनिया, पीलिया या सब बीमारी होती है जो कि गंदगी की वजह से फैलती है। इसीलिए हमें हमारा घर और आंगन की सफाई पर नियमित ध्यान देना चाहिए। इसीलिए पूरे घर पर नियमित झाड़ू और पोंछा लगाना चाहिए। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। धूल इत्यादि को पहुंचने और बगीचे में कहीं भी पानी नहीं होने देना चाहिए। किसी भी तरह की गंदगी बीमारी का लक्षण होता है, इसीलिए बचना चाहिए और नियमित साफ सफाई करना चाहिए। कुछ लोगों का सोचना है कि जहां गरीब व्यक्ति रहते हैं वही ज्यादा गंदगी होती है, परंतु ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि गरीबी और साफ सफाई का दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। गरीबी तो इंसान की मजबूरी है, परंतु सफाई तो उसकी जिम्मेदारी है। इसके लिए अमीर या गरीब मायने नहीं रखता, और घर की साफ सफाई में सबकी बराबरी से हाथ बांटने की मंशा होनी चाहिए। केवल घर के बड़े, जिसमें माँ होती है, माँ घर के हर काम को करती है, तो क्या ये घर केवल माँ का होता है? उसमें रहने वाले सभी सदस्यों का नहीं होता है। इसीलिए सभी सदस्यों को मिलजुल कर इसकी जिम्मेदारी उठाना चाहिए, और यह सोच परिवार के हर सदस्य के नजरिए पर निर्भर करता है। बचपन से ही बच्चों की देखभाल माता पिता और घर के अन्य सदस्य करते हैं, लेकिन बच्चे जब थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उन्हें आपको सिखाना होगा कि साफ सफाई रखना जरूरी है। बचपन से ही उसे अपनी सफाई की शिक्षा दे, साथ ही उसे अपने

0: 1039. I repeat, 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat, feedbackamc1@gmail.com.
1: साफ सफाई इंसान की फितरत होती है। वह अपने घर के आसपास तो साफ रखते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं घर ही को अपना समझ और अपने घर के बाहर झूठा और जो भी कचरा होता है उठाकर बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी केवल घर के अंदर तक ही सीमित है। इसीलिए अपना फर्ज भूल जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि सड़क, अपने घर का बगीचा साफ रखना उनकी जिम्मेदारी है। सड़क से ही गंदगी हमारे घर तक आती है और इसके साथ ही कई तरह की बीमारियां भी लेकर आती है। इसीलिए स्वयं साफ सफाई रखें और जो कर्मचारी और नगर निगम की गाड़ियां आती है उसमें अपने घर को साफ रखकर उन्हें अपना पूरा योगदान प्रदान करें। इस प्रकार हम हमारे घर के और आसपास की सफाई, हमारे स्वास्थ्य के साथ ही वातावरण को भी साफ रखते हैं और इसका प्रथम पाठ हम हमारे घर से ही मिलता है। यदि हम हमारे घर को और हमारे आसपास के वातावरण को साफ रखेंगे तो धीरे धीरे शहर और शहर, देश, सभी जगह सफाई दिखने लगेगा। प्रदूषण में जमा हमारे देश की गिनती निचले स्तर पर की जाती है, वही हमें आगे और आगे प्रथम स्थान पर लाना होगा और इसकी शुरुआत हमें हमारे आसपास के वातावरण से शुरू करना होगा। देश की सफाई एकमात्र सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है। क्या इसमें नागरिकों की कोई भूमिका नहीं है? हमें इस मानसिकता को बदलना होगा। With this lovely quote, this is Chetan signing off for today in Lamhe program. I'll get back to you in our next program. Till then, have a great time. Bye.
0: दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat, 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat, feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 10:10 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत, अभिनंदन। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है प्यार ही प्यार फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत। शायरी ना सही मगर कुछ अल्फाज लिख देंगे, तुम्हारे लिए हम अपने जज्बात लिख देंगे। जो देख लें आपको मुस्कुराते हुए तो तुम पे हम पूरी किताब लिख देंगे।

आरजू होनी चाहिए किसी को याद करने की, आरजू होनी चाहिए किसी को याद करने की, लम्हे तो खुद बखुद मिल जाया करते हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं लव इन टोक्यो फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

दिल में आपकी चाहत लबों पे आपका ही नाम है। दिल में आपकी चाहत लबों पे आपका ही नाम है। आप मोहब्बत करें न करें, हमारी जिंदगी आपके ही नाम है। कार्यक्रम का ये गीत दिल एक मंदिर फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में, हसरत जयपुरी की बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।

0: लता मंगेशकर के गाए पगला कहीं का फिल्म केसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। इस गीत को लिखा था SH बिहारी ने और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप गीता नेगी से प्रादेशिक समाचार सुनिए।

0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ जिले के पांखू में विद्युत सब स्टेशन का निर्माण करने के लिए 5 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है। विद्युत सब स्टेशन निर्माण के लिए 2 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। वहीं चंपावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के ग्राम पंचायत मोतियूराज में कांडई मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 25 लाख और हरिद्वार के पीरानकलियर क्षेत्र में अलग अलग विकास कार्यों के लिए 92 लाख से अधिक की धनराशि की स्वीकृति की गई है। चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को सुगम बनाने के लिए चौड़ीकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन स्थानों पर कोई विवाद नहीं है वहां चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने अधिकारियों को वर्षाकाल समाप्त होते ही सभी चिन्हित स्थलों पर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि चमोली में बद्रीनाथ हाईवे के 31 स्थानों को बॉटलनेक के रूप में चिन्हित किया गया है। भूमि एवं भवन स्वामियों से समन्वय कर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और मामलों के निस्तारण के बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। लघु उद्योग भारती की ओर से रुड़की में उद्यमी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी, मंत्री प्रदीप बत्रा और बड़ी संख्या में स्थानीय उद्यमियों ने भाग लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि सरकार के उद्योगों के विकास और रोजगार बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। उन्होंने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा।
1: आज उत्तराखंड लघु उद्योग भारती ने यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें जो उद्यमी हैं उनकी समस्याओं को लेकर के विचार विमर्श हुआ और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनके लिए जो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके साथ उनकी एक बैठक आयोजित की जाएगी। जिन समस्याओं का समाधान तत्काल हो सकता है उनका समाधान तत्काल किया जाएगा और जो समस्याएँ दूरगामी हैं जिन पे विचार किया जाएगा, अगर कोई ऐसा विषय हो जिसमें कोई वैधानिक अड़चन हो तो उसके लिए कैबिनेट में भी उसको ले जाने का हम प्रयास करेंगे।
0: वहीं कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने इस दौरान उद्योगों के विकास के लिए उद्योगपतियों को हर संभव सहयोग दिलाने का भरोसा दिया। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देशभर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रुद्रप्रयाग जिले के जखोली ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज तिलकनगर सुमाणी में जनजन की सरकार, जनजन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि, उद्यान, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया और लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान भी किया गया। वहीं पौड़ी जिले के एकेश्वर ब्लॉक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में संचालित सेवा सुशासन एवं समर्पण, जनजन की सरकार, जनजन के द्वार अभियान के अंतर्गत बहुउद्देशीय जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों में स्टॉल लगाकर आमजन की समस्याएं सुनी, सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा।
2: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं रफल सिंह की गाई रागिणियां। आपके साथ संगत कलाकार हैं ढोलक पर प्रदीप कुमार और हारमोनियम पर हैं तारा चंद।

0: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
1: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
2: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
1: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: हाँ ढंग में रत्न हाँ के सारथी।
4: लोक संगीत कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुन रहे हैं रफल सिंह की गाई रागिणियां।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत कार्यक्रम में रफल सिंह की गाई रागिणिया। आपके साथ संगत कलाकार थे ढोलक पर प्रदीप कुमार और हारमोनियम पर थे चारा ताराचंद। इसी के साथ लोक संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।

FM 100.5 MHz भी ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 11 बज चुके हैं और हम हाजिर हो चुके हैं आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर व्हाट्सएप फरमाइश। आप सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो हार्दिक स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपके फरमाइशी गीतों का सिलसिला और शुरू करते हैं आपके भेजे संदेशों को। तो कार्यक्रम में पहला मैसेज हम तक आ पहुँचा है। ये मैसेज हमें मिला है रोहिदास चौक पंढरपुर शहर से। आप हैं सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के। और बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर जो हमें लिख भेजा है सदर बाजार कुरावली से। आप हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और साथ में हैं सोनम वर्मा। ये अगला मैसेज आप पहुंचा है गाड़के नगर यवतमाल महाराष्ट्र से। आप हैं लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्ननील लोखंडे, रक्षता लोखंडे, रियांश लोखंडे और पूरा ही लोखंडे परिवार। ये मैसेज हमें मिला है फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से। आप हैं नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद और गोविंदपुरा अहमदनगर से। आप हैं जुनैद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल मुजावर और जैनब मुजावर। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर जो हम तक आ पहुंची है वारसी क्लब सिंधौली बरेली से। आप हैं जिशान वारसी, इमरान शेख, रिहान शेख और करूला मुरादाबाद से। आप हैं अयूब खान, निरम गुड़िया और शुएब खान। ये मैसेज हमें मिला है उत्तम नगर दिल्ली से। आप हैं कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और साथ में हैं भानु प्रकाश। ये मैसेज हमें मिला है जलालाबाद वेस्ट से। आप हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निहित आहूजा। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से आप हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। ये मैसेज हमें मिला है छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से। आप हैं भाई अहमद फूलवाले, दुखना सदफ जूही इकबाल, इमरान अहमद फूलवाले और काप सहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से। आप हैं आमना नसरीन बागवान, आसमा परी राबिया और आशु अहमद फूलवाले। ये मैसेज हम तक आ पहुंचा है गमरिया जमशेदपुर से। आप हैं रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबूरी बाजार चंदौली से। आप हैं विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से। आप हैं मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल और चकिया बाजार चंदौली से। आप हैं सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल। तो चलिए श्रोताओं, सुनाते हैं आप सभी की फरमाइश पे कार्यक्रम का ये पहला गीत उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल के सर में फिल्म दिल से।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: बदलो बदलो आदत बदलो
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या
1: बदलो बदलो आदत बदलो अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: FM 100.5 MHz पे ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है आइए श्रोताओं शामिल करते हैं कार्यक्रम में ये अगला मैसेज को जो हमें लिख भेजा है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से आप हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा जीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा ये मैसेज हमें लिख भेजा है मजनू का टीला से कमल बालूजा मधु बालूजा सागर बालूजा उमंग मलिक आकांक्षा मलिक और माही मलिक ये अगला मैसेज हमें लिख भेजा है लेवाई छत्तीसगढ़ से आप हैं गुलाबदास मानिकपुरी राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर जो हमें लिख भेजी है मनाली हिमाचल से आप हैं हर्ष विनय विनीत रोजर्स और चंडीगढ़ से आप हैं शेफाली शेफी डेविस विमला और सतीश अनेजा ये मैसेज हमें मिला है नारकली बाजार जगराओं से आप हैं कमल पाठक सुनील पाठक दीपिका मल्होत्रा गव्य मल्होत्रा सुच्चा सिंह पाठक विनोदपुरी और जयपाल यादव ये मैसेज हमें मिला है फुलोंग निजामाबाद तेलंगाना से आप हैं मोहम्मद वहीद रूमानी डॉक्टर मोहम्मद जमीर मोहम्मद फसी मोहम्मद जुनैद मोहम्मद जुबैर मोहम्मद मुकर्रम मोहम्मद नुमान मोहम्मद फुरकान मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद फजील बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर जो हमें मिली है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां और ये मैसेज मिला है बीट शहर महाराष्ट्र से आप हैं नंदकिशोर घटे संगीता घटे साक्षी घटे जयश्री महेंद्रे अंजलि करवा बाला साहेब करवा राम निवास अग्रवाल धनंजय टवुल और साथ में हैं PB कुलथे ये मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हमें मिला है शेरवानी स्कूल गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी रियाज अंसारी मोहम्मद कैफ अनवर मास्टर लुबना अंसारी और आलिया अंसारी गांव खारिया ढाड़ी जिला सिरसा हरियाणा से आप हैं सतवीर सिंह बिजारनिया देवेंद्र सिंह बिजानिया राजपाल सिंह बिजानिया अभिषेक सिंह बिजानिया योगेश सिंह बिजारनिया पूजा सिंह बिजारनिया आरजू सिंह बिजारनिया और नविया बिजारनिया कस्बा चिलकाना से आप हैं मोहम्मद जरीफ अंसारी नईम अंसारी डॉक्टर आमिर अंसारी दानिश रजा मुन्ना नाजिम अंसारी ये मैसेज हमें लिख भेजा है स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल भाटिया सोनू भाटिया और साथ में हैं पप्पू भाटिया चकला बाजार सामना शहर पंजाब से आप हैं पप्पू राजा खुशदिल संगीता रानी जिंदल पप्पू मह खुशदिल सुनीता रानी जिंदल आरजू पप्पू खुशदिल हसमुख लाल जिंदल बुलबुल शक्ति खुशदिल संजीव बंटी जिंदल और पूरा ही खुशदिल परिवार ये मैसेज हमें मिला है ग्राम ढालिया मिलक रामपुर से वीरपाल गंगवार और ये मैसेज हमें मिला है रहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से आप हैं हर्षा रामेकर दिलीप रामेकर रक्षा रामेकर और रुद्र रामेकर ऐशोतों सुनाते हैं आप सभी के फरमाइश पे कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म कश्मीर की कली से और गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने

गीत के बाद स्वागत है आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में। श्रोताओं, कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पे। आइए देखते हैं कार्यक्रम में ये अगला मैसेज हमें कहां

से मिला है। तो ये अगला मैसेज हमें लिख भेजा है, बड़ बगबुड़वा पथरिया से आप हैं नरेन नेताम और कुसुम नेताम। ये अगला मैसेज हमें लिख भेजा है, दादरी गेट भिवानी से आप हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा। ये मैसेज हम तक आ पहुंचा है। कुमार हेड़ा सहारनपुर से आप हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम और इनके समस्त परिवार वाले। ये मैसेज मिला है सप्तरंग श्रोता परिवार, कुम्भार गली श्रीरामपुर से आप हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले, सानिका दले और पुनावले पुणे से आप हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने। ये मैसेज हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अबान परिवार के सभी सदस्य। आइए बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर जो हमें मिला है, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से आप हैं फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण और जहनुल हुदा। ये मैसेज हम तक आ पहुंचा है ग्राम उमेड़ा निज़ामाबाद तेलंगाना से मोहम्मद जैनुद्दीन, आबिदा आयशा और स्नेह भानु जैनुद्दीन। ये मैसेज हमें मिला है नरहन स्टेट समस्तीपुर से लंदन मिश्रा, नूतन मिश्रा, अमन पारासार, बेबी आराध्या और साथ में है लल्लू पंडित। बढ़ते हैं अगली मैसेज की ओर जो हमें मिला है, श्री गणेश अविकार श्रीरामपुर से आप हैं डी अशोक कुम्भार, अविका जीविका, सानू कुम्भार, अर्चना कुम्भार और कोयते वस्ती पुनावले से आप हैं अजय सोनवड़े, करिश्मा सोनवड़े, अविका सोनवड़े और साईशा सोनवड़े। ये मैसेज हमें मिला है कोहका भिलाई से आप हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। धमधा ग्राम सुखरी कला से आप हैं अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर जो हमें लिख भेजी है, सांगली जिले के जत शहर से आप हैं अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख। ये मैसेज मिला है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सिटी दीवाना। आयुषो तो सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का कार्यक्रम में ये अगला गीत, आवाज़ है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है आराधना।

श्रोताओं, कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पे। ये मैसेज हमें लिख भेजा है रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से आप हैं किशन वंजैनी, नीलम स्वाति, निशु किशु और छोटी गुड़िया साथ में हैं टुक टुक। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर जो हमें लिख भेजी है। सनावत से आप हैं शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमारा बोडाना। शामिल करते हैं अगले मैसेज को जो हमें भेजा है। ज़िला सहारनपुर से आप हैं संदीप कुमार, शिवानी, नेहा देव, युवान, दिव्या और साथ में हैं अनुष्का। ये अगला मैसेज हम तक आ पहुंचा है जो हमें लिख भेजा है। गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से आप हैं जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। ये मैसेज मिला है। रोहासी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू, नंदिनी साहू, मनीष साहू, मयंक साहू और जानकी साहू। ये मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो मिला है। सुभाष पार्क नवीन शाहदरा दिल्ली से रूपेश शर्मा, स्वाति शर्मा, निशु और साथ में हैं किशु। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर जो मिला है। काटा रोड वाशी महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशे, सशमा सुरोशे, परिधि सुरोशे और मायरा सुरेशे। ये मैसेज हमें लिख भेजा है। संघ मित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी। ये मैसेज मिला है। रहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से श्याम किटे, वंदना किटे और कार्तिक किटे। बल्लार शाह से आप हैं सुरेश लोंढे, प्राची लोंढे, एकलव्य लोंढे और पांडर कवड़ा से आप हैं अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे। ये मैसेज हम तक आप पहुँचा है। भारत फ्यूचर सिटी हैदराबाद से आप हैं गोपाल नाई और उमा माहेश्वरी। शामिल करते हैं अगले मैसेज को जो मिला है। 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से आप हैं पूजा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा कुमारी, वंदना मराठा और देविका चौधरी, लड्डू चौधरी, स्वाति, प्रज्ञा चौधरी। और ये मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हमें लिख भेजा है। गांव गला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के सभी सदस्यगण। ये मैसेज आ पहुंचा है। फरमाइश करते हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी अलोट जिला रतलाम MP से जगदीश धाकर, नाइमा श्रीमती रंजूबाई धाकर, युवराज सिंह धाकर और साथ में हैं शिवांगी धाकर। गांव जखो राजस्थान से आप हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक। ये मैसेज मिला है। देहरादून, माफ कीजिएगा, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से आप हैं अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत। ये मैसेज मिला है। गांव भोजपुरा तगा चिलकाना सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हन्नान, जीनत जावेद, नाहिद रानी, आयत और मोहम्मद इंतजार। ये मैसेज आ पहुंचा है। एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अभयता सिल्लोर जिला छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से भेजने वाले हमारे श्रोता हैं अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैश्विक घोड़के, गायत्री घोड़के और योगेश घोड़के। ये मैसेज मिला है। जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से भेजा है हमें मैसेज पूनम कुकरेती, सुनील कुकरेती, विवेक, वंदिता और साथ में है वंश। बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर जो आप पहुंचा है। काशी निवास बंगाली पंजा नागपुर से आप हैं प्रकाश रंभाड़े, भारती रंभाड़े, जानवी रंभाड़े और वैष्णवी के साथ हैं हर्षेल रंभाड़े। तो श्रोता, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है अगर तुम ना होती।

FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है व्हाट्सएप फरमाइश और लगातार बहुत सारे श्रोताओं के मैसेज हमें मिल रहे हैं, तो चलिए शामिल करते हैं अगले मैसेज को जो हमें लिख भेजा है। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से आप हैं दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा व्रजसेन। बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर जो आप पहुँचा है। बुलढाणा महाराष्ट्र से आप हैं वासुदेव वोदवाड़े, अनिता गाठोड़े और रमेश राव गाठोड़े। ये मैसेज हमें लिख भेजा है, पसंद करता है दादा बाबू रोड गिरडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद मिफ्रानाज और साथ में है बेबी चाहत। ये मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो मिला है। कुंभार गली कोलगांव से आप हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, राणी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन और पांडुरंग कुंभार। ये मैसेज आप पहुंचा है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से आप हैं श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वयाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वद्र देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी हर्षिता देशमुख। इसी के साथ ये मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो मिला है। दतरेगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से आप हैं हीरामणि वर्मा, पारसमरी वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। ये अगले मैसेज में हमारे साथ जुड़े हैं अनारकली वजरा जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव और विनोद पुरी। ये मैसेज आप पहुंचा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और कालका से आप हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। बढ़ते अगली फरमाइश की ओर जो हमें लिख भेजी है। ग्राम महसवाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से आप हैं शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े और स्वप्न नील धाड़े। ये मैसेज आप पहुंचा है गांव नथाना पंजाब से आप हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता और गीता। नाला सोपारा मुंबई से आप हैं मोहम्मद आसिफ शेख, बेगम रुमा, माहिरा शेख, नोमान शेख, सुलेमान शेख और शेख मोहम्मद कलीम। तो श्रोता सुनवाते हैं आप सभी के फरमाइश पे कार्यक्रम का ये अगला गीत। सुखविंदर की आवाज़ है और फिल्म का नाम है अस्तित्व।

ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पे। श्रोताओं, ये अगला मैसेज हम तक आ पहुंचा है बाबा कोटी रायगढ़ से। आप है शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान और साथ में है डुग्गू। ये मैसेज मिला है एकता कॉलोनी रोहतक से, सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोत और अंकित। ये मैसेज हमें मिला है दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमनिया जिला गाजीपुर से। आप हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। गम्हरिया जमशेदपुर से आप हैं बिविन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर जो आप पहुंची है। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। किसी भी गीत में शामिल होने की अगली फरमाइश हम तक आ पहुंची है गंज डोडवारा से। शमशुल कमर राही, शाहिना फातमी, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी। मजनू कटीला से आप हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से आप हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। ये मैसेज यहाँ पहुंचा है। मगनपुर झारखंड से आप हैं अब्बास आलम, अमजद अली और साथ में हैं लाडली बेबी निशा और परिवार के सभी सदस्य। करणवीर हाउस भूचो कैचिया भटिंडा पंजाब से आप हैं प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, तपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम दमन और अभिजोत। ये मैसेज आप पहुंचा है शास्त्री नगर वीर शहर से। किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, सईरा सपकाल और विशाल सपकाल। ये मैसेज हमें मिला है किशोर नगर अमरावती से। आप हैं हीरावन शेडे, शीला देवी शेंडे और सिद्धार्थ गोंडारे। ये मैसेज आप पहुंचा है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। पीएस नुहाकर, निर्मला नुहाकर, विशाल नुहाकर, मलकापुर महाराष्ट्र से आप हैं सोपान ताइडे, नारायण इंगले और आशीष मुरहेरकर। ये मैसेज हमें लिख भेजा है नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मनु ने। सदर बाजार मारवाड़ बिला राजस्थान से आप हैं रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। ये मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हमें लिख भेजा है खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। बालावाला देहरादून उत्तराखंड से आप हैं गणेश भारद्वाज, बिजवाण, दरबान सिंह नेगी, राजेंद्र सिंह नेगी और राजू भाई, सुरेंद्र मुंडेपी, कुलदीप रावत और लियाकत भाई रजाई वाले। ये मैसेज हमें मिला है गांव चौलहदा बागपत से आप हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। तो श्रोताओं, सुनाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर और मुकेश की, फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान। तो सुनिए ये गीत और जुड़े रहिए आकाशवाणी देहरादून के साथ।

ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पे। श्रोता आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में। ये अगली फरमाइश जो हमें लिख भेजी है भाटापारा छत्तीसगढ़ से, आप हैं श्रीमती अर्चना जोशी, श्रीमती रानू अग्रवाल, श्रीमती माला साहू, प्रीति भारती, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, श्रीमती संध्या भारती और श्रीमती लक्ष्मी धो। ये मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो मिला है बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। आप हैं विनोद मोड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मोड़त, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मोड़त। ये मैसेज मिला है गाँव झगोड़ी जिला यमुनानगर से। आप हैं रणधीर बागर, गुरमेजो, गौरव परवीन, युगम वीरेन, मनकीरत और साथ में है मनराज। शामिल करते अगले मैसेज को जो मिला है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से। आप हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से आप हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु रिधान खुराना। गुन्नौर से आप हैं आदिल कमर और ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से आप हैं कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती आकर्षण और जयश्री। गांव जेवरा हिसार से आप हैं वीरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, मनोज भ्याण। और ये मैसेज मिला है बघेरा दुर्ग से। आप हैं संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से आप हैं सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना ताई गोडाने, हीरामण शिंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडांदे। हैदराबाद से आप हैं बी एन रेड्डी नगर, हैदराबाद बी एन रेड्डी नगर से आप हैं मोनिका भानुप्रकाश और विनय कुमार। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ पर भ्रमरी। महाराष्ट्र से आप हैं रूपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश संघई, प्रीतेश संघई और पूरा ही संघई परिवार। आई श्रोताओं सुनाते हैं आपको कार्यक्रम का ये गीत लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में फिल्म शागिर्द से।

0: इसका कोई नहीं है, इस दिल को प्यार करना।
1: अय्या,

कार्यक्रम में ये अगला मैसेज हम तक आ पहुंचा है मरहरा दरवाज़ा एटा से। आप हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रशीद वारसी और किदवई नगर सिदपुरा टाउन से आप हैं जुबैर अली खान, सबीहा अंजुमन खान। ये मैसेज हमें मिला है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। आप हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रजन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी। ये मैसेज हमें मिला है मुंदी चौक भागलपुर से। आप हैं दिलीप कुमार सोनी और शामिल कर रहे हैं अगले मैसेज को जो हम तक आ पहुंचा है। बाजार रोड मुंगेसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिश्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। ये मैसेज हमें मिला है रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर, दिल्ली से हैं ध्वनि और सानवी। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर जो हमें मिला है दिल्ली शहर से। आप हैं अनीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और शामिल कर रहे हैं अगले मैसेज को जो हम तक पहुंचा है। आदर्श नगर मलोट पंजाब से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और साथ में है निवान शर्मा। बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर जो लिख भेजा है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। आप हैं सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, लोकेश जोशी, आकांश वर्मा, बेबी वैदेही जोशी, बेबी हंसिका जोशी और वनीश वर्मा, रिहान खान, कुमारी अंकिता जोशी और श्रीमती लक्ष्मी धो। ये मैसेज लिख भेजा है छत्तीसगढ़ पलारी से। आप हैं प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मी। और अंत में ये मैसेज हम तक पहुँचा है। आप हैं पिंगावाला चौक गरैया जालंधर से। आप हैं संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भरत मक्कर। तो चलिए श्रोताओं सुनाते हैं आप सभी को कार्यक्रम का ये अंतिम गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म का नाम है सागर। श्रोताओं इसी गीत के साथ कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब संपन्न करने की दीजिएगा अपनी दोस्त रेशमा को अनुमति। नमस्कार।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अब से कुछ देर में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये 4 चरणों वाला रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आई फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
2: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और यह तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: The IMD has forecast heavy to very heavy rainfall conditions over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Chhattisgarh and Uttarakhand till tomorrow. In badminton, Indian shuttler and two-time Olympic medalist P.V. Sindhu stormed into the women's singles final of Japan Open in Tokyo today. She entered the final after her opponent and world number 4, Chen Yufei of China, retired during the second set of the match. Sindhu won the first set 21-19 and was leading in the second set 15-10 when her Chinese rival got retired. Sindhu will next face Japan's Akane Yamaguchi in tomorrow's final as she bids for the Japan Open title. In FIFA World Cup, European rivals France and England will lock horns in the third place playoff match at the Miami Stadium tonight. The match is scheduled to begin at 2:30 a.m. Indian Standard Time. France's World Cup campaign came to an end after a semi-final defeat against Spain. And that is the end of this news bulletin.
1: FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए न्यूज हेडलाइंस।
2: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप गीता नेगी से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में उत्तराखंड ने पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य सरकार स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 130 इन्फेंट्री बटालियन टीए इकोलॉजिकल कुमाऊं की ओर से पूर्व सैनिकों के लिए 3 से 8 अगस्त तक पिथौरागढ़ में भर्ती रैली का आयोजन करेगा। रेल मंत्रालय ने रामनगर दून के बीच पहली एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दी। ट्रेन प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को चलेगी। पिथौरागढ़ की मुक्केबाज आरती धारियाल ने रोमानिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन बेल्ट बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली दून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। पहाड़ी जंगली फल बेड़ू को जिला पौड़ी का पहला GI टैग मिला। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा, माटी कला सांस्कृतिक विरासत, इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। जनता को सुलभ और पारदर्शी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के हर जिले में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 3 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। सिंगल विंडो सिस्टम की जिला प्राधिकृत समिति ने पौड़ी में 5 नई औद्योगिक इकाइयों को सैद्धांतिक स्वीकृति दी। हल्द्वानी स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के तरणताल में आयोजित 2 दिनी राज्य स्तरीय जूनियर एवं सब जूनियर तैराकी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का समापन हुआ। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने 9वीं और 11वीं के छात्रों का डेटा अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू की। और महक क्रांति नीति के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में 7 एरोमा वैली विकसित की जाएंगी। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे शाने आलम और साथी की आवाज में कव्वाली।

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे शाने आलम और साथी की आवाज में कव्वाली। FM 100.5 MHz पर आप जुड़े हैं आकाशवाणी देहरादून के साथ। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार बहनों, महिला जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज मैं हूं आपके साथ आपकी सखी सुमन बगासी। बहनों, अक्सर किसी के बाहरी रंग रूप को देखकर उसकी क्षमता का, उसके व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगा लिया जाता है, मगर ऐसा करना गलत है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके रंग रूप से नहीं बल्कि उसके विचारों से, उसके गुणों से, उसके व्यवहार से होती है। बहनों, कार्यक्रम में हम आज बात कर रहे हैं ऐसी ही शख्सियत की जिन्होंने रंग भेद और नस्लीय भेद को समाप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला जी की, क्योंकि आज है 18 जुलाई। आज के दिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला जी का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के मवेजो गाँव में हुआ था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका से अपनी बीए की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद लंदन विश्वविद्यालय के माध्यम से अपनी कानून की पढ़ाई पूरी की। बहनों, सन 1948 के दौरान दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद, नस्ली भेदभाव की प्रणाली थी, जिसके अंतर्गत अश्वेत लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जाना मना था और उन्हें केवल आरक्षित क्षेत्रों में ही रहने की अनुमति थी। अश्वेत लोगों को मताधिकार से भी वंचित रखा जाता था। अश्वेत लोगों के लिए स्कूल, अस्पताल व बस भी अलग ही हुआ करती थी। उस समय अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, कई आंदोलन चलाए। नेल्सन मंडेला को रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष के दौरान 27 साल जेल में भी बिताने पड़े। रिहाई के बाद नेल्सन मंडेला ने रंग भेद को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए बहनों, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। बहनों, उन्होंने न्याय और समानता के लिए वैश्विक आंदोलनों को प्रेरित किया और भारत सरकार द्वारा रंग भेद के खिलाफ उनके संघर्ष को सम्मानित करने के लिए सन 1990 में उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया और 1993 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। आखिरकार 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा करने के बाद नेल्सन मंडेला ने अपना जीवन मानवाधिकारों की रक्षा, वैश्विक शांति, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और एड्स जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहनों, 5 दिसंबर 2013 में नेल्सन मंडेला जी का निधन हो गया। नेल्सन मंडेला जी के योगदान को याद करने के लिए और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्म दिवस यानी 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। आधिकारिक तौर पर 18 जुलाई 2010 में पहली बार उनके 92वें जन्म दिवस पर नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। बहनों, नेल्सन मंडेला जी का संपूर्ण जीवन एक ऐसा आदर्श है जो हमें सिखाता है कि असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। हर व्यक्ति के भीतर दुनिया को बदलने की ताकत होती है और नेल्सन मंडेला शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। उनका प्रसिद्ध कथन भी है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, मगर अभी लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: बहनों, शिक्षित होना सभी के लिए ज़रूरी है, और जब बात बेटियों की शिक्षा की हो तो और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी बेटियों को शिक्षा के माध्यम से ज़िंदगी की हर कठिनाइयों, हर परेशानियों का डट कर सामना करने के लिए तैयार करें। और आज बेटियां हर क्षेत्र में, चाहे विज्ञान हो, खेल हो, राजनीति या फिर सैन्य सेवाएँ ही क्यों ना हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही हैं। हमें बेटियों को ज़िंदगी का सबसे अनमोल उपहार शिक्षा के रूप में देना चाहिए, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल कर सकें जो वो चाहती हैं। तो बहनों, कार्यक्रम में इसी से संबंधित सुनते हैं वार्ता श्रीमती रुचिरा जोशी से, जिसका विषय है बेटी को दहेज नहीं शिक्षा और सुरक्षा करें भेंट।
2: यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, वहीं देवता निवास करते हैं। वेदों में नारी को इतना ऊंचा और सम्माननीय पद दिया गया है। भारतीय संस्कृति में बेटियों को साक्षात लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती का रूप माना गया है। दो कुलों, दो परिवारों के सम्मान और गौरव की रक्षा बेटी के हाथों में ही मानी गई है। बेटियों के लिए हर माता पिता के मन में एक विशेष प्रेम होता है। उसका विवाह उनके जीवन का एक बहुत ही भावुक पल होता है। बेटी अपने नए घर, अपने नए परिवार में सदा खुश रहे, इसी कामना से वो अपनी समर्थ अनुसार उसे कुछ उपहार, गहने और वस्त्र आदि देकर विदा करते हैं। प्राचीन समय में इसे स्त्री धन कहा जाता था और इस पर केवल बेटी का ही अधिकार होता था। ये स्त्री धन उसकी आर्थिक स्वतंत्रता और सम्मान भी था, और मुश्किल समय में काम आने वाला सहारा भी। लेकिन बेटी के प्रति प्यार और आशीर्वाद से भरी इस स्नेहमयी प्रथा को समाज की संकीर्ण सोच और लालची मानसिकता ने इतना कुरूप बना दिया कि आज उसके नाम से ही डर और घृणा होने लगी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय समाज के सबसे बड़े कलंक दहेज की। ये कैसी विडंबना है कि आज भी कई माता पिता बेटी के जन्म पर शोक मनाते हैं। नवरात्रों में जिन बेटियों के पैर पखारे, जिनकी पूजा किए बिना देवी की आराधना संपूर्ण नहीं मानी जाती, उन्हें ही परिवार पर बोझ मानते हैं, पराया धन कहते हैं। दहेज की इस अमानवीय प्रथा ने अनगिनत मासूम बेटियों के जीवन को अभिशाप बना दिया है। विवाह अब ऐसा व्यापार बन गया है जिसमें माता पिता का बेटी के लिए प्यार दहेज में दिए गए महंगे सामान, नकदी और आभूषणों से तोला जाता है। एक ओर भारत की बेटियां देश विदेश में नए नए कीर्तिमान स्थापित करके अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं, राष्ट्रपति के गरिमामय पद तक को सुशोभित कर रही हैं, तो दूसरी ओर दहेज के कारण अनेक मासूम बेटियां शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, यहाँ तक कि हत्या का भी शिकार हो रही हैं। दहेज को जड़ से मिटाने के लिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम बेटियों के माता पिता को ही उठाना होगा। ये मानसिकता बदलनी होगी कि उनका कर्तव्य सिर्फ बेटी को ब्याह कर विदा करने तक ही सीमित है। यदि आप अपनी लाडली बेटी से सच में प्यार करते हैं, चाहते हैं कि वो अपना जीवन सम्मान, गरिमा और भय मुक्त होकर जिए, तो ये आवश्यक है कि आप दहेज नहीं बेटी को शिक्षा और सुरक्षा करें भेंट। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा पर। बेटी को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में सम्मान दिलाने का ये सबसे सशक्त माध्यम है। दहेज में दिए गए धन या सामान को बेटी का अधिकार छीना जा सकता है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे न कोई चुरा सकता है, न ही कोई छीन सकता है। विवाह में भारी भरकम दहेज देने की जगह वही राशि उसे पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाने में इस्तेमाल करें कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अपना धन स्वयं कमा सके, उसे रुपए पैसों के लिए किसी पर निर्भर न होना पड़े। फिर ना तो वो माँ बाप के लिए बोझ बनती है और ना ही ससुराल वालों के लिए। जब एक लड़की आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है तो किसी के आगे झुकने या दबने की भी जरूरत नहीं होती। आज के समय में शिक्षा ही सबसे अनमोल उपहार है जो आप अपनी बेटी को दे सकते हैं। और शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं है, ये जीवन जीने की कला सिखाती है। नौकरी या पढ़ाई के लिए जब बेटी घर से बाहर जाती है तो उसे कई चुनौतियों, मुश्किलों और विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उसका ज्ञान, उसकी शिक्षा ही वो शक्तिशाली शस्त्र है जो उसे इन सब का डटकर सामना करने का बल देता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ाता है, अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेने में उसे सक्षम बनाता है। पढ़ लिख कर डॉक्टर बने या इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी या सैन्य अधिकारी, वैज्ञानिक या प्रोफेसर, या फिर अपना ही कोई बिजनेस करे, शिक्षा बेटियों के लिए अवसरों और सफलता के कई दरवाजे खोल देती है। सच बताइए, जब आपकी बिटिया अपनी मेहनत से ऊंचा मुकाम हासिल करेगी तो क्या आपको उस पर गर्व नहीं होगा? आज भारत में ऐसी अनेक सरकारी योजनाएं हैं जो बेटियों की शिक्षा, कौशल विकास और आर्थिक उन्नति करने में बहुत सहायक हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, नाव्या, उड़ान आदि योजनाओं की मदद से आप अपनी बेटी को शिक्षित और स्वावलंबी बनाने के साथ ही उसका भविष्य भी सुरक्षित कर सकते हैं। शिक्षा के साथ साथ बेटियों को सुरक्षा का वातावरण देना भी हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती जैसी वीरांगनाओं के देश में आज भी बेटियां डरी सहमी रहती हैं। इससे अधिक शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है? और सुरक्षा का अर्थ केवल शारीरिक रक्षा नहीं, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी इतना मजबूत बनाना है कि वे बिना किसी दबाव के, बिना समाज की बंदिशों से डरे सर उठाकर जी सकें। इसके लिए सबसे पहले अपने घर, अपने परिवार से ही शुरुआत करनी होगी। बेटे और बेटी में फर्क करने की सोच मिटानी होगी। बचपन से ही दोनों को बराबर का प्यार, सम्मान और आजादी दीजिए। बेटी में ये विश्वास भरिए कि वह किसी से भी ना तो कम है ना कमजोर। शादी के बाद भी मायके का द्वार उसके लिए हमेशा खुला रखिए, ताकि अगर ससुराल में उसके साथ दुर्व्यवहार हो, उसे प्रताड़ित किए जाने लगे, तो बेटी को डरकर सब कुछ सहना न पड़े। उसे वापस अपने घर आने का साहस और समर्थन अपने माता पिता से मिलना ही चाहिए। जब एक लड़की को भरोसा होता है कि हर मुश्किल में उसके माता पिता उसका साथ देंगे, तो वो समाज की किसी भी चुनौती का डटकर सामना करती है। भारतीय कानून ने भी बेटियों की रक्षा के लिए उन्हें कई अधिकार दिए हैं। सरकार ने भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर जैसे कि 1091 और 181 वेमेन पावर लाइन की व्यवस्थाएं की हैं। अपनी बेटियों के इन सब के बारे में अवश्य बताएं, ताकि वो किसी भी प्रकार के शोषण, हिंसा या अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने से डरे नहीं। साथ ही हमें बेटों को भी बचपन से ही हर स्त्री का सम्मान करना, उसकी रक्षा करने की सीख देनी होगी। लड़कों की मानसिकता में बदलाव के बिना लड़कियों को सुरक्षा देना संभव ही नहीं है। बचपन से ही अपनी बेटी को शारीरिक रूप से भी ताकतवर और मजबूत बनाएं। आत्मरक्षा की कोई भी तकनीक जैसे कराटे, ताइक्वांडो आदि का प्रशिक्षण भी उसे जरूर दें। तन की शक्ति और मन का साहस, ये दो सुरक्षा कवच उसे देकर तो देखिए, आपकी बेटी जीवन में नए नए आसमान छू लेगी। बेटियां दो परिवारों को रोशन करती हैं, भावी पीढ़ी की मार्गदर्शक और समाज का आधार स्तंभ हैं। उन्हें केवल उड़ने के लिए खुला आसमान, पंखों में शिक्षा की ताकत और समाज से सुरक्षा का विश्वास चाहिए। सरकार और कानून कितना ही प्रयास करे, जब तक माता पिता ही बेटी की शिक्षा और सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाएंगे, दहेज का समूल नाश और बेटियों का उत्थान संभव नहीं है। समाज को दहेज की कुप्रथा के अंधेरे से निकलने के लिए हर घर में बेटी की शिक्षा का दीप जलाना होगा। दहेज न लेंगे न देंगे का नारा बुलंद करना होगा। जब हम अपनी बेटियों को दहेज के दलदल में धकेलने के बजाय उत्तम शिक्षा और सुरक्षित वातावरण की भेंट देंगे, तब वे न केवल अपने माता पिता का गौरव बनेंगी, बल्कि एक सशक्त, समृद्ध और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण में भी अपना अमूल्य योगदान दे सकेंगी। धन्यवाद।
1: बहनों, अभी आपने सुनी वार्ता जिसका विषय था बेटी को दहेज नहीं बल्कि शिक्षा और सुरक्षा करे भेंट, जिसकी वार्ताकार थी रुचिरा जोशी। बहनों, अब कार्यक्रम में लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक।

बहनों, महिला जगत कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कार्यक्रम में अब बात करते हैं प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना की। अन्नपूर्णा योजना नाम से अलग अलग राज्य सरकारों व केंद्र सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। उत्तराखंड में अन्नपूर्णा योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2000 में लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत निराश्रित वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक हो, वे इस योजना के पात्र होते हैं और जिनकी आय का कोई साधन ना हो, उन्हें प्रतिमाह 10 किलो अनाज निःशुल्क दिया जाता है। और हाल ही में 1 जून 2026 को पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की 25 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रतिमाह 3000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना चलाई गई है, जिसमें महिलाओं को प्रतिवर्ष 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाते हैं। इसी तरह राजस्थान में भी अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना चलाई गई है, जिसके तहत

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन किट दी जाती है। बहनों, मध्य प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना दो अलग अलग रूपों में संचालित की जाती है। पहली है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, जिसके अंतर्गत जरूरतमंदों को कम दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है, और दूसरी है कृषि विभाग की अन्नपूर्णा योजना, जिसमें किसानों को आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उन्हें उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि फसल का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ज़रूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, डिजिटल राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बिजली व पानी का बिल, इनकी आवश्यकता होती है। तो बहनों, कार्यक्रम में अब वक्त है ब्यूटी सेगमेंट का। बहनों, आजकल के मौसम में हमारी स्किन बहुत ऑयली हो जाती है और किसी किसी के बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स, मुहासों की समस्या हो जाती है। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, आप लीजिए एक कटोरी में 2 चम्मच चावल और इसमें 15 से 20 पत्ते तुलसी के डाल दें। अब इसमें आधा कटोरी पानी डालकर इसे ढककर रात भर रख दें। सुबह आप इसे पीस लीजिए और छानकर इसके पानी को किसी स्प्रे बोतल में या फिर किसी कांच के जार में रख दें। ये स्प्रे आपको एक बार बनाकर रखना है, आप इसे 10 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। आप इसे दिन में 3 से 4 बार चेहरे पर स्प्रे करें और रात में आप इसे चेहरे पर स्प्रे करके सो जाइए। धीरे धीरे आपके चेहरे के ब्लैक हेड्स साफ होने लगेंगे और आपकी स्किन क्लियर होने लगेगी। और बहनों, अगर आप त्वचा को साफ और ग्लोइंग बनाना चाहती हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, लीजिए थोड़ा सा शहद, उसमें मिलाइए मुलेठी पाउडर, अच्छे से मिक्स कीजिए। इसे अपने चेहरे पर रोज़ 3 से 4 मिनट के लिए मसाज करें। शहद और मुलेठी दोनों त्वचा की टैनिंग को, झाइयों को और अनइवन स्किन टोन, जैसे कहीं कहीं पे पैचेस हो जाते हैं, कहीं पे काले धब्बे हैं, कहीं पे क्लियर स्किन है, इसे वो हटा देता है और हमारी स्किन नेचुरली ग्लो करती है। और बहनों, अगर आप फेस वॉश यूज़ नहीं करना चाहती हैं तो आप फेस वॉश के बजाय दही मुलेठी पाउडर को मिलाकर चेहरे पर 2 मिनट मसाज करें, इससे भी आपका चेहरा ग्लोइंग लगता है। और अगर स्किन ऑयली है तो आप दही और मुलेठी पाउडर के साथ इसमें बेसन या चावल का आटा मिलाकर भी लगा सकती हैं और आपको कुछ ही दिनों में अपने चेहरे पर फर्क आने लगेगा। बहनों, कार्यक्रम में लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक।

0: बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आप कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सुझाव या प्रतिक्रिया हमें देना चाहती हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकती हैं। इसके लिए आपको लिखना होगा बड़े अक्षरों में MJ, फिर दीजिए स्पेस, लिखिए अपना नाम, फिर स्पेस दीजिए अपने शहर का नाम और स्पेस देकर लिख भेजिए अपनी प्रतिक्रिया सुझाव। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। बहनों, आप हमें पत्रों के माध्यम से भी अपने सुझाव व प्रतिक्रिया भेज सकती हैं। हमारा पता है कार्यक्रम महिला जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र हरिद्वार बाईपास रोड देहरादून। बहनों, अब मुझे यानी सुमन बगासी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: श्रोताओं, महिला जगत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि रॉकेट तेज और मांग के अनुरूप प्रक्षेपण सुविधा उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
3: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
2: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ NTPS अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। ये कार्रवाई राज्य सरकार के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यूफी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यूफी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष उनियाल। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा को लेकर सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश के हर जिले में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित की जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उपयोग कांवड़ यात्रा के लिए नहीं किया जाएगा और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में अतिवृष्टि, मानसून की स्थिति, चारधाम यात्रा और आपदा प्रबंधन को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही, शिथिलता व उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी केवल बैठकों तक सीमित न रहें बल्कि स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें व प्रत्येक स्थिति पर सतत निगरानी बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने जिलेवार सड़कों की स्थिति, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों, चारधाम यात्रा मार्गों, यात्रियों की संख्या तथा विभिन्न धामों में व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा राज्य की आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों से जुड़ी है। आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं है।
5: जो आपदा से प्रभावित अगर जोशीमठ पे हम देखे तो वहाँ बड़ा काम चल रहा है, आप देखे उत्तरकाशी जिले में चल रहा है, यानी आपदा को लेकर किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं है। भारत सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार लगातार निरंतर हर प्रकार का सहयोग राज्य को करती है, कर रही है, तो इसलिए कोई इस प्रकार का धन का अभाव आपदा की दृष्टि से नहीं है।
4: प्रदेश के हर जिले में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित की जाएगी। सोसाइटी गठन का मुख्य उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाना और अधिक लोगों को सुलभ एवं पारदर्शी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन सोसाइटियों से प्रदेश में सहकारिता सेवाओं का विस्तार होगा, इससे अधिक से अधिक लोगों को पारदर्शी वित्तीय सेवाएं मिल सकेंगी। रावत ने प्रदेश भर की सभी सहकारी बैंक शाखाओं और सहकारी समितियों के भवनों को एक समान रंग स्वरूप देने के निर्देश भी दिए। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे व सोने चांदी के आभूषणों में हेराफेरी के मामले में विशेष जांच दल ने बद्री केदार समिति बीकेटीसी के सेवानिवृत्त मंदिर अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में यह दूसरी गिरफ्तारी है। चमोली जिले के पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह ने बताया कि चौहान सेवानिवृत्ति के एक दिन पहले तक चढ़ावे व सोने चांदी के उपहारों की चोरी व हेराफेरी में संलिप्त पाए गए। बीते 30 जून को सेवानिवृत्त हुए चौहान पर थाली भेंट गणना प्रभारी का जिम्मा भी था। गौरतलब है कि इससे पहले 12 जुलाई को निलंबित व्यक्तिगत अधिकारी प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। एसआईटी को बीकेटीसी ने 13 दिन की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराई है, जबकि शेष 32 दिन की फुटेज गायब है। मंदिर समिति का तर्क है कि तकनीकी

साथ समन्वय की तैयारी तेज कर दी है। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में आयोजित अंतरराज्यीय समन्वय बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों ने साझा कार्य योजना पर मंथन किया। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड की सीमाओं पर पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ संयुक्त चेकपोस्ट और बैरियर स्थापित किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उपयोग कांवड़ यात्रा के लिए नहीं किया जाएगा। मुख्य सचिव ने रेलवे अधिकारियों को विशेष ट्रेनों के संचालन, प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और पर्याप्त होल्डिंग एरिया विकसित करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में आज देहरादून, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने का येलो होने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। देहरादून, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर में कहीं कहीं अत्यंत तीव्र बारिश के दौर और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जिलों में भी कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। शेष जिलों में भी गरज चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि डेंगू की रोकथाम राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों व ग्राम पंचायतों को युद्ध स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल भराव वाले सभी स्थानों की तत्काल पहचान कर वहां पानी की निकासी सुनिश्चित की जाए तथा नियमित फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव और विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल सरकारी विभागों के प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे। डेंगू के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाते हुए स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक संस्थाओं, युवा मंडलों, महिला समूह व स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इस अभियान से जोड़ा जाए। प्रत्येक नागरिक को यह समझाया जाए कि अपने घरों एवं आसपास पानी जमा न होने दें। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज देहरादून में विद्यालयी शिक्षा महानिदेशालय स्थित समग्र शिक्षा सभागार में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT की समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों और प्रदेश के सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों डायट के प्राचार्यों ने भाग लिया। बैठक में डॉ. रावत ने SCERT के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी, व्यवहारिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेहतर शिक्षक प्रशिक्षण से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी। शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के सभी डायट की क्रमवार समीक्षा करते हुए मॉडल डायट की शीघ्र स्थापना के भी निर्देश दिए ताकि आधुनिक संसाधनों और नवाचारों के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाया जा सके। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने आज कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के शक्ति केंद्र गाड़ीघाट स्थित हैप्पी चिल्ड्रन एकेडमी में क्षेत्रवासियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं, सुझाव और जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने क्षेत्र के समग्र विकास और जनसेवा के संकल्प को लेकर भी विचार विमर्श किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने शक्ति केंद्र जानकी नगर के अंतर्गत जल निगम कॉलोनी में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों तथा बूथ स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा को लेकर सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश के हर जिले में क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित की जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उपयोग कांवड़ यात्रा के लिए नहीं किया जाएगा और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो कार्यक्रम का ये पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है AR रहमान ने। फिल्म का नाम है नायक।

श्रोताओं, फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पे। आइए अब आपको सुनवाते हैं उत्तम सिंह के संगीत निर्देशन में ये कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म दिल तो पागल है से। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और आवाज़ है लता मंगेशकर और उदित नारायण की।

FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म दिल चाहता है से। गीत है जावेद अख्तर का, संगीत है शंकर एहसान लॉय का और गीत को मधुर आवाज से सजाया है शान और कविता कृष्ण मूर्ति ने।

श्रोता, फिल्म संगीत प्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पे। आइए अब आपको सुनवाते हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति।

0: बारिश की हर बूंद में जीवन बसता, जल से हर घर हंसता। आज अगर जल को सहेजेंगे तो कल के सपने सींचेंगे। तो ऐसे में आइए ऐसा प्रण दोहराएं, बारिश की हर बूंद को बचाएं। नमस्कार, मेरा नाम है रेणु प्रतिपंच। उत्तराखंड में और पूरे देश में जल को संरक्षित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी जनता से अपील की है कि वो कैच द रेन अभियान को अपनाएं। ये अभियान क्या है? दरअसल अब बारिश का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में हर एक बूंद बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि जल है तो कल है, और यदि जल ही नहीं होगा तो फिर हमारा भविष्य भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ऐसे में हमें बारिश की हर एक बूंद को सहेजना है ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रह सके, और जल नामी जो ये पूंजी है ये हमारे भविष्य में बिल्कुल बहुत अच्छे से काम आ सके। लेकिन ये संभव कैसे है और उत्तराखंड में जल को हम कैसे संग्रहित कर सकते हैं, खास तौर पे बारिश की हर एक बूंद को कैसे संग्रहित किया जा सकता है ताकि ये हमारे लिए उपयोगी हो, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल गौतम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं इस कार्यक्रम में आप आए। तो अनिल गौतम जी जो हैं वो जल संरक्षण पर काफी समय से काम कर रहे हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले अनिल जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि जल संरक्षण पर आप कितने वर्षों से काम कर रहे हैं, क्या आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए।
1: जरूर, मेरा नाम डॉक्टर अनिल गौतम है और मैं पीपल्स साइंस इंस्टीट्यूट में वहाँ पर जो एनवायरमेंटल डिवीजन है मैं उसको हेड कर रहा हूँ वहाँ पे जी। और लगभग मुझे 28 साल हो गए स्पेशली जल गुणवत्ता में, वाटर रिचार्ज में, स्प्रिंग सेड मैनेजमेंट में, रिवर कंजर्वेशन में, और यहाँ तक कि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट जो ऑलरेडी PSI का एक बहुत बड़ा रोल रहा है सहभागी भूजल प्रबंधन को एक मॉडल के रूप में विकसित करने का। तो इन सब कामों में मैं लगातार जुड़ा रहा हूं और अभी भी आगे कुछ सीख रहा हूं।
0: बहुत सुंदर सर। और अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पूरे देश की जनता से अपील की है कि आप कैच द रेन अभियान को अपनाएं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बरसात का मौसम तो शुरू हो ही गया है, बारिश भी हो रही है, आखिर ये कैच द रेन क्या है, इसका क्या उद्देश्य है?
1: दरअसल ये प्रोग्राम जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से 2019 में लॉन्च हुआ था और इस कार्यक्रम में तेजी जो आई वो 2022 से इसमें तेजी आई है इस कार्यक्रम में। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो निश्चित रूप से है कि जहां भी जिस समय पे बारिश हो उस बारिश को सहेजना, और सहेजना दो प्रकार से, एक तो भूजल में उसको डालना और दूसरा यह है कि जो बारिश का जल है उसको उपयोग में लाना। तो इसका जो मेन उद्देश्य रहा है कि भूजल को पोषित करना, भूजल को रिचार्ज करना, एक्वीफर को रिचार्ज करना, क्योंकि हमारा जो देश है वो अगर देखें तो एग्रीकल्चर में लगभग 85% भूजल का उपयोग हमारा होता है। पीने के लिए भी अगर छोटे शहर या कस्बों को लिया जाए तो 70-80% पीने के लिए जो डिपेंडेंसी है हमारी वो भूजल पे है। बड़े बड़े शहर यहां तक कि चाहे देहरादून हो चाहे दिल्ली, वहां भी हम 50% तक निर्भर करते हैं भूजल में। तो जब तक हम भूजल को रिचार्ज नहीं करते हैं, हर बारिश में बारिश का पानी भूजल तक या उसके एक्वीफर तक नहीं पहुंचता है तो हमारे स्रोत चाहे वो स्प्रिंग्स हो, चाहे कुएं हो, चाहे ट्यूबवेल हो, उनमें पानी फिर नहीं आता और इसी कारण से वो परेशानी में पड़ते हैं, वो सूखते जा रहे हैं। उन सबको देखते हुए इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया कि जहां भी चाहे वो रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए हो, चाहे वो चाल खाल के माध्यम से हो, चाहे वो स्प्रिंग सेट जहां से स्प्रिंग्स निकलती हैं उसका जो रिचार्ज एरिया है वहां डालने का हो, तालाबों के लिए नए तालाब बनाने का, जो पुराने हमारे तालाब या वाटर बॉडीज हैं उनकी डिसिल्टिंग करने का ताकि हम उनमें ज्यादा से ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा सकें और ज्यादा से ज्यादा पानी को हम एक्वीफर में भूजल में रिचार्ज कर सकें, ये इसका मुख्य उद्देश्य है।
0: ठीक है सर, आगे आपसे चर्चा हम करेंगे। दर्शकों, उससे पहले कैच द अभियान आखिर है क्या और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से क्या अपील की है, इस पर छोटी सी रिपोर्ट आप देखिए।
2: जल ही जीवन का आधार है और इसकी हर बूंद का संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। इसी उद्देश्य के साथ साल 2019 में शुरू किया गया जल शक्ति अभियान। अभियान का उद्देश्य संकटग्रस्त जिलों के लिए पानी उपलब्धता सुनिश्चित करना था और फिर इस अभियान को गति देने के लिए 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया, जिसे देश के 729 जिलों, 7213 ग्रामीण ब्लॉक और सभी शहरी क्षेत्रों तक विस्तार दिया गया। 2021 के अभियान की शुरुआत देश भर की करीब 2,69,000 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं और जल शपथ के साथ हुई, जिससे ये दुनिया के सबसे बड़े जल संरक्षण अभियानों में शामिल हुआ। जल संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ना इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। देश भर में श्रमदान, स्वच्छता अभियान, जल स्रोतों की सफाई, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पौधारोपण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों लोग इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक जल बचाने की सोच अब व्यवहार में ढलती दिखाई दे रही है। जल शक्ति अभियान के तहत वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण, तालाब और जलाशयों को नया जीवन देने, पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण, जल ग्रहण क्षेत्रों के विकास और ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अभियान के शुरू होने के बाद से देश भर में जल संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर व्यापक स्तर पर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जल संरक्षण को लेकर देश को कैच द रेन अभियान से जुड़ने का आग्रह कर चुके हैं। अभी हाल ही में जून में हुए मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने बारिश से जल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कैच द रेन अभियान को जन भागीदारी का व्यापक स्वरूप देने का आह्वान किया था।
3: जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल सुरक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी इस अभियान से नई मजबूती मिल रही है। वर्षा जल संचयन से भूजल का स्तर बेहतर हो रहा है, खेती के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ रही है और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में भी मदद मिल रही है। तकनीक और निगरानी व्यवस्था ने भी अभियान को नई गति दी है। जल संरक्षण से जुड़े कार्यों की नियमित निगरानी, जियो टैगिंग, डिजिटल रिपोर्टिंग और राष्ट्रीय स्तर के जल शक्ति अभियान डैशबोर्ड के माध्यम से राज्यों और जिलों की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा रही है। आज कैच द रेन अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन भागीदारी का एक मजबूत उदाहरण बन चुका है। हर वर्ष मॉनसून से पहले शुरू होने वाला ये अभियान देश को जल सुरक्षित बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है।
0: तो लौटते अपनी चर्चा पर और हम बात कर रहे हैं वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल गौतम जी से। अनिल जी, अभी तक हम बात कर रहे थे कैच द रेन अभियान की, जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है देशवासियों से अपनाने की। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि आम लोग जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और उनके घर में बारिश हो रही है, तो उन्हें कैसे बारिश के पानी को संग्रहित करना है और वो पानी उनके लिए किन चीजों पर प्रयोग हो सकता है?
1: बहुत अच्छा ये आपका सवाल है और इसके कई तरीके हैं जिस माध्यम से हम घरों में भी अपने पानी की बचत और जो वर्षा का जल है उसका संचयन कर सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं भी हमारी सरकारों की चलती हैं और यहाँ तक कि देहरादून में जो भी सरकारी बिल्डिंग्स बनेंगी उनके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक तरह से कंपलसरी भी कर दिया गया है। और निश्चित रूप से ये है कि अगर वो चीजें पूरी नहीं होती हैं तो उनको ये भी इसमें रखा गया है कि उनको वाटर सप्लाई का कनेक्शन ना मिले। गांव में हम अपने घर में अगर खुले में भी जब बारिश होती है तो ड्रम रख दें, बाल्टियां रख दें, वो बर्तन भर के और उनको हम अपने घरेलू और कार्यों में पीने और खाना को छोड़ दें अगर, तो उसको हम बराबर तरह से यूज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आजकल ज्यादातर पक्के घर बन रहे हैं और पक्के घरों की अपनी छतें हो, छतों का पानी है, हम उसको एक तो यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं कि उसी समय पे हमने स्टोर किया और स्टोर करके हम वर्षा जल को यूज कर सके, और दूसरा ये है कि हम सोक पिट बना करके उसको गड्ढे में डाल करके साफ पानी को और हम अपने आसपास के जो जल स्रोत हैं, जो हमारे नीचे जमीन के एक्वीफर है, उसको भी हम उस पे रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें कुछ सावधानियों की जरूरत होती है। मान लीजिए कि हम स्टोर के लिए स्टोरेज टैंक हमने बनाया और स्टोरेज टैंक के लिए अगर जब पानी हमारा जा रहा है तो जो पहली बारिश होती है, तो आजकल ऐसे सिस्टम होते हैं क्योंकि थोड़ा सा बादलों में भी धूल होती है, छतों में भी हमारे धूल होती है, तो ये सिस्टम है कि पहली बारिश का पानी उसको फ्लश आउट किया जा सकता है और जो दूसरी बारिश से फिर पानी आता है उस टैंक में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। कई जगह पे हमेशा ये रहती है जो चिंताएं लोग व्यक्ति करते हैं कि बारिश का पानी हम कैसे पिएं या बारिश का पानी हम कैसे खाना बनाएं उससे, तो निश्चित है खाना बनाने के लिए तो बारिश का पानी तो सबसे शुद्ध माना जाता है
0: जी।
1: अगर हमारे वातावरण में, और हमने जैसे कहा कि पहली जो बारिश हुई तो वातावरण में जो धूल जो गैसेस होती हैं वो काफी हद तक साफ हो जाती हैं, और गांव के आसपास तो इतना वायु प्रदूषण की बात भी नहीं होती है पहाड़ी एरिया में। एक बार शहरों में हम थोड़ा सा वायु प्रदूषण को भी सोच सकते हैं, लेकिन गांव में तो उतना वायु प्रदूषण भी नहीं होता है, तो वो अपने आप वो साफ हो जाता है। साफ होने के बाद बारिश का पानी बहुत ही शुद्ध होता है, और खाना बनाने में तो हम हमेशा उसको बॉयल करते हैं, उबालते हैं, तो जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो बैक्टीरिया वगैरह उसके खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि पीने के लिए भी, पीने के लिए आजकल जो हमारे घरों में सप्लाई वाटर भी आता है उसमें बैक्टीरिया को मारने के लिए क्लोरीनेशन किया जाता है। क्लोरीनेशन के लिए हाइपोक्लोराइड बाजारों में उपलब्ध है, 10 लीटर पानी में अगर हम 4 बूंद उसकी डाल दें तो निश्चित है वो पीने के लिए, उस पर फिर बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, मर जाते हैं उनको। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे करने के लिए, और निश्चित है कि अगर हम ये देखें कि जितना हम अपने भूमिगत जो जल स्रोतों पर निर्भर हैं, अगर पूरा समुदाय या पूरा का पूरा गांव जब तक बारिश होती है तब तक अगर आधी डिपेंडेंसी भी उन स्रोतों पे कम कर देता है, तो निश्चित है जो गर्मियों में जिस तरह की हम समस्याओं से जूझते हैं पानी की, वो समस्याएं नहीं आएंगी, बहुत कम।
0: कारण आपसे जानना चाहते हैं, और शायद गांव वाले भी इस कार्यक्रम को देखेंगे तो समझेंगे कि नदी नौले धारों में पानी कम होने की वजह क्या है, वो आप बताएं।
1: देखिए, जो जितने हमारे हिमालयी राज्य हैं, यहाँ तक कि उत्तराखंड भी, और हमेशा से जो हमारी निर्भरता रही है वो नौलों धाराओं में रही है, जिनको आज हम विज्ञान की भाषा में स्प्रिंग्स कह देते हैं, और हमने उसको एक स्रोत माना है। स्रोत यानी कि जहां से वो पानी निकल रहा है और हम बाल्टी लगा करके भर रहे हैं या पाइप लगा करके अपने घर को हम लिए जा रहे हैं, लेकिन वो स्रोत तो है जो हमें दिखता है, पर उस स्रोत में पानी आता कहाँ से है, वो उसका रिसोर्स होता है, यानी कि उसका कैचमेंट एरिया होता है जहां से बारिश का पानी उस एक्वीफर में जाता है और साल भर फिर एक जगह स्प्रिंग के रूप में हमको वो मिलता रहता है। निश्चित है हमने रिसोर्स को ध्यान में नहीं रखा, हमने सोर्स को तो ध्यान में रखा, सोर्स की हमने सफाई कर दी, सोर्स में हमने मंदिर बना दिए, सोर्स में वो भी जरूरी है, लेकिन अगर रिसोर्स को हम ध्यान में रखते और रिसोर्स को भी उसी तरह से प्रोटेक्ट करते जैसे हमने स्प्रिंग जहां से निकलती है उसको किया, तो शायद इतनी समस्याएं नहीं आती। दूसरी चीज आपने कही कि बारिश उसी तरह से होती है, बारिश ज्यादा भी हो, बारिश कम समय पे और बहुत ज्यादा हो रही है, इस कारण से जो पानी होता है बारिश का उसको एक्वीफर में या जमीन के नीचे जाने में समय लगता है, धीरे धीरे जाता है। बारिश का पानी इकट्ठा बरसता है, ज्यादा मात्रा उसकी बह जाती है, थोड़ी बहुत मात्रा ही उसकी जा पाती है। दूसरा, लंबे समय तक सूखे पड़ रहे हैं, हमारे जो फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट हमारे कम हुए हैं, हमारा लैंड यूज पूरा चेंज हो गया है, हमने इतने हमारी पक्की सड़कें चाहे वो डैम हो, इतना हमारे जो विकास का ये हुआ है, तो जो रिचार्ज एरिया है जिसको हम रिसोर्सेस कहते हैं वो कहीं ना कहीं पे डैमेज हुए हैं, और इसी कारण से ये स्प्रिंग सूख भी रही हैं। एक जल संस्थान का हमारे देहरादून का ही डेटा है उत्तराखंड का, और ये कहते हैं वो कि लगभग 12,000 स्प्रिंग्स ऐसी हैं, और वो स्प्रिंग जल संस्थान जिनसे सप्लाई करता है, यानी कि जिनसे सप्लाई करता है यानी कि उनका डिस्चार्ज काफी ज्यादा है तभी तो उनसे सप्लाई कर रहे हैं, मतलब बड़ी स्प्रिंग्स हैं, और उन वो या तो सूख गई हैं या तो सूखने की कगार में हैं, उनका डिस्चार्ज काफी कम हो गया है। तो ये बहुत चिंता का विषय है हमारे उत्तराखंड के लिए भी, हमारे हिमालयी राज्यों के लिए भी। इन्हीं सबको देखते हुए और पीएसआई ने, पीपल साइंस इंस्टीट्यूट जहां से मैं हूँ, 2006 में हमने एक पहला ट्रायल किया था उत्तराखंड और हिमाचल में स्प्रिंग सेड मैनेजमेंट का, और उससे जो हमें परिणाम मिले और फिर आगे जिस तरह से हम करते रहे उसमें जियो हाइड्रोलॉजी को भी हमने जोड़ने की कोशिश की, तो निश्चित है एक मॉडल के रूप में, और आज हम लगभग 10 स्टेट में अपनी तकनीकी को लगभग लोगों के बीच में बांट रहे हैं, टेक्नोलॉजी को लोगों के बीच में बांट रहे हैं, कि लोग भी, समाज भी, हमारी सरकारें भी कम से कम अपने जल स्रोतों को वो बचा सके।
0: बिल्कुल, देखिए आपने

0: से अभी बात कही कि विकास हो रहा है और विकास ज़रूरी भी है, समय की मांग है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे हमारे जंगल प्रभावित हो रहे हैं, हमारे पेड़ कम हो रहे हैं। लेकिन अब भविष्य क्या, क्योंकि भविष्य में तो हमें जल चाहिए ना, यदि जल ही नहीं होगा तो फिर भविष्य नहीं है। तो जल की सुरक्षा उत्तराखंड में कैसे हो, इसके लिए क्या प्राथमिक कदम उठाने की अभी से आवश्यकता?
1: पहली बात तो ये सिर्फ उत्तराखंड की नहीं, मैं पूरे देश की बातें करूंगा, उत्तराखंड तो है ही हमारा। किसी भी राज्य में, किसी भी प्रांत में हमारी कोई इन्वेंट्री नहीं है कि हमारे पास कितने जल स्रोत और किस दशा में, किस हालत में वो जल स्रोत हैं। तो पहला काम तो इन्वेंट्री बनाने का है। दूसरा काम ये है उसमें कि उन स्रोतों में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, उन स्रोतों का, जैसे मैंने कहा कि सोर्स उसका रिसोर्सेस, यानी कि उनका रिचार्ज एरिया कहाँ पे और कितना है, कैसे है। जब तक ये चीजें करके और फिर उस रिचार्ज एरिया को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है, तब तक ये समस्याएं हमारी बनी रहेंगी। और ये बहुत आवश्यक है क्योंकि आज इतनी तकनीकी हमारी उन्नति हो चुकी है कि हम उनका रिचार्ज एरिया भी बड़े आराम से खोज सकते हैं। उस रिचार्ज एरिया में कैसे एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के आधार पे, अलग अलग दशाओं के आधार पे, अलग अलग सिचुएशन के आधार पे कौन से इंजीनियरिंग मेजर्स कहाँ पर हमको करने हैं जिससे कि उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, ये सारी नॉलेज, सारा ज्ञान आज हमारे समाज में भी उपलब्ध है। और हम इस टेक्नोलॉजी को, इस साइंस को ट्रांसफर करने का भी काम करते हैं। हमने लगभग 7-8 हिमालयी स्टेट में लगभग 1100 इंजीनियर्स, उनके साइंटिस्ट, उनके ऑफिसर्स, इनको ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रेंड भी किया है और वो जर्नी अभी हमारी शुरू है। और हम इसमें सबसे बड़ी एक चीज जो जोड़ते हैं समाज को, और समाज जो उसका यूजर्स है, जो उनको यूज कर रहे हैं, जो उनके आसपास रहते हैं, जिसको हम पार्टिसिपेटरी अप्रोच कहते हैं, और उन उस समाज से हम पैरा वर्कर्स तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो अपनी वाटर क्वालिटी की मॉनिटरिंग भी करते हैं, अपने डिस्चार्ज की भी मॉनिटरिंग करते हैं, अपने सोर्स को भी समझते हैं, अपने रिसोर्सेस को भी समझते हैं, और आगे चल करके उसमें वो अपने कदम भी लेते हैं और निश्चित है अपने स्रोतों को वो संरक्षित।
0: बिल्कुल, आपने जिस मॉडल की अभी बात की, स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट पे जब आपने काम किया और कई राज्यों में इसकी सफलता देखी गई है, हम चाहेंगे कि उत्तराखंड में ये किस तरीके से आपने काम किया, थोड़ा संक्षिप्त में आप बताइए ताकि समझ में आ पाए कि कैसे हमने रिचार्ज करना है जो हमारे रिसोर्स हैं उनको।
1: उत्तराखंड में भी और हिमाचल में भी, जैसे मैंने आपसे बताया कि 2006 में हमने 2-2, 3-3 स्प्रिंग्स में, और जैसे पहले वाटरशेड अप्रोच होती थी कि वाटरशेड यानी कि जहां से बह के पानी एक बिंदु में आता है, उस अप्रोच से हम काम करते थे लेकिन उसका भी फायदा मिलता था स्प्रिंग में हमें। लेकिन इसमें जब से हमने जियो हाइड्रोलॉजी यानी कि जमीन के नीचे की संरचना क्या है, जब से उसको समझ करके और फिर हमने काम शुरू किया, तो उसका फायदा हमको ज्यादा से ज्यादा मिलने लगा। तो हमारे जो इसमें चरण होते हैं काम करने के, पहले तो हम स्प्रिंग की इन्वेंटरी बनाते हैं जिसमें उसके डिस्चार्ज की मॉनिटरिंग होती है, उसके वाटर क्वालिटी की मॉनिटरिंग होती है। दूसरा, हम फिर समाज के साथ बैठ करके और उनकी अपनी ओनरशिप उस सोर्स के प्रति, उस रिसोर्स के प्रति कैसे जागृत हो, उस पे हम काम करते हैं, उनके मोबिलाइजेशन का काम, और यहाँ तक कि हम प्लानिंग से लेकर के और बाद में इम्प्लीमेंटेशन और जो उनका मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस रहता है, उस सब में हम उनके जो जिनको हम यूजर्स कहते हैं उनको हम जोड़ते हैं। तो दूसरा, पहला तो हमारा साइंस का रहता है, साइंस के माध्यम से हमने इन्वेंट्री बनाई, इन्वेंट्री से हमने उसका रिचार्ज एरिया को हमने आइडेंटिफाई किया कि आखिरकार कहाँ का पानी उस स्प्रिंग में आता है, फिर उस रिचार्ज एरिया का लैंड यूज कैसा है, उस लैंड यूज के आधार पे ढाल कितना है, वेजिटेशन कैसा है, उसमें किस तरह के ट्रेंचेज बन सकते हैं या छोटे छोटे पिट बन सकते हैं, कहाँ पर हमको ग्रास लगाना, कहाँ पर हमको प्लांटेशन करना है, वो सारे इंजीनियर मेजर हम करते हैं, फिर उनका ऑपरेशन मेंटेनेंस भी कंटिन्यू होता रहता है। और तीसरा, ये जो सारा नॉलेज होता है ये हम वहाँ की कम्युनिटी को भी ट्रांसफर करते हैं, कम्युनिटी को भी हम उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पीएसआई या सरकार हर जगह पे बैठ करके लगातार तो उस पे काम नहीं कर सकती। आज जैसे हम कहें कि हमने लगभग 1000 स्प्रिंग्स को हमने रिजनोवेट किया है, उत्तराखंड में भी 100 से ज्यादा है हमारी स्प्रिंग, चाहे वो पौड़ी में हो, चाहे अल्मोड़ा में हो, चाहे बागेश्वर में हो, नैनीताल में हो, 100 से ज्यादा स्प्रिंग्स में हम लोग काम कर चुके हैं। अब पीएसआई तो एक लिमिटेड रिसोर्सेस वाली संस्था है, तो इसीलिए हम कम्युनिटी को ट्रेंड करते हैं ताकि बाद में, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं, एक हिमाचल में थाना कशोगा है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायत है थाना कशोगा, वहां की जो महिलाएं थी महिलाएं, हमने जब तक वहां पर ये सारे प्रोग्राम हमने किए, आइडेंटिफिकेशन हमने किया
0: जी,
1: रिचार्ज एरिया का में इम्प्लीमेंटेशन किया हमने, और इसके बाद हम 2 साल के बाद वहां से विड्रॉ हो गए, हम अपने दूसरा एरिया में दूसरी काम में लग गए
0: जी।
1: वहां की महिलाएं लगातार रेगुलर मॉनिटरिंग करती रहीं डिस्चार्ज की भी और वाटर क्वालिटी की भी। वाटर क्वालिटी की पीएसआई की अपनी एक किट भी हमने काफी सरलीकरण किया है, जो वाटर क्वालिटी की मॉनिटरिंग भी होती है, एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग होती है, जो समाज के लोग या गांव के लोग बड़े ही सरलता के साथ उसको यूज कर सकें। तो उस वाटर क्वालिटी किट के माध्यम से वहां की महिलाएं मॉनिटरिंग भी करती थी। मॉनिटरिंग करते करते उनको जो फीकल कॉलीफॉर्म कंटामिनेशन होता है वो उनको ज्यादा मिलने लगा, और जब ज्यादा मिलने लगा तो उन्होंने हमसे भी कांटेक्ट किया कि भाई ये ऐसा क्या हो गया। हमने कहा इसके कारण ढूंढिए, आप ही लोग ढूंढिए। और उन्होंने क्या देखा कि जो रिचार्ज एरिया था, तो रिचार्ज एरिया में कुछ टॉयलेट्स बन गए थे और दूसरा ओपन ग्रेजिंग होने लगी थी। एक समय पे तो वो फेंसिंग करके उसको, जिसको हमने सोशल फेंसिंग नाम दिया था, कि गांव वालों ने ही उसको तय किया कि भाई ये जो रिचार्ज एरिया है, इस रिचार्ज एरिया में कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जो हमारे डिस्चार्ज और वाटर क्वालिटी को इफेक्ट करे।
0: बिल्कुल सर, आप ना यहाँ पे वाटर क्वालिटी की बात कर रहे हैं, जल की गुणवत्ता की, क्योंकि उत्तराखंड का यदि कोई नागरिक है जो गांव में इस कार्यक्रम को देख रहा है और वो बारिश का पानी एकत्रित करता है, उसे जल की गुणवत्ता देखने की कैसी है, तो कैसे ये मापी जा सकती है और क्या ये जरूरी है?
1: आज के समय में जल गुणवत्ता बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गई है। जितना कि हमारी पानी की उपलब्धता है, उतनी ही गुणवत्ता भी इम्पॉर्टेंट हो गई है
0: जी।
1: और यहाँ पे उत्तराखंड में, खासकर पौड़ी में और अल्मोड़ा में और बागेश्वर में, जो मैंने आपको बताया, लगभग 500 स्प्रिंग्स का वाटर क्वालिटी का डेटा हमने जनरेट किया
0: जी।
1: और उसमें हमने क्या पाया कि लगभग 75% जो स्प्रिंग्स का पानी है वो कॉलीफॉर्म के द्वारा कंटामिनेट, और ये कॉलीफॉर्म आपके जितनी जलजनित बीमारियां होती हैं उनमें से लगभग 80% कारण ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं। और ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया आते कहाँ से हैं? हम जहाँ जल अपना मल त्याग करते हैं वहां से आते हैं, शोट पिट से आते हैं, जहां भी इस तरह की गंदगी और वो डाल देते हैं उससे आते हैं। और ज्यादातर देखें तो पहाड़ों में जो हमारे धारा या नौला है वो किसी न किसी फ्रैक्चर में रहते हैं, और जब हमारे सोक पिट या हमारे सेप्टिक टैंक बने हुए होते हैं उनसे पानी रेस करके और सीधे पहुंच जाता है वो स्प्रिंग में, और इस कारण से वो कंटामिनेशन होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक सामान्य आदमी कैसे जाने कि ये क्वालिफॉर्म इसमें है या नहीं है? तो निश्चित है इसका एक प्रयोगशाला टेस्ट होता है, और प्रयोगशाला टेस्ट में लगभग 48 घंटे के बाद उसका रिजल्ट आता है कि इसमें कॉलीफॉर्म है या कॉलीफॉर्म नहीं है। और वो लैब में कई इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो वो करना तो लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, आजकल 2 तरह के बायल्स आने लगे हैं, जिनको हम H2S स्ट्रिप भी कहते हैं, और एक बायल्स PSI खुद अपनी किट में शामिल करता है। उसमें अगर पानी भर के और आपने कुछ समय के लिए रख दिया, खासकर 24 घंटे के लिए रख दिया, तो पानी का कलर चेंज हो जाएगा। तो अगर वो येलो हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि उसमें कॉलीफॉर्म है। अगर उसी कलर का रहता है जिस कलर में हमने पानी डाला था, उस मीडिया को डाला था, तो वो कॉलीफॉर्म नहीं है। तो दूसरा एक ये है। तीसरा, जो सबसे बड़ा हमारा अपना अनुभव रहा है कि अगर कोई जल जनित बीमारियां हमारे पड़ोस में, आसपास में फैल रही हैं, तो निश्चित है कोई ना कोई इस तरह का कारण, और पानी एक मुख्य कारण होता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो अगर हो रहा है तो निश्चित है लोगों को वो अवॉइड करना चाहिए, और उस समय के लिए अगर बॉयल करके उस पानी को भी पी लेते हैं या उसमें थोड़ा सा क्लोरीन की टैबलेट डाल देते हैं तो फिर वो बैक्टीरिया से बच सकते।
0: अभी हम आपके पास आएंगे एक नया सवाल लेके, चालखाल, क्योंकि ये बहुत पारंपरिक प्रचलन है कि लोग अपने गांव में छोटे छोटे गड्ढे करते हैं, उसमें पानी इकट्ठा करते हैं, कितना उपयोगी है और क्या आज भी ऐसा किया जा सकता है?
1: बिल्कुल किया जा सकता है। देखिये, चालखाल तो आपने पौड़ी का इतिहास आपने देखा ही कि एक नदी हमारी जीवित हो गई। हम लोग भी जो स्प्रिंग सेड मैनेजमेंट का काम करते हैं उसमें हमारी चाल खाल भी होती हैं, पर उन चाल खाल ट्रेंचेज, वो जैसे मैंने आपको बताया कि कितनी जमीन, कितनी ढाल है वहां की, उस पे भी वो निर्भर करती है। तो निश्चित है कि क्योंकि ये पानी को, चलते हुए पानी को रोकना, वो एक आपने सुना होगा काफी स्लोगन चलता है कि दौड़ते हुए पानी को चलना सिखाएं, चलते हुए पानी को खड़ा करना सिखाएं, और खड़े हुए पानी को नीचे जमीन में जाना सिखाएं। तो निश्चित है ये जितने स्ट्रक्चर हैं हमारे, चाहे वो चाल हो, चाहे खाल हो, चाहे ट्रेंचेज हो, चाहे छोटे तालाब हो, चाहे बड़े तालाब हो, ये यही काम करते हैं, पानी को रोकते हैं।

0: और रुके हुए पानी को भूगर्भ में भेजते हैं, जिससे हमारा एक्वीफर रिचार्ज होता है और फिर उससे जो निकलने वाले हमारे जल के स्रोत हैं उनमें साल भर पानी बराबर हमको मिलता रहे।
1: जी ठीक है, हमने कि एक चीज़ और सुनी है कि रिवर ई फ्लो बहुत ज़रूरी है, ये क्यों ज़रूरी है सर, ये क्या होता है आखिर?
0: दरअसल किसी भी नदी को अगर हम समझें तो नदी के कुछ गुण होते हैं, उसका धर्म होता है नदी का कि नदी को निरंतर बहते रहना चाहिए। नंबर एक, नदी को अपने साथ जहां से वो उसकी उत्पत्ति होती है वहां से गाद या सिल्ट को लेकर के समुद्र तक ले जाना उसका एक दूसरा गुण धर्म है। तीसरा गुण धर्म है नदी का कि जो उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी है, चाहे मछलियां हों, चाहे सैवाल हों, चाहे बेंथिक माइक्रोइनवर्टिब्रेट्स हैं, जितने जलीय जीव हैं उनको पोषित करना। तीसरा उसका गुणधर्म है कि जो भूजल है, जहां पर भूजल की मात्रा ज्यादा है, उथला है भूजल, वहां से भूजल को लेना, जहां पर भूजल की कमी है, जहां गहराई है, वहां पर भूजल को पानी देना। ये नदियों के गुणधर्म होते हैं। अब इस गुणधर्म में अगर हम किसी नदी को बांध देते हैं और बांधने के बाद उसका पूरा का पूरा पानी हम डाइवर्ट कर देते हैं, बड़े बांधों में है उसमें भी हमने बड़ा बांध बांध दिया और नदी के नीचे देखते हैं तो नदी पूरी सूखी रहती है, जिनको हम आज रनाद द रिवर भी कहते हैं, हाइड्रो पावर्स हैं। हाइड्रो पावर में 10-10 15-15 किलोमीटर की टनल, उसमें भले हम बड़ा बांध नहीं बनाते, बैराज ही बनाते हैं, बैराज से 15-15 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर की टनल के माध्यम से हम उसको नीचे डाउन स्ट्रीम में ले जाते हैं, तो वो जो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का एरिया होता है वो पूरी तरह से एक तरह से ड्राई हो जाता है। इसी कारण से ये बहस काफी दिनों से ये छिड़ी कि भाई नदी का पानी, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मेरे शरीर से पूरे खून को निकाल लिया जाए तो मेरी क्या स्थिति होगी। इसी तरह से अगर नदी से पूरा पानी आपने 10 किलोमीटर की स्ट्रेच का निकाल लिया तो उस नदी के उस भाग का क्या होगा, उन जलीय जीवों का क्या होगा, वहां जो नीचे एक समाज रहता है उनके समाज का क्या होगा। दूसरा ये है कि हम तो भारत देश में रहते हैं, हमारा इतना सांस्कृतिक और धार्मिक लगाव नदियों से है, हमारे इतने पारिवारिक कार्यक्रम या सांस्कृतिक कार्यक्रम इतने जुड़े हुए होते हैं नदियों से, अगर वहाँ पानी नहीं है तो उन हमारी धारणाओं का क्या हुआ, हमारी मान्यताओं का क्या हुआ होगा। तो इस कारण से कि नीचे पानी नदी में हम कितना टनल के माध्यम से या कितना डैम के माध्यम से ले सकते हैं और कितना पानी हमें नदियों में छोड़ना चाहिए ताकि उसकी बायोडाइवर्सिटी, उसके नीचे रहने वाला समाज, हमारी सांस्कृतिक भावनाएं और यहाँ तक कि ग्राउंड वाटर, और दूसरा नदी का एक अपना जो लंबाई चौड़ाई गहराई होती है, नदी के आसपास की जो वनस्पति होती है, वो सारे कैसे सस्टेन कर सकें, अपने आप को उसी हालत में रख सकें जो डाइवर्जन के पहले था, वो एनवायरमेंटल फ्लो।
1: ठीक है सर, आखिरी में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने बारिश, बारिश का जल और उसकी गुणवत्ता पे बहुत अच्छे से हमें जानकारियां दी हैं, और आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि उत्तराखंड के लोगों से जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कैच द रेन अभियान को अपनाने के लिए संक्षिप्त में आप बताइए आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, ताकि उनके जो आसपास के जल स्रोत हैं और उनके पास खुद भी पानी बचे और भविष्य सुरक्षित रहे।
0: बिल्कुल, तो मेरा सबसे कहना यही है कि निश्चित रूप से आप जिन स्रोतों पे आपकी निर्भरता है पानी के लिए, उन स्रोतों को आप बचाएं, उन स्रोतों की आप समझ बढ़ाएं, उन स्रोतों में पानी कहाँ से आता है उस रिचार्ज एरिया को आप देखें, उसको आप संरक्षित करें, आप उसको सुरक्षित करें, और निश्चित रूप से सबसे बड़ी चीज जो एक प्रमुख मैं कहूँगा कि हमें उसकी ओनरशिप लानी होगी कि यह स्रोत हमारा है, हमारे लिए है। जब तक हम ये मानते हैं कि ये सिर्फ सरकार का स्रोत है या सरकार ही आकर के उसको बचाएगी, यूजर्स तो हम हैं, प्रयोग तो हम करते हैं, रहते तो हम हैं वहाँ, तो जब तक हम अपना मालिकाना हक उसमें नहीं जनराएंगे, अपने मालिक की तरह हम उसका रखरखाव नहीं करेंगे, तब तक ये समस्याएं शायद बनी ही रहेंगी। इसलिए मेरा ये कहना है कि जल स्रोतों को बचाएं, उनको रिचार्ज करें, और बारिश के पानी को जहां जहां हम रोक सकें, हम अपने खेतों में मेड़ बना करके भी, वो कहते हैं ना खेत में मेड़, मेड़ में पेड़, अगर ये चीजें भी हम करने में सक्षम हो जाते हैं तो निश्चित है, और ये हमें एक गांव के स्तर में, हमें गांव की वाटर सिक्योरिटी पे काम करना होगा और वो गांव के लोगों को ही करना होगा।
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया, महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल गौतम, वैज्ञानिक हैं, जल संरक्षण पे काम कर रहे हैं, काफी समय से ये समझते हैं, अच्छी समझ रखते हैं कि कैसे हमें जल को संरक्षित करना है, उसकी गुणवत्ता को समझना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी लोगों से अपील की है कि कैच द रेन अभियान को अपनाएं, क्योंकि जब जल बचेगा तभी हमारा कल सुरक्षित होगा। उम्मीद करते हैं चर्चा आपको पसंद आई होगी, फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
2: क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति देहरादून की प्रस्तुति वह आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्रीय से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पे। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
3: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द मिडडे न्यूज। द हेडलाइंस, India's first privately developed orbital rocket Vikram 1 launched successfully from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota. Prime Minister Narendra Modi congratulates the Skyroot Aerospace team, calls it a defining moment in India's space journey. Defence Minister Rajnath Singh says India's zero tolerance against terrorism is not merely a statement but a firm line of action. Red colour warning issued for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles final of Japan Open in Tokyo. And now the news in detail. India's first privately developed orbital rocket Vikram 1 under Mission Agaman has successfully reached orbit after completing its final burn and injecting payloads into a 450-kilometer orbit. The liftoff took place at 12.05 p.m. from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh.
4: 2-1-0.
5: And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch
4: lift
5: vehicle.
4: Off, normal.
5: Vikram 1 ne apni udan bhari pratham charan ka prajwalan.
3: Our correspondent reports that the milestone makes India the third country in the world to achieve private orbital launch capability. Developed under Mission Agaman, the rocket is intended to provide cost-effective and flexible launch services for small satellites. Named after Dr. Vikram Sarabhai, the father of the Indian space program, Vikram 1 features 3 solid propellant stages and a liquid-fueled Raman engine in its orbital adjustment module for precise orbital insertion and maneuvers. It is capable of placing payloads into low Earth orbit, a report.
6: Mission Agaman marks the first successful launch of an orbital class rocket fully designed, developed and launched by an Indian private company from Indian soil. Mr. Pawan Kumar thanked the Prime Minister for his leadership and said the government's space sector reforms along with the support of ISRO and InSpace had made the achievement possible. The mission is expected to strengthen India's position in the global small satellite launch market while advancing the objectives of Make in India and Atmanirbhar Bharat. Allu Murli, Akashwani News, Vijayawada.
3: Prime Minister Narendra Modi congratulated the Skyroot Aerospace team over a telephone call after India's first privately developed orbital rocket Vikram 1 successfully reached orbit. Mr. Modi said successful launch of Vikram 1 under Mission Agaman is a major milestone in India's journey towards self-reliance in the space sector. Mr. Modi also expressed happiness that the Skyroot team comprises mostly young professionals. The Prime Minister also invited Team Vikram 1 to meet him. The Prime Minister said the historic achievement will inspire the youth of the country to come forward and contribute to innovation.
7: जमीन पर भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
3: Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh congratulated Team Skyroot on the successful launch of India's first privately developed orbital launch vehicle Vikram 1. In a social media post, the minister said the mission marks a major milestone for India's expanding private space sector. He added, this reflects the nation's growing capabilities in space technology and rising space economy. The minister highlighted that this achievement is another significant step towards strengthening India's position as a global space power.
8: Congratulations InSpace for facilitating this beautiful public-private partnership. Congratulations ISRO for optimizing this collaboration. Many, many thanks Prime Minister Narendra Modi ji for making this possible, because it is possible only because 5 years back Prime Minister Modi took a heroic decision, a bold decision, a courageous decision, an out-of-box decision to open the space sector to the private players, to unlock the space sector. That today's successful launch is a reiteration of India's grand entry as a global player in the highly competitive arena of space economy.
3: Defense Minister Rajnath Singh has said that for India, zero tolerance against terrorism is not merely a statement but a firm line of action. Speaking at the forces' first conclave in New Delhi today, Mr. Singh said that India will strike terrorists not only at its doorstep but if necessary by entering their hideouts. He added that the entire world witnessed this during Operation Sindoor, and it was a remarkable example of technological warfare.
9: Operation Sindoor apne aap mein technological warfare ka.
10: Operation Sindoor was in itself a fantastic example of technological warfare. In this operation, systems like the Akash missile system and advanced missile systems like BrahMos, along with various latest equipment, were used. This has proven that our armed forces understand the changes taking place and are also using them with confidence.
9: Aur usse aatmavishwas ke saath uska upyog bhi kar rahi hai.
3: The minister highlighted that over the past 12 years, the Narendra Modi government has made the revival and strengthening of the defence sector one of its top priorities. Mr. Singh noted that the government had resolved not only to strengthen India's defence preparedness, but also to reduce the country's dependence on imports to meet its defence requirements.
10: Under the new defense acquisition procedure, priority has been given to arrangements like Buy Indian IDDM. To modernize the armed forces, 75% of the allocated budget has been reserved for procurement from Indian industries. This year, we are introducing a new defense acquisition procedure, which will give new momentum and strengthen to defense production in the country.
9: Defense production ko ek nayi raftaar milegi aur ek nayi taakat bhi milegi.
3: Union Railways Minister Ashwini Vaishnav and Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami today virtually flagged off the new Ramnagar-Dehradun Express. This marks a new era of enhanced rail connectivity between Uttarakhand and Uttar Pradesh. The train will benefit tourists and wildlife enthusiasts visiting Jim Corbett National Park, as well as devotees travelling to the temple near Ramnagar. Addressing the function through video conferencing in New Delhi, Mr. Vaishnav stated that the train will operate twice a week and provide connectivity between the Kumaon and Garhwal regions of Uttarakhand. He said that work on the Rishikesh-Karnaprayag rail project is progressing rapidly.
11: Kumaon and Garhwal are two very strong poles in Uttarakhand. The train connecting these two pillars will connect Kumaon and Garhwal. It will be a new bridge between Kumaon and Garhwal. Efforts have been made continuously for this, and the result is that the train is now running twice a week. It is a very good thing. People from Kumaon will be able to go to Garhwal easily, reach Dehradun and do all kinds of work in the capital.
12: Kumaon ke log aaram se Garhwal ja payenge, Dehradun capital tak ja payenge.
3: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The government has convened an all-party meeting tomorrow ahead of the monsoon session of the parliament beginning on Monday. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure the smooth functioning of both houses of parliament. The monsoon session will commence from Monday and continue till 13th of next month. Union Home Minister Amit Shah will today visit the BSF's 18th Battalion Border Outpost in Jumagarh in West Bengal, located near the India-Bangladesh border, to inaugurate and lay the foundation stone for several BSF-related development projects. The Home Minister will also chair a meeting in Siliguri to review border management and security-related issues in the state. Activist Sonam Wangchuk has been taken to a government hospital for essential medical care. Deputy Commissioner of Police of New Delhi, Sachin Sharma, said that Mr. Wangchuk has been shifted as per orders of the Delhi High Court and on expert medical advice due to his deteriorating health condition. Mr. Wangchuk has been on a fast at Jantar Mantar for several days. Meanwhile, Medical Superintendent of Safdarjung Hospital, Dr. Charu Bamba, said that Mr. Wangchuk is under continuous medical observation and receiving treatment. Dr. Bamba added that he is fully conscious and all his vital parameters are stable. The Department of Posts, Ministry of Communications, has launched the India Post Mascot Design Contest on the Innovate India MyGov platform to design the official mascot of India Post. The initiative aims to create a distinctive brand ambassador that

0: भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम, बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
3: Congratulations in space for facilitating
1: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
3: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी।
0: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
4: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में दो दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है, कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
5: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
5: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
0: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
5: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े

अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

साथियों, मेजर पीरू सिंह का जन्म 20 मई 1918 को राजस्थान के बेरी गांव में हुआ था। इन्हें 20 मई 1936 को झेलम में एक पंजाब रेजिमेंट की 10वीं बटालियन में नामांकित किया गया था। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 1 मई 1936 को मेजर पीरू सिंह को उसी रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में तैनात किया गया और कुछ अन्य परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद 7 अगस्त 1940 को उन्हें लांस नायक के पद पर भी पदोन्नत किया गया। एक पंजाब की 5वीं बटालियन के साथ अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने उत्तर पश्चिम फ्रंटियर पर कार्यवाही की।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति दो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था।

भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां, पूजा।

हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं देखा। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।

0: हमलावर इस दीवार से टकरा कर वापस जाते रहे, जो 1962 में हुआ, वही सन 65 में और वही 71 में। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया।
1: सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पे, और आज हम बात कर रहे हैं कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह की। साथियों, मार्च 1941 में उन्हें नायक के पद पर पदोन्नत किया गया था और सितंबर में झेलम में पंजाब रेजिमेंटल सेंटर की एक प्रशिक्षक के रूप में भी तैनात किया गया। फरवरी 1942 में उन्हें हवलदार में पदोन्नत किया गया और श्री पीरू सिंह एक उत्कृष्ट खिलाड़ी थे। उन्होंने अंतर रेजिमेंटल और राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में हॉकी, बास्केटबॉल और क्रॉस कंट्री दौड़ में अपनी रेजिमेंट का प्रतिनिधित्व किया। मई 1945 में उन्हें कंपनी हवलदार मेजर से पदोन्नत किया गया। उन्होंने अक्टूबर 1945 तक एक प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद उन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑक्यूपेशन फोर्स के हिस्से के रूप में जापान भेजा गया, जहां उन्होंने सितंबर 1947 तक सेवा की और इसके बाद उन्हें राजपूताना राइफल्स की 6th बटालियन में स्थानांतरित कर दिया गया।

साथ ही 18 जुलाई 1948 को 6 राजपूताना राइफल्स KCHM पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के टीटवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। हमले के दौरान उन पर MMG से भारी गोलीबारी की गई और हथगोले फेंके गए। उनकी टुकड़ी के आधे से भी अधिक सैनिक मारे गए और घायल हो गए। फिर CHM पीरू सिंह ने अपने बचे हुए जवानों को लड़ाई जारी रखने के लिए काफी प्रेरित किया और घायल होने के बावजूद भी दुश्मन के MMG युक्त 2 बंकरों को बर्बाद कर दिया। फिर अचानक उन्हें यह भी पता लगा कि उनकी टुकड़ी में इकलौते वो ही हैं जो जीवित बचे हैं। तब दुश्मनों ने उन पर एक और हथगोला फेंका। वो लहूलुहान चेहरे के साथ रेंगते हुए आगे बढ़े और अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर दिया। साथ ही उत्कृष्ट वीरता और अदम्य शौर्य का प्रदर्शन करने और सर्वोच्च बलिदान देने के फलस्वरूप कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

साथियों, गंभीर चोटों के बावजूद मेजर पीरो सिंह के कदम नहीं रुके। उनके होठों पर केवल एक ही संकल्प था, देश की रक्षा। अंतिम क्षणों तक लड़ते हुए उन्होंने दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाया और मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। एक सच्चा देश प्रेम त्याग, साहस और समर्पण में निहित होता है। इनका नाम भारतीय सेना के इतिहास में सदैव अमर रहेगा। हम इन महावीर को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं।

जुबा पर भारत माँ का नाम और दिल में हिंदुस्तान है, सरहद पर तैनात हर एक फौजी को मेरा सलाम है। तो सैनिक साथियों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम सैनिकों के लिए अब यहीं पर संपन्न करने की दीजिएगा अनुमति। जय हिंद।

श्रोताओं, कार्यक्रम सैनिकों के लिए अभी आप सुन रहे थे FM 100.5 MHz पे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अब वक्त है फिल्म संगीत गाने नए तराने का। श्रोताओं, संगीत एक ऐसा जादू है जिसे पूरी दुनिया समझती है, जो दिलों को जोड़ता भी है और यादों को फिर से ताज़ा भी कर देता है। खैर, बातें तो चलती रहेगी, बढ़ते हैं कार्यक्रम के पहले गीत की ओर।

श्रोतों, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म विश्वात्मा से। आवाज थी साधना सरगम की, गीत पर था आनंद बख्शी का और धुन बनाई थी विजू शाह ने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले गीत की ओर, जो आप सुनेंगे फिल्म विकी डोनर से। आवाज है आयुष्मान खुराना की।

शंकर महादेवन के स्वर में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म वेकअप सिड से। FM 100.5 MHz पे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून और श्रोताओं कार्यक्रम चल रहा है गाने नए तराने। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

रंगों से सजी ये चुनरी प्यार की कहानी कहती है, तो सुनिए बीवी नंबर वन से ये अभिजीत भट्टाचार्य और अनुराधा श्रीराम की खूबसूरत आवाज में ये गीत।

श्रोताओं, गुरु रंधावा के स्वर को आप सुन रहे थे फिल्म नवाबजादे से। आप सुन रहे हैं गाने नए तराने आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पे। आइए गीतों के क्रम को और आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं आपको मीका सिंह, सुनीति चौहान और साजिद खान की आवाज़ से सजा ये गीत फिल्म हाउसफुल से।

श्रोताओं, सचिन जिगर के संगीत निर्देशन में यह गीत आप सुन रहे थे फिल्म स्त्री 2 से। गीतबद्ध था अमिताभ भट्टाचार्य का, आवाज थी मधुवंती बागची, दिव्या कुमार और साथी की। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, थिरकते कदम और धड़कनों का ये प्यारा सफर, डिस्को गीत। फिल्म है स्टूडेंट ऑफ द ईयर और गीत को खूबसूरत आवाजों से सजाया है बेनी दयाल, नाजिया और हसन और साथियों ने।

श्रोताओं, प्रीतम, अमित मिश्रा, शिल्पा राव की खूब आवाज़ से सजे इस गीत को आप सुन रहे थे फिल्म ए दिल है मुश्किल से। FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गाने नए तराने। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। इस मधुर गीत में प्रेम, इंतजार और गहरे एहसासों की खूबसूरत झलक साफ दिखाई देती है। तो सुनिए ये गीत श्रेया घोषाल, श्री कुमार की आवाज़ में फिल्म भूल भुलैया से।

श्रोताओं, अमित त्रिवेदी के संगीत निर्देशन में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म केदारनाथ से। आवाज थी देव नेगी की, गीतबद्ध था अमिताभ भट्टाचार्य का। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म आशिक बनाया आपने से। गीत है समीर का, संगीत है हिमेश रेशमिया का और आवाज़ है केके की।

0: तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्मी गीत गाने नए तराने अब यहीं पर संपन्न हुए। FM 100.5 MHz पे यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए अब सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप आशुतोष अनियाल से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज विशेष गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रामनगर देहरादून एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। बद्रीनाथ यात्रा होगी सुगम। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 900 मीटर सुरंग का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप नेहरू स्टेडियम रुड़की के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा को लेकर सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने मानसून सीजन के दौरान पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में एक हेलीकॉप्टर की तैनाती की है। सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश के हर जिले में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित की जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उपयोग कांवड़ यात्रा के लिए नहीं किया जाएगा। कुमाऊं मंडल के आयुक्त ने अल्मोड़ा जिला आपदा परिचालन केंद्र को प्रत्येक सूचना पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के लोगों से संवाद कर जन समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री के सेवा सुशासन एवं समर्पण जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत पोखड़ा में बहुउद्देश्य जनसेवा शिविर आयोजित किया गया। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे व सोने चांदी के आभूषणों में हेरा फेरी में विशेष जांच दल ने BKTC के पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। पौड़ी जिले में हरेला महाअभियान के तहत नागदेव रेंज में उत्साह के साथ पौधरोपण किया गया। दून अस्पताल में डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 8 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं और प्रदेश में आज देहरादून नैनीताल चंपावत और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे शमशेर सिंह का सरोद वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग भीम प्लासी।

श्रुतों, शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे शमशेर सिंह का सरोद वादन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग भीमप्लासी। FM 100.5 MHz पे ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आप प्रस्तुत है ये कलाकार फिल्म संगीत। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम एक कलाकार फिल्म संगीत में। मैं हूं आपकी दोस्त रेशमा और आज हम बात करेंगे ऐसी अभिनेत्री की जिसने अपनी प्रतिभा, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर न केवल बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी अलग पहचान बनाई। जी हां दोस्तों, बात हो रही है अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की। इनका जन्म 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर झारखंड में हुआ। इनके माता पिता भारतीय सेना में चिकित्सक थे। ये एक प्रसिद्ध अभिनेत्री, फिल्म निर्माता और मिस वर्ल्ड 2000 की विजेता हैं और इन्होंने ये खिताब जीतकर पूरे देश का नाम रोशन किया। इसके बाद फिर क्या, उनके लिए फिल्मों के दरवाजे खुल गए। तो आइए श्रोताओं, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस गीत से। फिल्म का नाम है ऐतराज़।

FM 100.5 MHz पे ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है एक कलाकार फिल्म संगीत। साथियों, प्रियंका चोपड़ा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तमिल फिल्म थमीजन से की। इसके बाद इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और फिल्म अंदाज से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। इसके बाद प्रियंका ने ऐतराज, क्रिश, डॉन, फैशन, बर्फी, मैरीकॉम जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। साल 2008 में आई फिल्म फैशन उनके करियर का महत्वपूर्ण साबित हुई। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आइए सुनते हैं फैशन फिल्म से इन पर फिल्माया ये गीत।

शुतुन साल 2000 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया में भाग लिया और मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता। इसी वर्ष इन्होंने मिस वर्ल्ड का ताज भी अपने नाम किया। 2015 में प्रियंका अमेरिकी टीवी सीरीज क्वांटिको का हिस्सा बनी और वो किसी अमेरिकन नेटवर्क सीरीज को हेडलाइन करने वाली पहली दक्षिण एशियाई अभिनेत्री बनी। इसके बाद इन्होंने बेवॉच, द मैट्रिक्स रिसेक्शन और सिटाडेल जैसी कई बड़ी हॉलीवुड फिल्मों और सीरीज में काम किया।

श्रोताओं, एक कलाकार फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पे। श्रोताओं, प्रियंका चोपड़ा केवल एक सफल अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक अच्छी गायिका और निर्माता भी हैं। इन्होंने अंग्रेजी गीत इनवाई सिटी और एग्जॉटिक के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गायन प्रतिभा भी दिखाई। इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में काम किया है और ये आज भारतीय सिनेमा की एक वैश्विक पहचान बन चुकी है। साल 2018 में प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिकी गायक निक जोन्स से विवाह किया। फिल्मों के अलावा प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर भी है और शिक्षा व बाल अधिकारों से जुड़े सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं।

श्रोताओं, अगर बात करें इनके पुरस्कार की तो इन्होंने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण पुरस्कार और उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रियंका को अब तक 5 फिल्मफेयर पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें अंदाज, एतराज़, फैशन, सात खून माफ और बाजीराव मस्तानी शामिल है। और भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया। टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया और हाल ही में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है और 2026 में क्रिटिक्स चॉइस सुपर अवार्ड्स में नामांकन प्राप्त हुआ है, जो उनके वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है।

दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा की सफलता हमें ये बताती है कि अगर व्यक्ति अपने सपनों पर विश्वास रखे और मेहनत से आगे बढ़े तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। आज प्रियंका चोपड़ा करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। मिस वर्ल्ड से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्टार बनने तक का उनका सफर वास्तव में संघर्ष, मेहनत और सफलता की अद्भुत कहानी है। तो अंत में आइए सुनते हैं प्रियंका चोपड़ा पर फिल्माया एक और लोकप्रिय गीत।

0: श्रोतों, इसी गीत के साथ एक कलाकार फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में निजी क्षेत्र के पहले कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि ये निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम, बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री जयशंकर ने कहा कि यह प्रमाण है कि जब भारत के युवाओं के नवाचार और उद्यमशीलता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक सुधारों का समर्थन मिलता है तो क्या हासिल किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये अंतरिक्ष को अधिक सुलभ बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में परिवर्तनकारी अध्याय की शुरुआत है। श्री बिरला ने कहा कि विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र ने अपनी बढ़ती तकनीकी उत्कृष्टता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन किया है। संसद का मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगॉव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। इसका उद्देश्य इंडिया पोस्ट के लिए ऐसा आधिकारिक शुभंकर तैयार करना है जो संगठन के विश्वास, विश्वसनीयता, सेवा और डिजिटल नवाचार जैसे मूल्यों का प्रभावी प्रतिनिधित्व करे। ये प्रतियोगिता सभी नागरिकों के लिए है। प्रतिभागियों को माईगॉव पोर्टल के माध्यम से मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे अमरीका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यूफी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यूफी को चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के देहरादून केंद्र को। श्रोताओं, शाम के 5:05 हो रहे हैं। आइए हम आपको जानकारी दे देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

पीपल्स पद्मावत आकाशवाणी, आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर, इसे भी हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात्रि 10 बजे, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून के विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे भारत के अमरवीर पॉडकास्ट सीरीज रात्रि 7:50 पर। फिल्म संगीत आप तक पहुंचेगा शाम 7:40 पर। कृषि जगत आप सुनेंगे शाम 7:00, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे हेलो लोक मंजरी।

पर्वतीचलों के श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम जगत अब तक पहुंचेगा शाम 5:45 पर। और युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी अब से कुछ ही पलों में अर्थात शाम 5:10 पर।

श्रोताओं, यदि जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की, आइए अब हम आपको हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की, हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की कुछ संक्षिप्त रूपरेखा बतला देते हैं। श्री रामचरित मानस गान आप सुनेंगे कल प्रातः 6:40 पर। भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे कल प्रातः 7:10 पर और शैल संगीत आप सुनेंगे कल प्रातः 7:30 पर। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून आप तक पहुंचेगा कल प्रातः 8:30 पर। कल सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे पीपल्स पद्मावत आकाशवाणी, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। लोक संगीत आप सुनेंगे कल सुबह 10:35 पर। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम होगा कल दिन 11:00। नन्हे मुन्ने बच्चे सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम बाल मंडल कल 12:30 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे कल 1:15 पर। सैनिक भाइयों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए होगा कल 2:30 पर। और फिल्म संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे कलाकार कल 4:30 पर। हमारे कलाकार हैं अभिनेता नसरुद्दीन शाह। श्रोताओं, यदि जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के देहरादून केंद्र को FM 100.5 MHz पर। शाम के 5:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे युवाणी।

0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों. आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी. मैं हूं आपके दोस्त और होस्ट आयुषी भट्ट, और मेरे साथ हैं.
1: नमस्कार, मैं हूँ ऋतु कोटनाला. दोस्तों, उत्तराखंड और आसपास के कई पहाड़ी राज्यों में बारिश ने दस्तक दे दी है. अब इतनी गर्मी के बाद मुझे मज़ा तो आ रहा है और सब कुछ बहुत ही मैजिकल भी हो गया है.
0: बिल्कुल ऋतु, दैट्स ट्रू. लेकिन बारिश के साथ साथ छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे अचानक मौसम खराब हो जाना, पानी भरना, रोड ब्लॉक्स हो जाना, बीमार हो जाना. तो ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि इस बारिश को थोड़ा सेफली इन्जॉय किया जाए. तो घर से निकलने से पहले दोस्तों वेदर अपडेट्स ज़रूर ले लेना.
1: हाँ, राइट. और रेनकोट और छाता अपने पास ज़रूर रखें. ऐसे मौसम में जर्म्स थोड़े जल्दी फैलते हैं, तो सैनिटाइज़र रखें बारिश में भीगने से बचे, और ज़रूरी ना हो तो घर पर ही इस मौसम को एंजॉय करें.
0: और एंजॉय की बात कर ही दिए ऋतु, तो चलिए कार्यक्रम

0: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
1: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
2: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
1: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: ऋतु, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि हम दिन भर में ना जाने कितनी बातें सुनते हैं, लेकिन सच में कितनी बातों को ध्यान से सुनते हैं?
4: बिल्कुल, आजकल हर किसी के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है आयुषी,
3: लेकिन
4: सुनने का जो पेशेंस है वो शायद पहले से कम हो गया है। कई बार सामने वाला अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता और हम जवाब पहले ही तैयार कर लेते हैं।
3: बिल्कुल सही कहा, जबकि किसी की बात ध्यान से सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है। इससे ना सिर्फ रिश्ते मजबूत रहते हैं बल्कि कई बार गलत फहमियाँ भी अपने आप ही दूर हो जाती हैं।
4: हाँ, और ये सिर्फ लोगों की बात सुनने तक ही सीमित नहीं है। कभी सुबह पक्षियों की आवाज़, बारिश की बूंदें या फिर हवा की सरसराहट को भी अगर आप ध्यान से सुनिए तो मन अपने आप शांत महसूस करता है।
3: शायद यही वजह है कि आज वर्ल्ड लिसनिंग डे हमें याद दिलाता है कि सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं बल्कि मन से जुड़ने का भी एक तरीका होता है।
4: बिल्कुल बिल्कुल, जब हम ध्यान से सुनते हैं ना तो हम सिर्फ शब्दों को नहीं सुनते बल्कि सामने वाले की भावनाओं को भी, उसकी फीलिंग्स को समझने लगते हैं। यही आदत हमें एक बेहतर दोस्त, एक बेहतर स्टूडेंट और एक बेहतर इंसान बनाती है।
3: और ऋतु,

0: मुझे लगता है कि सुनने की आदत सिर्फ रिश्तों में ही नहीं बल्कि सीखने में भी बहुत मदद करती है। जब हम सचमुच ध्यान से सुनते हैं तो कई बार ऐसी बातें समझ में आ जाती हैं जो सिर्फ पढ़ने से शायद समझ ना आए।
1: हाँ ऋषि, और इसीलिए तो हमारे टीचर्स हमेशा बोलती थी ना कि ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। और
0: बिल्कुल
1: आज की तेज़ रफ्तार लाइफ में हम हर समय किसी न किसी स्क्रीन से जुड़े रहते हैं। ऐसे में कभी थोड़ा थोड़ा रुक कर अपने आसपास की आवाज़ों को सुनना ज़रूरी है। इससे मन भी शांत होता है और हमारी सोच भी साफ होती है।
0: ये तो बिल्कुल सच है। सुनना एक ऐसी आदत है जो बिना किसी खर्च के हमें बेहतर इंसान बना सकती है। बस ज़रूरत है थोड़ा धैर्य रखने की और सामने वाले को अपनी बात पूरी कहने का मौका देने की।
1: और शायद यही छोटी सी आदत हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी पढ़ाई और हमारे काम, हमारे व्यक्तित्व को एक तरह से सकारात्मक बना सकती है।
0: तो दोस्तों, जब बात लिसनिंग की हो और हम आपको कोई बेहतरीन सा गीत ना सुनाए, ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों, है ना? तो
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
0: इसीलिए आइए सुनते हैं वजीर फिल्म से श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज़ में ये खूबसूरत सा ट्रैक।

0: दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चीज़ की जिसका नाम सुनते ही कई लोगों को स्ट्रिक्ट टीचर या सुबह 5 बजे का अलार्म याद आ जाता है।
1: लेकिन देखिए, आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ डिसिप्लिन यानी अनुशासन नहीं है, उससे मिलने वाली सफलता भी है। सिर्फ समय पर उठने या लाइन में चलने तक अनुशासन सीमित नहीं है, है ना दोस्तों?
0: बिल्कुल, वाह। और सच कहें तो हम सबके पास कोई ना कोई लक्ष्य होता है। किसी को सरकारी नौकरी चाहिए होती है, कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई फिट होना चाहता है, तो कोई सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाना चाहता है।
1: बिल्कुल, लेकिन मज़ेदार बात तो यही है आयुषी कि सपना तो सभी देखते हैं, पर उसे पूरा वो करता है जो रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। क्योंकि सपने और सफलता के बीच जो सबसे मजबूत कड़ी है वो है अनुशासन यानी डिसिप्लिन।
0: बिल्कुल, आजकल मोटिवेशन वाले वीडियो देखने में तो सबको मजा आता है। एक वीडियो देखकर लगता है कि बस अब तो जिंदगी बदल दूंगा।
1: और अगले ही दिन सुबह अलार्म बजते ही बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और।
0: यही तो फर्क है मोटिवेशन और डिसिप्लिन में। मोटिवेशन कुछ घंटों का जोश देता है, लेकिन अनुशासन हर दिन काम करने की आदत देता है।
1: बिल्कुल, अब मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, दोनों को ही मैराथन दौड़ना है। अब पहला दोस्त अगर हर दिन कहता है कि जब मूड बनेगा तब दौड़ूंगा, लेकिन दूसरा सिर्फ 30 मिनट दौड़ता है चाहे उसका मन हो या ना हो।
0: कुछ महीनों बाद पहला दोस्त अभी भी प्लान बना रहा होगा, वहीं दूसरा दोस्त शायद फिनिश लाइन पार कर चुका होगा। यही यानी सफलता टैलेंट से पहले अनुशासन को सलाम करती है दोस्तों।
1: वो तो है, और ये सिर्फ खेल की बात नहीं है, पढ़ाई हो, नौकरी हो, बिजनेस हो या फिर रिलेशनशिप, हर जगह डिसिप्लिन ज़रूरी है।
0: रिश्ते में भी समय देना, वादे निभाना, सामने वाले का सम्मान करना, ये भी तो अनुशासन का ही तरीका है, क्यों, है ना?
1: ये भी एक अलग पर्सपेक्टिव है, राइट राइट।
0: और एक और बात, आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो है डिस्ट्रैक्शन।
1: बिल्कुल, अब पढ़ने बैठो तो मोबाइल याद आ जाता है, मोबाइल खोलो तो रील्स, एक रील से दूसरी रील, और फिर देखते देखते पता चलता है कि ये जो 5 मिनट थे ना, ये 1 घंटे में बदल गए हैं।
0: और फिर शाम को कहते हैं आज टाइम ही नहीं मिला। असल में दोस्तों समय की कमी नहीं होती, कमी होती है डिसिप्लिन की।
1: राइट आयुषी, देखिए सफल लोग जो होते हैं वो इसलिए सफल नहीं होते कि उनके पास 30 घंटे दिन में होते हैं, उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं जो हम सभी के पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो उन घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं।
0: और डिसिप्लिन का मतलब ये भी नहीं कि जिंदगी में कोई मजा ही ना हो, इसका मतलब है सही समय पर सही काम करना।
1: यानी पहले जिम्मेदारी फिर मस्ती। और अगर आप अपने लक्ष्य के लिए रोज़ थोड़ा थोड़ा सभी समय निकाल दे तो धीरे धीरे वही आपकी जो छोटी कोशिशें हैं वही आपको बड़ी अचीवमेंट्स देंगी।
0: और ऋतु एक कहावत भी है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसी तरह रोज़ रोज़ की छोटी छोटी अच्छी आदतें मिलकर सफलता की कहानी लिखती हैं।
1: क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए एक ही बड़ी छलांग नहीं बल्कि हजारों छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं।
0: और उन कदमों को लगातार उठाते रहने का नाम ही डिसिप्लिन है। और आखिर में एक खूबसूरत सी पंक्ति याद आ रही है, लक्ष्य ऊंचे रखना अच्छी बात है, लेकिन उन तक पहुंचने का रास्ता अनुशासन ही बनाता है।
1: बिल्कुल, इसी उम्मीद के साथ कि आज हम सब अपने सपनों की ओर एक छोटा लेकिन पक्का कदम ज़रूर बढ़ाएंगे, प्ले करते हैं आपके लिए आज का ये ट्रैक जिसे हमने लिया है फिल्म सुल्तान से और इसे गाया है सुखविंदर सिंह ने।

0: रितु, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि हम सब जिंदगी में कुछ अच्छा करना तो चाहते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले ही बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं? कभी समय का इंतजार करते हैं, कभी सही मौके का वेट करते हैं, और इसी बीच कई बार शुरुआत हो ही नहीं पाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल आयुषी, ये मुझे ही नहीं, मुझे लगता है हमारे काफ़ी सारे लिसनर्स को भी लगता होगा। और मज़ेदार बात ये है कि जब बाद में पीछे मुड़कर हम देखते हैं ना, तो लगता है कि अगर उसी समय कोई छोटा सा स्टेप उठा ही लिया होता तो आज शायद काफ़ी आगे होते। इसीलिए शुरुआत मेरे हिसाब से बड़ी नहीं पर सही होनी चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा। और मुझे लगता है कि जिंदगी में बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, वो तो धीरे धीरे हमारी रोज की आदतों से ही बनता है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है।
1: हाँ, जैसे रोज़ रोज़ थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान देना, टाइम का ध्यान रखना, या किसी काम को टालने के बजाय उस दिन पूरा कर देना। अब देखने में छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन धीरे धीरे यही हमारी आइडेंटिटी बन जाती है।
0: और एक और बात भी है कि अच्छी आदतें बनाने से पहले हमें अपनी उन आदतों को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही होती है। जब तक वजह नहीं समझेंगे, बदलाव भी मुश्किल लगेगा।
1: राइट, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है आयुषी कि एक दिन में सब कुछ बदल लिया जाए या बदला जा सकता है। एक एक कदम चलना ज़्यादा आसान होता है दोस्तों, और वही लंबे टाइम तक आपका साथ भी निभाता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और यही छोटी छोटी कोशिशें आगे चलकर हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा भी बन जाती हैं। तो दोस्तों, इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले माहौल को और सकारात्मक और खुशनुमा बनाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। तो आइए सुनते हैं ये गीत, जिसे लिया गया है फिल्म जन्नत 2 से, जिसे आवाज़ दी है राहत फ़तेह अली खान ने।

0: दोस्तों 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी को। हम बने हुए हैं आपके साथ आयुषी और ऋतु। अच्छा, एक बात मुझे हमेशा अच्छी लगती है कि जब कोई इंसान अपने अंदर थोड़ा सा भी बदलाव लाने की कोशिश करता है तो उसका असर सिर्फ उसी तक नहीं रहता, बल्कि उसका व्यवहार, उसकी सोच और उसके आसपास का माहौल भी धीरे धीरे बदलने लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा ऋतु। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि बदलाव हमेशा खुद से शुरू होता है। अगर हम खुद अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं, समय की कद्र करें और सीखना कभी ना छोड़ें, तो उसका अच्छा असर हमारे आसपास भी दिखाई देता है।
0: बिल्कुल, देखिए आज के युवाओं के पास अवसरों की कोई कमी नहीं है, बस ज़रूरत है खुद पर भरोसा रखने की।
1: और सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता दोस्तों, कई बार एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा सबक दे जाती है।
0: सही कहा, मंजिल तक देखिए वही पहुंचते हैं जो बीच रास्ते में आने वाली मुश्किलों को बहाना नहीं बल्कि सीखने का एक चांस मानते हैं।
1: तो कोशिश बस इतनी सी हो कि हर दिन अपने कल से थोड़ा बेहतर बने और छोटे छोटे बदलाव ही आगे चलकर बड़ी उपलब्धियों की नींव रखते हैं। तो आइए
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, अब
0: बिल्कुल।
1: कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते हैं, जिसे लिया गया है फिल्म तमाशा से, जिसे आवाज दी है मोहित चौहान ने।

0: दोस्तों, देखते ही देखते वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आज की ये मुलाकात आपको पसंद आई होगी। यदि आप भी अपने विचार और सुझाव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी द्वारा निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, देहरादून। हमारा पिन कोड है 2480001।
1: और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है youthddn@gmail.com। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर भी अपने सजेशंस भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। आपके सजेशंस का, आपके सुझाव का हमें हमेशा इंतज़ार रहेगा। फिलहाल मुझे यानी ऋतु गोटनाला को
0: और मुझे यानी आयुषी को दीजिए इजाज़त।
1: आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाणी FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के देहरादून केंद्र को। श्रोताओं, शाम के 5:45 हो रहे हैं, लीजिए सुनिए ग्राम जगत।

श्रोताओं अभी आप सुनना चाहे हेमा करासी का स्वर मायु सुंदर से गड़बड़ी लोकगीत। और श्रोताओं जिनकी आज की तारीख 18 जुलाई और आज का दिन दक्षिण अफ्रीका का पूर्व राष्ट्रपति और रंगभेद विरोधी क्रांतिकारी नेता नेल्सन मंडेला जी की हम जयंती मनाना छा। उनका सम्मान और मानवता का प्रति उनका योगदान थे याद करण खूण संयुक्त राष्ट्र द्वारा आज का दिन थे नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस का रूप में मनाए जादू छ। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद का विरुद्ध लंबी लड़ाई लड़दा वे 27 साल जेल में बीते। रंगभेद विरोधी क्रांतिकारी का रूप में उनको मिशन सभी जननों बैखों और नांतिनों खुण समानता और स्वतंत्रता स्थापित करण छो। नेल्सन मंडेला का प्रयास हम थे यू बतादा छिन कि न्याय शांति और मानवाधिकारों खुण आवाज उठाण या लड़ कभी भी व्यर्थ नहीं जान्दु छे। खास करी के श्रोताओं जो हमारा नई छोली का नानतीन छिन वो लोग आजकल हर छोटी छोटी बात में एक बड़ू कदम उठा देना छिन या फिर जीवन में बहुत

0: जल्दी निराशा का शिकार वे जाना चिन। तो उस सभी उत है नेल्सन मंडेला का जीवन से प्रेरणा लेन चाणी चे कि उम्मीद और हौसला हम थे कभी भी नहीं खोण चाणु चे। तो आज इन क्रांतिकारी थे हम नमन करना उनकी जयंती पर और अब कार्यक्रम में कुछ रंत रहे बार।
1: रविंद्र ये बताओ सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
2: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
1: सच में क्या क्या है उसमें?
2: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
3: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
4: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: रविवारों के बाद स्वागत है आप सभी श्रोताओं को कार्यक्रम चनुच ग्राम जगत। श्रोताओं अब आप सभी थे लेके चल रहा स्टूडियो से भय देवलसारी जौनपुर टिहरी गढ़वाल का क्षेत्र में उखा का स्थानीय लोगों से बातचीत करना चिन्ह विनय ध्यानी जी और सुंदर से एक कार्यक्रम चे आवाज सुना ये कार्यक्रम प्रस्तुत करना चिन्ह विनय ध्यानी।

0: आज स्टूडियो से बाहर हम छुआ देवलसारी और अभी हम मंदिर तक नहीं पहुंचा लेकिन सुंदर बाट घाट च और यक तमाम जो श्रद्धालु छन ये तमाम आस्था लेके आंदे ने ये देवलसारी में जबकि बहुत बड़ा बड़ा यक देवदार का वृक्ष छन और सुंदर इन लगणु कि जन पौड़ी को ताड़केश्वर च तन्न यू क्षेत्र च। आवा कुछ श्रद्धालुओं से बात करता। नमस्कार, आप अपनो क्या छ?
1: मेरा नाम भगवती जोशी छ।
0: जोशी कनलाग देवलसारी
1: बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान बोल सकता और यख जो छ देवदार की जो ठंडी ठंडी हवा छा बहुत ही सुंदर और हृदय बिल्कुल आनंदित वाणो छ।
0: कब बैठे ना आप?
1: हम कन्नी सौड़ के छ, कन्नी सौड़ कटकी तुम्हारा गाँव छा, टीजी को लास्ट गाँव छा हमार जी। वो पहले बार में खाया और बहुत ही सुंदर, मतलब अगर हम बोले कि प्रकृति की सुंदरता छा यख, बहुत ही जबरदस्त। और जो कोणेश्वर महादेव को जो मंदिर छा बहुत ही पौराणिक, बहुत ही पुराण छ। तो ये माँ जो लोगों की आस्था छा, लोगों की श्रद्धा छा, ये हमारी संस्कृति सभ्यता भी मतलब ये माँ संरक्षित छा और लोग जो आने लगे हैं एक मनमा एक भाव एक विचार एक श्रद्धा और एक आस्था और एक ईश्वर के प्रति जो प्रेम छा त्यां खातिर होना और हमें यहाँ बहुत अच्छी लगी। हम यहीं बार पहली बार आई लेकिन हम कोशिश कर लें कि लगातार जो है गर्मियों की छुट्टी में एक हमेशा।
0: बहुत सुंदर, लेकिन इन कन है कि आप टिहरी का छे और पहल दाना छे?
1: हाँ, तो हमारे टिहरी को लास्ट गाँव है और ओणा को कभी संजोग नहीं हुए।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, तो यही बार हम शादी में आया।
0: अच्छा,
1: शादी छा एक ओंतड़।
0: अच्छा
1: जी जी,
0: बाकी दगड़े भी देखे ना बराती खूब।
1: हाँ,
0: ये कुको लोग छे ना?
1: ये हमारा पंडित जी छा और सभी पंडित जी हमारा।
0: हाँ, पंडित जी बोला वो तो देखना है ना। तो चलो पंडित जी से बात कर ला। नमस्कार, आप अपनो क्या छे?
2: मेरा नाम राकेश पैनुल छे।
0: आप पैनुल जी, आप बताओ दे कि कन लागा आप था एक
2: बहुत सुंदर लगी छे और ये देवदार की सुंदर सुंदर हवा मा छे और बहुत अच्छो लगी और यहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध और बहुत अच्छो छे।
0: जो बनो छे कि दोबारा आऊंला एक?
2: जरूर जी, मौका मिलेगा जरूर आऊंला।
0: आप अपनो क्या छे? नमस्कार।
3: नमस्कार जी, मेरा नाम अमित जोशी छे। बहुत सुंदर वातावरण छ, देवदार का अच्छा अच्छा पेड़, शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण छ, बहुत अच्छा देखना है, बहुत बढ़िया छ।
0: अच्छा, एक बात आपन देखी कि जिक्के लगे मैं भी देखना चाहूँ बाट हिटी का आना चाहूँ जो इको टूरिज्म की बात छ ना वो एक लगनी छ, कखी कोई गंदगी नहीं छे।
3: बहुत बिल्कुल बहुत सुंदर स्वच्छ रखे, जो भी यात्री होता सब अपने लिए जो भी गंदगी छ साफ सफाई विशेष ध्यान रखता क्योंकि यहाँ बहुत सुंदर वातावरण छ, आनंद छ। बिल्कुल बिल्कुल एक लग रही है हम वास्तव में हिमालय की तरफ चढ़ने लगे, बहुत सुंदर छ।
0: इतना कुछ बोलना चाहना छन लेकिन दूर बट बना छन। हाँ, नमस्कार, आप अपना क्या?
4: मेरा नाम हरीश पैनुली है।
0: आप पैनुली जी, ये बताओ दी क्या बना छा आप? जोर जोर से दे लगा है।
4: जो और जगह टूरिस्ट एरिया छा तो सी थोड़ा अलग, मतलब साफ सफाई को यहाँ पे बहुत ध्यान दिनु छा
0: दिखिनु छ वही हम बना छु वहाँ की कोई भी इन पर्यटक नहीं छे जो की गंदगी,
4: मतलब प्यार प्रेम भावना जो उनकी अच्छी था।
0: चला हम तो हिटला, आप लोग वापसी का मार्ग पर छन और हम मंदिर का मार्ग पर छो, बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। लगभग 1.5 किलोमीटर के बाद हम पहुंच गए ये बत देवलसारी का उणेश्वर महादेव का मंदिर। सुंदर प्राकृतिक छटा का बीच में यू मंदिर जो कि जने जान पूरा पहाड़ मा और देश दुनिया मा। ये बत हालांकि एक माँ कपाट बन छन लेकिन श्रद्धालु दूर दूर बटके यक आना छन सिर्फ अपन मुंड नवाण खुणी कि हे उणेश्वर महादेव साहब हो जाए हम पर। देवदार की जो एक सुंदर बथों चलनु छो वैसे यकक माहौल बहुत ही आकर्षक बननु छो। मंदिर में हम पहुंचा और हमने ये मंदिर को महात्म्य और बाकी और धाणी पर बात कर दा। नमस्कार, आप अपनो क्या छे?
5: मेनू सोमवारी नोटियाल छे।
0: नोटियाल जी बताओ दी, बहुत सुंदर रमणीक जगह में यो मंदिर छ, एक इतिहास क्या छ और आस्था क्या छ?
5: इतिहास से ये बता दें कि पहले हमारे गाँव वालों की खेती होती थे और धान की उतनी, अभी आप देख लेते नहर को बटो देख लगे पानी को बड़ो स्रोत। तो बताने की कोई महात्मा आए थे कोई जो हमारा रहे वाला जो है त्यों से रहने की जगह मांगी कि भाई थोड़ा सा जगह हम दे दो और थोड़ा मैं रहो चाहूँ दो। तो त्यून बोली भाई हमारे देख जो धान की चवारी लगाई, चवारी धान थी उन्हें तबरे।
0: अच्छा।
5: तो देख हमारी धान की चवारी लगाई और कख तो एक जगह तो छे नहीं हमारे फौरी जाकर धान रोपी, तभी मैं थोड़ा जगह छे नहीं, मैं कोई ज्यादा थोड़ी नहीं चाहिए, मैंने थोड़ी आज रात विश्राम करूँ फिर मैं निकल जाऊँगा गाड़ी से केदारखंड की खा करके मैं निकल लूँ। तभी मेरी कणी भी नहीं मिल सकती, इच्छी भी नहीं मिल सकती। तो तैन जो है बता दें कि महात्मा ने श्राप देने की जी चवारी जो तुम्हारी जो लगाई छ इनकी दीवारी हो जाए और तब से दीवार जो उड़ना शुरू है और होंदा होंदा जो है ये सब देवदार को जंगल के रूप में विद्यमान हो गया।
0: कुल मिला के अगर हम बात करा कि महादेव का रूप में एक कोणेश्वर महादेव छे, तो एक जो परंपराएं छन, विधि विधान छन, कब एक कपाट कुल दिन क्या क्या अनुष्ठान होंगे?
5: एक तक भादों को मैंने हमारे 9 दिन को यज्ञ होंगे, सारे गांव को लोग एक हरियाली डाल और 9 दिन बहुत बढ़िया एक यज्ञ होंगे, शाम को काल रात रहा फिर हरियाली काट दी और हजारों के श्रद्धालु जो लोग आऊँ देखा। और फिर बैसा का मैंने भी जो है जबरे हमारे गेहूँ को होंगे पूजा, उस टाइम भी कपाट खोल दें तबरे पूजा पाठ होंगे।
0: क्या मन देना आपके देवलसारी माँ कक्क बटे श्रद्धालु आंदे और क्या मनोकामना होंगे?
5: देवलसारी में समझो कि लगभग जो है भगवान शिव के दरबार में पहले तो काफ़ी अब तो काफ़ी देर दून बिटिन सब जब बहुत दूर बिटिन आना और आप इतवार शनिवार देखते काफ़ी भीड़ रहती बताऊँगा कि जो आदमी जो है श्रद्धा जो है मांग दो निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूर्ण होती।
0: यख अगर व्यवस्थाओं की बात करें या मंदिर समिति छह कोई या यख के जो ग्राम पंचायत वही यख सब ताम झाम देखने व्यवस्था को देखो
5: यख ग्राम पंचायत है पुजारली बंगशील की ये सारी व्यवस्था देखते हैं सांस सफाई से लेके और सारी यख की व्यवस्थाएं देखते हैं।
0: अगर ये इको टूरिज्म था हम का के देखना चाहूँ तो नोटियाल जी मैंने पूरा रास्ता में देखे कि सच में यख जो विलेज टूरिज्म च और इको टूरिज्म च वेका साक्षात दर्शन होना चाहिए नमता, तो ये माँ गाँव वालों की भूमिका च या जो श्रद्धालु यख आना चाहिए वो भी सोचना चाहिए न भाई ये जो पर्यावरण चाहिए तो प्रदूषित नहीं होने देना।
5: गाँव वालों की भूमिका तो निश्चित रूप से नहीं, लेकिन थोड़ा जो पर्यटक भी आना कुछ जो है 20-30% जरूर सोचते कि हम यख साफ सुथरा रखो और अगर साफ सुथरा तो निश्चित रूप से बहुत नज़दीक हमारे स्टेशन से बहुत बड़ो ट्रैक थे 9,500 फीट हाइट पर रखा ट्रैक लुनसुरु गोड़िया पावा नागटी बाद 10,000 शिवालिक जो रेंज की सबसे बड़ी चोटी है और पर्यटक भी काफ़ी थोड़ा जागरूक हुए और थोड़ा दिक्कत होनी चाहिए कि भाई बेड़े में जो सड़क जो थतुड़न जब रे थतुड़न सड़क उबक मोड़ दो तब रे पर्यटक को मुख थोड़ा सा ना हो जान दो कि क्यों बोलो भैया सड़क ठीक नहीं। और अभी मैं एक बजे निकल रहा हूँ एक शादी में 2-4 लोग मिली ये हर बार बोले यार क्या बात सड़क क्यों नहीं बनाऊँ तुम सरकार से बोध नहीं के सड़क की थोड़ा समस्या ठीक हो जाओ तो मत समझ दो इको टूरिज्म को सपना सरकार को मुख्यमंत्री जी को सपना है निश्चित रूप से साकार हो लो।
0: हम भी देखना चाहें कि ये सुंदर रमणीक और पर्यटक स्थल तक पहुँचने में थोड़े खैरी चाहिए अगर ये खैरी दूर हो जा यात्री सुविधा पर्यटक सुविधाएं विकसित हो जाए तो ये का अलावा जन के आप बताना चाहिए और भी बहुत सारा पर्यटक स्थल छन ट्रैक छन उन पर हम ऐसे जा सकता तो और विस्तार से आप बता सकते हैं कि यक बटे और कख हम पर्यटक उठा ले जा सकते।
5: आप देख लो 9 किलोमीटर एक ट्रैक से लुनसु गोड़ियापा ताकि हाइट से 9,500 फीट आप जून का मैं भी 100 मतलब पूरे जंगल ही जंगल जान से और विभिन्न जगह पानी का धारा स्रोत बने छे पर्यटक बड़ा लुफ्त उठा दो आनंद उठा दो हम देखिए पैदा हुई है कि सब कुछ करी जब हम यख अच्छो लोग दो तो जब पर्यटक आंदो तो वाकई में जो है बहुत भाव विहोर हो जान दो। और यख नागटी बच्चा IAS अकेडमी वाले ट्रैक कर दो जितना भी IAS का बच्चा जो है ट्रेनिंग लेना लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी वाला ये भी आंदा एक दिन ये भी ट्रैक कर दा और अच्छा अच्छा नामी ग्राम स्कूल दून स्कूल हो उड़ी स्टॉक स्कूल है सभी लोग यख ट्रैक कर दा। बस ये थोड़ी सी जो समस्या क्षेत्र की सड़क बेड़न को जाओ तो मैं समझ दूं कि बहुत अच्छा पर्यटक स्थल विकसित हो सकता है।
0: देवलसारी तो हम ये रूप में भी जानता कि यख जो तितलियां छन बटरफ्लाई जो होता है हम बोलदा और बर्ड वाचिंग का खातिर बड़ू फेमस छ आखिर लोग आंदा छन अध्ययन का खातिर बर्ड वाचिंग का खातिर तितलियों पर शोध का खातिर।
5: बिल्कुल आंदा एक तितली मौत

0: जून अभी मई का महीने दुई से और 7 मई तक हो तितली महोत्सव हर साल होंदन
1: अच्छा
0: मई जून में। काफ़ी लोग आंदा तितली और काफ़ी लोग देखता कि भाई एक से एक शोध, हमें तो पता भी नहीं लेकिन जो शोधार्थ थे अब हम पता लोगों ने विभिन्न प्रकार की प्रजाति तितलियों की विभिन्न प्रकार की और शायद ये जो है बहुत ही विभिन्न प्रकार की। अभी एक लड़का हमारा अरुण गौड है वो इस पर रिसर्च कर लूँ
1: अच्छा।
0: और तहकुब काफ़ी प्रयास से कि इस ढंग से कर लूँ।
1: आस्था का दगड़ी यख पर्यटन और वर्ड वॉचिंग और तितलियों पर अध्ययन को ही केंद्र च देवल सारे आने वाले समय में यख अगर पर्यटक सुविधाएं और सरकार को ध्यान आलो तो पक्की बात ची कि यो जो बहुत नज़दीक च राजधानी बटे बहुत ज़्यादा दूर नहीं च लेकिन यो एक क्षेत्र अपन आप में एक अलग पहचान और पर्यटन मानचित्र में देश ही ना बल्कि दुनिया में एक अलग नौ कमाल। देवलसारी का ये थान मा हम छुआ जखमी ओणेश्वर महादेव को मंदिर च और हम काफ़ी लोगों से बातचीत करना छुआ यख एक स्थानीय जवान दगड़े च हमार दगड़ उनसे बात करदा कि ये बतू हमार दगड़ देवलसारी मा छन। नमस्कार आप अपनो क्या छे?
2: मेरु नो आदित्य नोटियाल।
1: आदित्य आदित्य आप ही बताएं कि यख देवलसारी आप कौन जान तो लगे रहें दो?
2: हाँ जी हाँ जी
1: खूब है
2: खूब।
1: अच्छा गाँव को
2: गाँव बंगसिल छ मेरे
1: बंगसिल जो समझ में देखियो हम तो।
2: हाँ जी हाँ जी।
1: अच्छा तो बंगसिल का लोग यक घूमना घूमना देने या आस्था च क्या समझ देना आप?
2: हमारे तो सबसे पहले तो आस्था हो और हम तो रही एक बेटिन बचपन बेटिन हमारो जो यू जंगल है हम अपने गांव बेटिन एक जो घोड़ा भैंस और लकड़ी लुकड़ी हम एक ही के आंदा। हाँ जी
1: हाका कुक धारी छन आप ये जंगल का?
2: हाँ जी हाँ जी।
1: अच्छा देवदार का इतना सगत तो डाला छन भल लगता आपने एक?
2: हाँ भय तो कुछ नहीं लगता हम तो डाव का निशानी से आंदा जब हम गौड़ चरान आंदा हमारे तो कोई नहीं है कोई डर नहीं है।
1: अच्छा तब दुई दायक आयोजन हो ना सगत आयोजन वो बाबत बताएं आप तो कुछ याद छे क्या होंगे?
2: यख जो सबसे पहले होंगे सितंबर में काली रात्रा होंगी तई जा तो सब कोई सेंध नहीं है।
1: अच्छा।
2: कोई नहीं सेंध तब ढोल डमाऊ सारा गाँव बेटे आंदा सबसे मेन तो बंगसिल और पुजाल्डी को ये दुई गाँव आंदा और फिर रात भर मन्नाड़ो लग दे।
1: अच्छा उन्हें सर की जो डोली वो कक जान फिर
2: आज सबसे पहले दुई गांव हरियाली पड़ दी मतलब दुई गांव का पड़ दी एक पुजालडी एक बंगसिला या पुजालडी वहाँ निकाल तो सबसे पहले पुजालडी जाली फिर पुजालडी ठीक जाले फिर ठीकन तेवा फिर तेवन बंगसिल फिर लास्ट में बंगसिल गांव वहाँ भंडारी देला।
1: अच्छा तो जब एक बड़ो आयोजन हो तब खूब कौतिक हो जान दोलो?
2: बहुत ज़्यादा भीड़ हो जान हमारे आस पास एक ही का लोग आंदा गाँव का और जो कोई दिल्ली हो गाँव का लोग कोई देहरादून कोई कखी होंगे सब लोग तेजन शामिल हो जान कट्ठ हो जान।
1: अच्छा आदित्य आप पर्यटन से भी जुड़े छन अब आप ही बताओ कि पर्यटकों का नज़र से जो यख में यो देवलसारी को मंदिर छ या ये जो पूर्व वातावरण छ कई रूप में यख पर्यटक आंदे?
2: सबसे पहले तो अब का जो पर्यटक सबसे पहले तो ये देखता कि कई जगह सफाई है फिर ये तक जाना कुछ लोग ये होंगे कि ध्यान रखते कि भाई कूड़ा कचरा नहीं कर दो हम सबसे पहले जो लोग आंदा हम तो सबसे पहले समझाना कि भाई तुम जाना तो सबसे पहले अपने कूड़ा भी लाए चलो अपने कूड़ा लाए खाए पी और फिर अपने ही लेके जानो यख ना कि यख छोड़नो हम बहुत लोगों को बोलिए और कुछ कुछ लोग ये होंगे कि आंदा व कोई कोई लोग हम समझाए हम ये हमारो संडे वन सफाई होंगे यख भी।
1: अच्छा।
2: हाँ आंदा वो सारा गांव का बच्चा आंदा
1: वाह
2: फिर हम कुछ लोगों के लिए बात करे कुछ लोग समझते गए कुछ लोग ये तक जो दादागिरी दिखाए कि भाई हम हुआ हुआ हम एक बड़ा लोग कोई नहीं तुम बैरा को बड़ा लोग पर एक तो हम यू हमारो घर यू हमारो इलाको हम तुम समझाए कि नहीं कन्नू कुछ लोग तो होंगे कि एक आए का एक ही कोड़ा फेंक दें बस हमारे यू कि भाई तुम आओ श्रद्धा भक्ति से यख ना कोई युवा घूमने को ना यहाँ को पार्टी करने को होंगे यख बिल्कुल घूमना आओ आप शांति में रहो और बिल्कुल शांति यख ये कखी तुम्हें बहरा नहीं मिलने।
1: अच्छा जो बहरा का लोग हैं ना खास करके अगर हम बात करें पर्यटकों की तो आप क्या समझते हैं कि कख कख पटे ज़्यादातर लोग हैं?
2: सबसे पहले तो जन की देहरादून

0: का खातिर लोग यखन देन।
1: हाँ जी हाँ जी
0: तो जू यखा का जवान दगड़ा छिन ऊथे पर्यटन से रोजगार मिलनु छ कि ना?
1: हाँ जी, मैं तो अभी 12वीं पढ़ा और मई 2016 बिटिन जुड़ू, 2013 बिटिन होम स्टे बनयू यख। मई बहुत जब लोग आंदा पर्यटक लोग बहुत से हम लोग मेरा जो ये अरुण गौड़ मामा जी लगदा, और इतन जब कोई ग्रुप लोग आंदा कोई आंदा तो हम लोगों भी रोजगार देंदा। हमारो सबसे पहले हमारा शहद को भी है, और जो हमारे गांव की लोग औरत हम आदमी लोगों ने बुलाना खाना बनाना खाना। हाँ जी हम लोग औरत लोगों बुलाते तो फिर त्यों भी रोजगार मिलो, क्योंकि अब आदमी लोग ही बाहर चली गए, त्यों भी थोड़ी बहुत कुछ रोजगार मिलो। फिर यहाँ कोई खान बनाना का आंदा, कोई भांडा धोना, कोई कुछ करना, और अपने यू भी आते हो कोई जन खेती बाड़ी होगी तो खेती बाड़ी पर लहसुन प्याज ये वगैरह होगी तो ये लाइक और फिर लोगों को बेच देने।
0: आदित्य ने बहुत सुंदर बताया कि ग्रामीण पर्यटन थे एक नई दिशा देणु च देवलसारी को क्षेत्र, जक आस्था और विश्वास को यु केंद्र च, जक ओणेश्वर महादेव माँ लोग अपने आस्था लेकर देन, वक्खी ग्रामीण पर्यटन और जो पारिस्थितिकीय पर्यटन च वही था भी नई दिशा यख मिल।

0: तेरी पूजा लाओंद देवा पुजारी के पुजारी जातिरा बीच नहीं गो देवा सैनी देऊ सारी।
1: वाह, बहुत सुंदर। ये जो अणेश्वर देव जी वो
0: जी
1: एक स्तुति इखमा हमारे जो यख का लोक गायक छन उन रखी, और सचमा यख का गीत यख की बात आप तक पहुंचने चाहिए ये कार्यक्रम का माध्यम से। आप अपनों क्या छे
0: बिहारी लाल
1: बिहारी लाल जी जुगराज रहे हैं, बहुत
0: जी
1: सुंदर गीत आपन रखे,
0: जी
1: और ओणेश्वर महादेव को जो पूर्व इतिहास छो ना वो
0: जी
1: भी ये गीतों में शामिल छे,
0: ये शामिल करें
1: है ना,
0: गीतों
1: बहुत
0: को शामिल
1: सुंदर।
0: करें।
1: तो आप ये स्थान का बारे में, ये थान का बारे में क्या बोल दें?
0: जी मतलब ये स्थान के बारे में हमने मतलब सुनी कि सबसे पहले यख खेतीबाड़ी थी होंगी और यख यख एक प्रॉपर्टी थी अपनी पर्सनल ना, तो फिर मतलब भगवान भोलेनाथ जी यख एक बाबा जी के रूप में जाई और तो उन थोड़ी सी बोली कि मैं जगह दे दियो एक एक मैं कुटिया बनानी, तो ये थोड़ा गमंडी लोग था प्रॉपर्टी वाला था तो उन ज़्यादा तो उन्होंने बोली कि कोई जगह नहीं तुम कहीं और तुम अखन चल जाओ। तो फिर भगवान जी ने मतलब वो दिन शराब की बोझ से भराएं कि अख चवारी मतलब धान होली या दीवार होली, हाँ जी तो मतलब तीन पारी मेरे गीत बनाई और सुबह का आए तो चवारी खत्म थी और दीवार उगी गए और
1: क्या
0: सबसे
1: बात,
0: मतलब यह जमीन पंजर होगी और दीवार होगी है।
1: देवदार को यो घणु जंगल छ और जग की धान उगदा छा वक देवदार छ, है ना, ये सब
0: भोलेनाथ
1: भगवान की माया छ, है ना।
0: माया
1: आप ही बताएं कि जब यक बड़ा अनुष्ठान होने धार्मिक कर्मकांड होने या
0: जी,
1: डोली की यात्रा हो, तब वे बता आप अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम रख दचन।
0: हाँ तब हम मतलब पूरे गांव का आंदो तो मतलब ढोल नगाड़े के साथ अपनी तांदी गीत लग दी रिवाज के हिसाब से, सभी औरतें भी एक साइड और जेंट्स लोग एक साइड, तब जाकर ढोल नगाड़े पर गीत लगाना और मतलब म्यूजिक नहीं सिंपल ढोल नगाड़े रण सिंह,
1: अच्छा,
0: हाँ जी
1: पारंपरिक वाद्यों का
0: पारंपरिक
1: दगड़ी।
0: जी रीति
1: अच्छा, तो
0: रिवाज।
1: एक है कोई गीत छे छे कि जत हम सुन सकदा आपक मुख बटे के जो कि देवल सारी को ये ओणेश्वर को ही जन के आपन पहल गीत सुना,
0: जी
1: एक अलावा है छे कोई पारंपरिक?
0: सैनो गोड़िया।

जय हो देवा और देवलसारी का ये थान बटे की अब हम भी इन कामना का दगड़ी वापस लौटना चाहूँगा कि जख यु थान एक आस्था का रूप में पूजे जान वक पर्यटन की असीम संभावना।

0: छन। अगर पर्यटन विभाग और उत्तराखंड सरकार यख कुछ जरे सी कृपा दृष्टि देखी या कुछ नई सुविधा यख विकसित करी, सड़क यख तक ठीक ठाक पहुंचाए, तो पक्की बात च कि यू क्षेत्र पर्यटन मानचित्र पर एक नई दिशा और दशा बता सकत हम तय। यही कामना का दगड़ी देवलसारी का ये थान बिटकी मैं लौटणु छू अपन स्टूडियो वापस। नमस्कार, विनय धने छोड़ बटे।
1: जी हाँ श्रोताओं, अगर आप भी अपनी दौड़ भाग वाली जिंदगी से जरा सी थौ चाहना चाहना, तो प्रकृति का बीच, स्थानीय संस्कृति और ग्रामीण जीवन को आनंद लेना का वास्ता देवलसारी एक बार जरूर जाया। उत्तराखंड का प्रमुख जैव विविधता वाला क्षेत्रों में से एक देवलसारी बिच, और ये क्षेत्र का बाबत आपन अभी ये कार्यक्रम में जानकारी सुनी, जो कार्यक्रम छ स्टूडियो से बहर और ये कार्यक्रम थे प्रस्तुत करना चाह विनय ध्यानी। अब आप सभी का वास्ता एक संदेश।
0: आप सभी तय हमार तरफ बटे बहुत बहुत बधे। अरे भाई, आप विदेशक दिन अपन बधे अपना शुभ चिंतकों तक, अपना परिजनों तक और अपना प्रियजनों तक। बस अगर आपक जन्मवार च कोई खास दिन च आप बधे दिन जाना छन आकाशवाणी का माध्यम से, तो आप सिर्फ 300 रुपया यानी कम से कम 15 शब्दों का दगड़ी अपनो शुभकामना संदेश आकाशवाणी का माध्यम से पहुँचा सक दिन। तो देर के लगा ना, जब कोई राजकीय या लोक पर्व हो या आपक जन्मवार हो, तो आप बधाई दे सक दिन अपना मित्रवरों थे, अपना प्रियजनों थे। ये का खातिर आप हमारा विज्ञापन अनुभाग से संपर्क कर सकते हैं।
1: जी हाँ, तो ये छह एक जरूरी सूचना आप सभी का वास्ता, और उम्मीद करला कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारा ये कार्यक्रम को हिस्सा बढ़ला और आकाशवाणी का देहरादून केंद्र से जुड़ला। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप जुड़ सकना छा, और चिट्ठी पत्रियों का माध्यम से भी हम आपसे हमेशा दह लगाना छा कि चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com यो हमारो ईमेल को पता छे। ये पता पर आज की जो अपन यू कार्यक्रम सुनी स्टूडियो से बहर, ये का बाबत आप हम तैलिक भेजा। अगर आप देवलसारी गया छा या फिर ना गया छा और जान वाला छा ये स्थल रिकॉर्डिंग थे सुनने का बाद, तो ज़रूर हम तैलिक भेजा। कार्यक्रम 6:50 तक चलू छू, और अब गढ़वाल का बाद आप थे लेके चल दो कुमाऊँ, एक सुंदर सी कुमाऊनी लोकगीत स्वर्च ललित कुमार को।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: श्रोताओं अभी आपन सुनी रैबार, और रैबार से पहले आप सुनना चाह ललित कुमार का स्वर माई सुंदर सी कुमावनी लोकगीत। उम्मीद करना आप थे ये लोकगीत पसंद है होलू, और चिट्ठी पत्रियों के माध्यम से भाई आप हम थे लिख भेजा किले कि कार्यक्रम अभी चनू चु और भूल हमारा जो कार्यक्रम को क्रम हों वो हों आपका अनुरोध में, जिनकि आप सभी होते पता है। लेकिन जो नया श्रोता हम दगड़े जुड़ना छे, जो अभी कार का स्टीरियो में हमते सुनना छे, वो सभी होते हम बताला कि भूल आपको कार्यक्रम को क्रम हमारा हों आपका अनुरोध में, जैमा कि आप अपना पसंद का गीत हम तक लिख भेजदा छे ईमेल का माध्यम से, और वो गीत हम अपना स्टूडियो से आप तक पटांदा छा। लेकिन वे गीता का बोल और गीतांकु नौ आप हम तक जरूर लिख भेजा किले कि एक ही गीत कई सारा गीतांगु न यक बटे गया छिन, तो आपको जो पसंदीदा गीतांग छ वे को नौ वे को गीत आप जरूर लिख भेजा। और इतवारा का दिन भी कार्यक्रम होंदो छो, और जन के आप जानदा छा बिप्यारा का दिन कार्यक्रम को क्रम हमारो जो होंदो छो वो चिट्ठी पत्रियों को होंदो छो, तो इले हम बार बार आप थे ध्यान लगांदा छा कि आप चिट्ठी भेजा और कार्यक्रम की गुणवत्ता आप थे कन लगनी छे कार्यक्रम का बाबत। अगर आप कुछ फेर बदल जाना छा, ये कई बार इन होंदु छो कि हमारा कई सुंदर हम तक ये बोलदा छिन कि हम मिनबल फलणी वार्ता नहीं सुनी वे दिन, मैं कखी चल गई छो या फिर नेटवर्क चल गई छा, कि लेकिन कई लोग हम थे ऐप का माध्यम से भी सुनना छा। तो आप सभी से अनुरोध छ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम तक जुड़ा। एक बार पुनः आप सभी उतें मैं बताणु छो अपड़ू ई मेल को पता chittigramjagat@gmail.com, ये पता पर आप हम थे अपना बात विचार लिख भेज सकता। और कार्यक्रम में आगने हम छुई बतलगौला होम स्टे का बारे में। जी हाँ, होम स्टे जो कि एक इन योजना छ जैसे रोजगार भी मिलू छ, और खास करी कि जो हमारा नई छवाली का नानतीन छिन्ना वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये से जुड़ू और जो पलायन छ वो रुक सकूँ, यहाँ कुने सरकार ने होम स्टे एक योजना लई छ। और आप अगर सोशल मीडिया में आजकल देखा तो लोग जो छिन्ना वो होटलों में रहना ज़्यादा पसंद नहीं करना छिन, लोग उथे चाहणु छ कि प्रकृति का बीच शांत माहौल में वो रवा, और जो स्थानीय उखा को उत्पाद स्थानीय जो चीज़ें छिन और जो प्रकृति का बीच जो शांत सुंदर माहौल जो मिल दो छ, किले कि आजकल भागदौड़ वाली जिंदगी में सब लोग कच्च पच्च लग्या छिन, सुबह ऑफिस फिर घर फिर दुनिया भर का काम, तो जिंदगी हमारी इतना ज़्यादा व्यस्त वेगी कि हम लोग जीण भूल गया। तो यही खातिर प्रकृति का बीच आप लोग आनंद लियावा रवा, और जिनकी एक हरेला पर्व अभी हम मनाना छा, तो हरेला का बाबत भी हम आप थे बुना छा कि जितना से ज़्यादा संख्या में आप डाल बोट लगा सकदा छा उनको संरक्षण कह रहा संवर्धन।

0: કહે રહ્યા, ઓર આણ વાલી જો પીઢી છે વે થે એક સુંદર સ્વચ્છ વાતાવરણ દેવા, કે કે હમેશા હમ લોગ મકાન જુટાણા છા, ગાડી જુટાણા છા, પૈસા જુટાણા છા આપણા આણ વાળી પીઢી કા વાસ્તા, લેકિન ક્યા ઇતના પર્યાપ્ત છે? જી બિલકુલ ભી ના. તો એ વાસ્તે હમ સબ યુથે સોચવું છે કે હમ આપણા નાનદીનો થે એક સુંદર સ્વચ્છ વાતાવરણ દેવા, તાકી અગને આણ વાલી પીઢી ખૂણ ભી હમારી એક જવાબદારી હો કે હા ભાઈ હમ તુમ ઘણે યુર રખ્યું છે. તો વાતાવરણ જીતના હમારું સુંદર હોલું, સ્વચ્છ હોલું, ઉતના હી હમ લોગ ભી સ્વસ્થ રહોલા. તો ઉમ્મીદ છે આપ સભી લોગ હમારા સાથ કાર્યક્રમમાં જોડ્યા હોલા, ઓર મઠું મઠું કરી કે અબ જો ભગત છે ના વો હમતે બતાવણું છે કે ઉત્તરાખંડ કા પ્રાદેશિક સમાચારો કે તરફા આપ જાણવાલા છા હમ, લેકિન વેસે પહેલે દોબારા આપ લોગો થે બોલલા કે ચિઠ્ઠી ગ્રામ જગત @gmail.com યો હમરો ઈમેલ કો પતા છે, યે પતા પર આપ હમ તક અપડા બાત વિચાર જરૂર પહોંચાવા. કાર્યક્રમ અભી ભી જારી છે, અભી આપ સોણા ઉત્તરાખંડ કા પ્રાદેશિક સમાચાર.
1: યું તો અવસર પ્રત્યેક ઇન્સાન કે જિંદગી મે આતા હૈ, લેકિન ઇન્સાન ઉસકા સ્વાગત ન કર પાએ તો વો લોટને મે દેરી નહીં કરતા. કાર્ડિનલ आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है. महात्मा गांधी. सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो. स्वामी विवेकानंद. जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ. स्वामी विवेकानंद. हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है. हिंदी राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भाषा है.
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष उनियाल. पहले मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देशभर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रामनगर देहरादून एक्सप्रेस की विशेष गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. तवाघाट गुंजी कैलाश यात्रा मार्ग पर गर्भाधार और तंपा मंदिर के बीच मलबा आने से कैलाश मानसरोवर यात्रा रोक दी गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के विस्तार के लिए काटे जा रहे पेड़ों के कटान पर फिलहाल रोक लगा दी है. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया. इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है. यह योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है. विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है. प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है. अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है. 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रामनगर देहरादून एक्सप्रेस की विशेष गाड़ियों का हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया. इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा, उत्तराखंड में रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार निरंतर कार्य कर रही है और नई रेल सेवाएं प्रदेश के आर्थिक विकास, पर्यटन और जन सुविधाओं को नई गति प्रदान करेंगी. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रामनगर देहरादून एक्सप्रेस क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने के साथ साथ आम नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिल चुकी है और वर्ष 2026-27 में प्रदेश को रेलवे अवसंरचना विकास के लिए रिकॉर्ड 4,769 करोड़ रुपए का रेल बजट प्राप्त हुआ है. वर्तमान में राज्य में लगभग 39,000 करोड़ रुपए की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है.
3: रामनगर देहरादून एक्सप्रेस बुधवार व शुक्रवार को रामनगर से सुबह 5:50 पर प्रस्थान कर 12:40 पर देहरादून पहुंचेगी और उसी दिन देहरादून से 3:55 पर प्रस्थान कर रात 11:30 रामनगर पहुंचेगी। ये एक्सप्रेस ट्रेन अपनी यात्रा मार्ग में काशीपुर, रोशनपुर, पीपलसाना, मुरादाबाद, नजीबाबाद और हरिद्वार स्टेशनों पर रुकेगी। रामनगर देहरादून के बीच चलने वाली ये पहली एक्सप्रेस ट्रेन है। ट्रेन के चलने से क्षेत्रीय जनता की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। इस गाड़ी में वातानुकूलित द्वितीय, तृतीय, वातानुकूलित चेयर कार, शयनयान, द्वितीय श्रेणी चेयर कार तथा सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे। आकाशवाणी देहरादून के समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह कैंतुरा।
2: बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने की दिशा में निर्माणाधीन ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली 900 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके साथ निर्मित किए जा रहे 200 मीटर लंबे पुल का निर्माण भी अंतिम चरण में पहुंच गया है। परियोजना पूरी होने के बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम आने जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय लोगों को भी यातायात में बड़ी राहत मिलेगी। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि पुल का निर्माण कार्य 31 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद पुल की गुणवत्ता, सुरक्षा और तकनीकी मानकों की जांच के लिए आवश्यक टेस्टिंग और ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी। सभी मानकों पर सफल पाए जाने के बाद पुल और सुरंग को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने आज अल्मोड़ा स्थित जिला आपदा परिचालन केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने परिचालन केंद्र की कार्यप्रणाली की जानकारी लेने के साथ ही मानसून को देखते हुए अलर्ट मोड में कार्य करने के निर्देश दिए। आयुक्त कुमाऊं ने परिचालन केंद्र में दर्ज होने वाली आपदा संबंधी सूचनाओं का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा अथवा आपात स्थिति में सूचनाओं का तत्काल संकलन, सही अभिलेखीकरण व संबंधित विभागों के साथ प्रभावी समन्वय अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत रुड़की के नेहरू स्टेडियम का सौंदर्यकरण कार्य शुरू हो गया है। योजना के तहत स्टेडियम को नई बैठने की व्यवस्था, बेहतर पार्किंग और अन्य सुविधाओं से लैस किया जाएगा। रुड़की की मेयर अनिता अग्रवाल ने कहा कि मैदान का जन भावनाओं के अनुरूप सौंदर्यकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैदान का निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाएगा।
4: समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
2: पिथौरागढ़ जिले के धारचूला के तवाघाट गुंजी कैलाश यात्रा मार्ग पर गर्भाधार और तंपा मंदिर के बीच पहाड़ी से गिरे मलबे और बोल्डरों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के चौथे दल की यात्रा रोक दी है। दल में शामिल 50 यात्रियों को केएमवीएन पर्यटक आवास गृह से गुंजी के लिए आज रवाना होना था। इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी। यात्राधिकारी धन सिंह बिष्ट ने बताया कि सीमा सड़क संगठन के कार्मिक जेसीबी से मलबा और बोल्डर हटाकर सड़क खोलने में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि सड़क बंद होने पर पांगला पुलिस ने धारचूला से गुंजी जाने वाले वाहनों को पांगला के पास रोक दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के विस्तार के लिए काटे जा रहे पेड़ों के कटान पर फिलहाल रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने यह रोक पिछले कुछ दिनों से नागरिकों, पर्यावरण प्रेमियों एवं स्थानीय लोगों द्वारा व्यक्त की जा रही चिंताओं और सुझावों के आधार पर लगाई है। मुख्यमंत्री ने बयान जारी कर कहा कि यह परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की एक महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना है, जिस पर उच्च न्यायालय के निर्देशों और सभी आवश्यक वैधानिक एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियों व प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक सभी पक्षों के साथ संतोषजनक सहमति व विश्वास का वातावरण नहीं बन जाता, तब तक इस परियोजना के अंतर्गत आने वाले पेड़ों का कटान स्थगित रखा जाएगा। गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप ने आज डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंडल आयुक्त ने मतदान केंद्रों पर पेयजल, बिजली, शौचालय, रैंप, बैठने की व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने मतदाताओं के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य गहनता से संचालित किया जा रहा है। राजनीतिक दलों के साथ बैठक के साथ ही छूटे हुए मतदाताओं को भी मतदाता सूची में जोड़ने के लिए फॉर्म दर्ज करने के लिए कहा गया है।
5: मुझे अपने गढ़वाल मंडल में रोल ऑफ जरवाल का काम दिया गया है। तो इसी सिलसिले में आज मैंने जो है यहाँ डेट फिक्स की थी कि मैं आज जो है इस कार्य प्रणाली को देखूंगा SIR से संबंधित, और मतदान बूथों का भी मैंने आज भ्रमण किया है, और इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उनके साथ भी मीटिंग की है।
2: देहरादून जिले के जौनसार बाबर का प्रवेश द्वार हरिपुर जल्द अपनी पौराणिक पहचान फिर से पाने जा रहा है। हरिपुर में यमुना जी के किनारे घाट बनकर तैयार हो चुका है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आज निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया, साथ ही स्थानीय लोगों से वार्ता कर संबंधित विभागों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बताया कि घाट का निर्माण का करीब 90% काम पूरा हो चुका है। तीर्थयात्रियों को शुरुआत में मां यमुना के घाट पर दर्शन करने का मौका मिलेगा। सामाजिक कार्यकर्ता भरत चौहान ने बताया कि घाट निर्माण से स्थानीय लोग चार धाम से जुड़ पाए जाएंगे और इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
6: बहुत सौभाग्य का विषय है कि जब जौनसार वार का जो प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार पर हरिपुर में घाट बनकर के तैयार है। इसी के साथ जब इन घाटों का शिलान्यास होना था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक पहल की थी और लोक पंचायत ने भी एक प्रयास किया था यहाँ पर एक यमुना की प्रतिमा हो, और उस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए यहाँ के जनमानस ने, लोक पंचायत के सदस्यों ने, तमाम लोगों ने प्रयास किया। प्रतिमा कालसी में पहुंच चुकी है, कुछ ही दिनों के पश्चात हम प्रतिमा स्थापित करेंगे।
2: मौसम विभाग ने कल नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और 20 जुलाई को देहरादून, हरिद्वार व टिहरी जिले में भारी से भारी बारिश की संभावना का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देशभर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रामनगर देहरादून एक्सप्रेस की विशेष गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तवाघाट गुंजी कैलाश यात्रा मार्ग पर गर्भाधार और तंपा मंदिर के बीच मलवानी से कैलाश मानसरोवर यात्रा रोक दी गई है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के विस्तार के लिए काटे जा रहे पेड़ों के कटान पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों का बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं को आपा की अपनी बोली भाषा का कार्यक्रम ग्राम जगत में। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम में आमिचो आपा का दगड़ी आशना कंडियाल नेगी। समाचारों से पहले हम बात करना चाह पलायन पर। जी हाँ, पलायन जन गंभीर समस्या में होम स्टे की अवधारणा, पहाड़ों में रोजगार सृजन और ये पलायन थे रुकण में एक प्रभावी माध्यम बनीकर समणी आई छे। होम स्टे केवल पर्यटकों थे ठहराण को स्थान ही नीचे बल्कि स्थानीय संस्कृति, खान पीन और लोक कला और परंपराओं थे आय का स्रोत में बदलने को यू एक बहुत ही सुंदर अवसर छे। और श्रोताओं, होमस्टे की सबसे खासियत ये बोलना अच्छी बात यह है कि ये मैं कोई बड़ू निवेश आप थे नीचे आणु छू। लोग अपना जो घर छिन, पारंपरिक घर छिन, वो थे साफ सुथरा करी के अपने पर्यटकों का वास्ता तैयार करना छिन, जहाँ से स्थानीय हस्तशिल्प, जैविक खेती, दुग्ध उत्पादन का दगड़ा ही स्थानीय व्यंजन, महिला सशक्तिकरण, लोक संगीत और पहरवन जन कई अन्य गतिविधियों थे भी बढ़ावा मिलना छ। तो ये प्रकार से देखे जाओ तो होमस्टे में कई लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन करना छिन। खास करके अगर हम युवाओं की बात करा, रोजगार की तलाश में पलायन कर चुके जो युवा अपना घर गौत है छोड़ी की चल गिन, ऊँखुड़ा यू बहुत ही सम्मानजनक एक तरह से रोजगार छिके। अपना घर बैठी बैठी कर आप एक सुंदर सी रोजगार करना छा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर कोई भी अन्य जो बुकिंग एप्स छिन उनका माध्यम से युवा घर बैठी कर अपना होम स्टे है चढ़ा कर बहुत सुंदर पैसा कमा सकते छिन, और इन्हें उन्हें जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं छे आप थे। तो इन्हें में जो बंद हमारा घर छिन, कूड़ा छिन, वो दोबारा से आबाद वे सकला और गांव में ना रौनक वापस आ जाली। अगर आप थे एक लमसम में आंकड़ा बताऊं, उत्तराखंड में 6161 होम स्टे जो छिन वो पंजीकृत छिन। सबसे ज़्यादा होम स्टे श्रोताओं जो छिन वो नैनीताल में छिन, 909। तो देखा कितना बड़ा संख्या में होम स्टे चलना छिन। और एक बात यह होंगी कि अगर आप योजनाबद्ध तरीका से इन योजना थे चलावा तो वाकई में પહાડોમાં રોજગારની નઈ રાહ બની શકતી છે. ખાસ કરીને અમારા યુવા જો પલાયન કરી ચૂકે છે નોકરી કા બાના ઊં ખૂણા, યુ એક મહત્વપૂર્ણ મોકા છે કે આપ આપણા ઘર ગામમાં રહેકી આપણા ઘર પંગડીઓ થઈ ચાલુ કર્યા ઓર સ્થાનિય જો રોજગાર છે વે થઈ ભી આપ બઢાવા દેલા ઓર યુ હોણ ભી બહોત જ્યાદા જરૂરી છે. કિલે કે અગર હમ મૂળભૂત સુવિધાઓ કા વાસ્તા શહેરો કી તરફ પલાયન કરના છા તો કહી ના કહી હમ લોગોં થઈ વાપસ આણ છે. જબ હમ લોગ વાપસ ઓલા તબ જેકી હી જો હમારી મૂળભૂત સુવિધાએ છે વો દુબારા સે ફલીભૂત હોલી. કિલે કે જબ લોગ હી નહીં છે ગાઉમાં તો ફિર મૂળભૂત સુવિધાએ ભી કન કે હોણ છે. સ્કૂલ નહીં છે, અસ્પતાલ નહીં છે, પાણી કી વ્યવસ્થા નહીં હોણી છે. તો યુ સભ્યું થઈ હોણ જરૂરી છે. આપ વાપસ લોટા ઓર ઈ યોજના સે ભી જુડા. ખાસ કરી કે હમારા જો યુવા પીઢી કા નાનતીન છે ઊ થઈ હમ બોલા ઓર યે સે ગ્રામીણ રોજગાર, પલાયન રોકણ ઓર સ્થાનિય પર્યટન થઈ ભી બહોત જ્યાદા બઢાવા મિલણું છે. તો ઉમીદ કરતા આપ સભી કાર્યક્રમ ગ્રામ જગતમાં બણ્યા હોલા ઓર જેમ કે આપ સભી જણના છા યુ સોન કુ મેના છે બસ ગ્યાલ ચનું છું ઓર કાર્યક્રમ મઠું મઠું કરી કે આપણી સમાપ્તિ કી ઓર છે. તો આપ સભ્યું થે એક સુંદર સી ગડવલી જાગર શિવ જાગર સુણાણું છો સ્વચ્છ અમિત કુમાર સાગર કું.

श्रोताओं, अमित कुमार सागर का गया ये सुंदर से शिव जागर का दगड़ी ही कार्यक्रम ग्राम जगत अब समाप्ति पर छे। एक नया अंक माँ आप सभी से भेंट होली फिर से। अभी का वास्ता आप अपनी दगड़िया आशना कंडियाल ने गीत है कार्यक्रम संपन्न करने की आज्ञा देवा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे एक रामचकत FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के देहरादून केंद्र को। श्रोताओं, शाम के 6:50 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटिन गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों का दगड़ में मृणाल रतूड़ी। पहली मुख्य समाचार। गढ़वाल और कुमाऊं तय जोड़ने वाली रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेल सेवा शुरू। हफ्ता में द्विदिन संचालित होली ट्रेन। देहरादून ऋषिकेश 4 और 6 लेन परियोजना में सभी पक्षों का बीच सहमति। बर्न तलक पेड़ों की कटाई रुकी राली। बद्रीनाथ धाम में कथित वित्तीय अनियमितता का मामले में SIT ने एक और आरोपी तय गिरफ्तार कैरी। और प्रदेश का विभिन्न हिस्सों में भारी बरखा को रेड और ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेल सेवा को शुभारंभ कैरी। यू रेल सेवा हफ्ता में द्विदिन संचालित होली। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णवन बोली कि रामनगर देहरादून एक्सप्रेस क्षेत्रीय संपर्क तय मजबूत कर ली और यात्रियों की संख्या बढ़ने पर ये कुछ संचालन रोज करण पर भी विचार करी जालू। उन बोली कि उत्तराखंड में रेल संपर्क तय सुदृढ़ कन खुणी केंद्र सरकार लगातार काम करनी च। राज्य का 11 रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण भी होनु च।
2: गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी।
1: मुख्यमंत्री ने बोली कि यू नई रेल सेवा उत्तराखंड का विकास यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि च। उन बोली कि यू रेल सेवा कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों का बीच संपर्क तय मजबूत कर ली। यू ट्रेन रामनगर से देहरादून का बीच काशीपुर, रोशनपुर, पीपलसाना, मुरादाबाद, नजीबाबाद और हरिद्वार का बीच संचालित होली, जैसे यात्रियों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और पर्यटकों तय सुविधा मिली। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना च ये पर उच्च न्यायालय का निर्देशों तथा सभी आवश्यक वैधानिक और पर्यावरणीय स्वीकृतियों का अनुरूप कार्यवाही होनी च। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव और संबंधित अधिकारियों तय सभी हितधारकों, स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों का साथ विस्तृत संवाद करने का निर्देश देनी। ऊन बोली कि उच्च न्यायालय का निर्देशों को पूर्व सम्मान करी अगेन की कार्रवाई होली। आगामी कांवड़ मेला का दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं तय रोकण खुणी श्यामपुर और चिड़ियापुर रेंज में हाईवे का आसपास गश्त खुणी वन कर्मियों की 10 अतिरिक्त टीमें तैनात करी जा।

0: प्रभागीय वनाधिकारी स्वप्निल अनिरुद्धन बताया कि वन विभागन नहर पुल से श्यामपुर, चिड़ियापुर और रशिया बढ़ तक गश्त की व्यवस्था करी च। ये का अलावा अन्य जगह भी चिन्हित छन जख वन्य जीवों की आवाजाही बनी रहेंदी।
1: क्षेत्र है जो अति संवेदनशील है और संवेदनशील है वन्य जीव के दृष्टि से, उसमें जो है हमारी टीम में तैनात रहेगी और वहाँ पर जो झाड़ी कटान का कार्य होना है और जो साफ सफाई का कार्य होना है और रोड मरम्मत का कार्य होना है वो तेजी से चल रहा है और टीमें तैनात रहेगी ताकि जो कांवड़ में आने वाले श्रद्धालु हैं सुरक्षित इनकी जो है यात्रा संचालित की जा सके।
0: वकी कांवड़ मेला 2026 का सकुशल आयोजन तय लेके हरिद्वार प्रशासनन वाहन पार्किंग स्थलों तय अतिक्रमण मुक्त बनौन की कार्रवाई तेज करीन। ये क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लरन बैरागी कैंप, पंतदीप पार्किंग और कांगड़ा क्षेत्र सहित विभिन्न जगहों को निरीक्षण करी। जिलाधिकारी ने कांवड़ मेले का दौरान अतिक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण खुणी त्वरित कार्रवाई दल गठित करने का भी निर्देश दिनी।
2: पुलिस के द्वारा बनाई जाएगी जो कि पूरा जो मेन कोर हमारा मेला एरिया है हरकी पौड़ी और उसके आसपास का एरिया, वहाँ पर लगातार निरीक्षण करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी अनैतिक कार्य, कोई भी अवैध कार्य, कोई भी अतिक्रमण यहाँ पर न हो।
0: बद्रीनाथ धाम में कथित वित्तीय अनियमितता का मामला में विशेष जांच दल SIT ने एक और आरोपी तक गिरफ्तार करी। बद्री केदार मंदिर समिति का तत्कालीन मंदिर अधिकारी और थाली भेंट गणना प्रभारी राजेंद्र चौहान थे सह अभियुक्त का रूप में गिरफ्तार करी। SIT जांच का दौरान 22, 25 और 29 जून की CCTV फुटेज, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों को विश्लेषण करी। ये साक्ष्यों का आधार पर राजेंद्र चौहान तय ज्योतिर्मठ से पूछताछ का खातिर लेके गिरफ्तार करी। पुलिस ने बताया कि आरोपी तय उच्च न्यायालय में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजी गया। ध्यान दूण वाली बात कि ये मामला में नामजद आरोपी प्रमोद नोटियाल तय 12 जुलाई तय गिरफ्तार करी न्यायिक अभिरक्षा में भेजू चु।
3: प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जानो जे। ताजा समाचारों खुड़ी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: प्रदेश का विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से मध्यम वर्षा को दौर जारी है। कई जगहों पर तेज बरखा का कारण सड़क मार्ग प्रभावित हुए और लोगों तय आण जाण में दिक्कतों को सामना करना पड़ी। बरखा का कारण राज्य का प्रमुख नदियों को जलस्तर में बढ़ोतरी हुई जबकि बहुत जगहों पर गाढ़ गदेरा उफान पर छन। ये का दौरान मौसम विभाग ने राज्य में भोल ज्यादा से भी ज्यादा बरखा को ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी करी। नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में कखी कखी बहुत बरखा की संभावना छे। वकी देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और बागेश्वर जिलों में होर ज्यादा बरखा की संभावना जताई। अन्य जगहों में भी कखी कखी भारी बरखा से बरखा भेज सकती। बरखा को यह दौर 21 जुलाई तक रोन की संभावना चे। मौसम विभाग ने लोगों तय अनावश्यक यात्रा से बचन, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और नदी नालों से दूर रोन की अपील करी। वक पिथौरागढ़ जिला में धारचूला का तवाघाट, गुंजी, कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर गर्भाधार और तंपा मंदिर का बीच पहाड़ी से मलबा और बोल्डरगिन से सड़क बाधित हुए जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा का चौथा दल का 50 यात्रियों तय धारचूला में रोकी गई। मिली जानकारी के अनुसार सड़क खुड़न का बाद यात्रियों तय भोल गुंजी तय रवाना करी जालू। वकी रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर पहाड़ी से बोल्डर गिन से घोड़ा, डंडी और कंडी सेवा अस्थायी रूप से रोकी च जबकि पैदल यात्रियों की आवाजाही चलनी च। जिला प्रशासन ने बताया कि रास्ता से मलबा हटाने को काम लगातार जारी च और सड़क सुरक्षा को आकलन करने के बाद ही सेवाएं फिर से शुरू करी जाली। मानसून का दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटन खुणी राज्य सरकार ने पिथौरागढ़ जिला में मुख्यालय में एक हेलीकॉप्टर तैनात करी छ। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि यह हेलीकॉप्टर पिथौरागढ़ का अलावा चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और जरूरत पड़ने पर कुमाऊं मंडल का अन्य जिलों में भी राहत और बचाव कार्यों खुणी उपलब्ध रोलू। रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा तय होर सुगम बनौन खुणी ऋषिकेश, बद्रीनाथ और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग तय जोड़ने वाली 900 मीटर लंबी सुरंग को निर्माण कार्य पूर्व है। वकी एक दगड़ी बन लगी 200 मीटर लंबू पुल अंतिम चरण मच। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि पुल को निर्माण कार्य 31 अगस्त तक पूर्व भेजालू। ये के बाद पुल की गुणवत्ता, सुरक्षा और तकनीकी मानकों की जाँच खुणी परीक्षण की प्रक्रिया शुरू होली। ऊन बोली की परियोजना पूरी होने के बाद रुद्रप्रयाग नगर में यातायात कु दबाव कम होलू, जैसे बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम आण वाला श्रद्धालुओं का दगड़ी स्थानीय लोगों तय भी सुरक्षा मिल ली। पौड़ी गढ़वाल में राजस्व विभाग की कार्य प्रणाली तय डिजिटल बनौन की दिशा में जिला प्रशासन नई पहल करी। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम का तहत जिला का 41 राजस्व न्यायालयों में कंप्यूटर और प्रिंटर UPS लगेनी। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि सभी तहसीलों में कंप्यूटर उपलब्ध करी देना छन, जैसे राजस्व वादों को निस्तारीकरण, अभिलेखों को रख रखाव और अन्य न्यायालयीय कार्यों में तकनीक को ज्यादा उपयोग हो सको। उन बताया कि राजस्व परिषदन जिला का 268 फील्ड कार्मिकों तय लैपटॉप उपलब्ध करोड़ खुणी 60,50,000 रुपये की धनराशि स्वीकृत करीच। पहले चरण में 88 लैपटॉप की खरीद को कार्यादेश जारी, जबकि शेष लैपटॉप की खरीद प्रक्रिया चलनी च। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गढ़वाल और कुमाऊं तय जोड़ने वाली रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेल सेवा शुरू। हफ्ता में द्विदिन संचालित होली ट्रेन। देहरादून ऋषिकेश 4 और 6 लेन परियोजना में सभी पक्षों का बीच सहमति, वर्ण तलक पेड़ों की कटाई रुकी राली। बद्रीनाथ धाम में कथित वित्तीय अनियमितता का मामला में SIT ने एक और आरोपी तक गिरफ्तार करी और प्रदेश का विभिन्न हिस्सों में भारी बरखा को रेड और ऑरेंज अलर्ट। ये कदगढ़ ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को युवंक समाप्त हुए। नमस्कार।
3: यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के देहरादून केंद्र को। श्रोताओं, शाम के 7 बज रहे हैं, अब आप सुनेंगे कृषि जगत।

0: नमस्कार साथियों, FM 100.5 MHz पर आप इस समय देहरादून केंद्र से सुन रहे कार्यक्रम कृषि जगह, जिसमें आज शनिवार के दिन हम लेकर आते हैं हेलो लोक मंजरी, जिसमें हम अपने श्रोताओं, अपने किसान साथियों को, उनकी कॉलों को अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और उनके फरमाइशी गीत उन्हें सुनाते हैं। पहले सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: साथियों, अगर आप भी अपनी पसंद के लोकगीत या रागनी रेडियो पर सुनना चाहते हैं और हमसे बात कर अपने विचार साझा करना चाहते हैं, तो हेलो लोक मंजरी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हर शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक की जाती है। आप अपनी पसंद के लोकगीत और रागनियों को अपने इस फरमाइशी कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी में सुन सकते हैं। तो उठाइए अपना पेन या फिर फोन, हमारा नंबर नोट करें 7088001382। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 7088001382। हमें कॉल करना ना भूलें शुक्रवार 1:30 बजे से 2 बजे तक। चलिए साथियों, अपने इस फरमाइशी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने पहले कॉलर से। हेलो,
2: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छे हैं जी, आप बताओ।
0: जी जी भी बहुत बढ़िया। सबसे पहले हमारे श्रोता को बताइए कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं हुकम सिंह बोल रहा हूँ जी।
0: जी जी
2: नंदपुर जोड़ियों से।
0: जी, क्या करते हैं आप?
2: खेती बाड़ी करते हैं जी।
0: जी, कब से कर रहे हैं आप खेती बाड़ी?
2: अब तो हमारे बड़े भी कर रहे थे, बचपन से कर रहे जी।
0: जी,
2: अब इसमें जो है मतलब थोड़ी दिक्कत सी लग गया है, अब पेड़ वेड़ का काम लग गया, पॉपुलर लग गया लगा जाते सर। जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें एक तो जो है ज्यादातर पानी की समस्या होती है
0: जी,
2: पानी खेतों में जमा ना हो
0: जी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
2: उसके लिए बस पानी की जो है निकासी का प्रबंध करते हैं जी, इससे ज्यादा से, क्योंकि अगर खेतों में पानी रहेगा तो उससे ज्यादा हमारे पेड़ पौधे जो या फल फ्रूट या सब्जी जो भी बढ़ जाती है, क्योंकि इनमें जो है ना कीट कीटनाशक दवाइयां डालने के बाद भी बार बार बीमारी आती रहे, कीट
0: जी जी
2: बहुत रसायन डालने के बाद भी बार बार बीमारी आती रहे, इससे हमारा खर्चा बहुत होता है
0: जी जी।
2: तो ये जो है तो शॉर्टकट अपना आप पॉपुलर की खेती लग गया करने, हालांकि पॉपुलर में भी आने लग गया लेकिन इतना नहीं है।
0: पॉपुलर की खेती करना चाहते हैं, उनको कुछ सुझाव ऐसा देना चाहें आप जो आपको खेती करते करते आया हो?
2: बस उसको जो है तो सुझाव ये है भाई, अच्छी प्रजाति के पेड़ लगाओ और टाइम टाइम पर पानी की और उनकी देखभाल करते रहे, मेरा तो यही सुझाव है
0: जी। आकाशवाणी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

0: फल सुफल कमाई सबर करे सुख हो से शांति का फल सुफल कमाई सबर करे सुख हो से।
1: साथियों, जैसे कि पैदावार के लिए एक उच्च बीज जरूरी है, वैसे ही हमें हमारी मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए बात करते हैं। हेलो।
2: हेलो लक्ष्मण जी,
1: नमस्कार, कैसे हैं आप, कहाँ से बोल
2: जी
1: रहे हैं?
2: मैं बहुत अच्छा, उत्तर प्रदेश जिला शामली से गुलजार बात कर रहा हूँ सर।
1: जी जी बिल्कुल। और क्या करते हैं आप?
2: जी मैं उर्दू की पढ़ाई करता हूँ सर।
1: क्या पढ़ाई भी करते हो और साथ साथ हमारा एक कृषि जगत का प्रोग्राम भी आप नियमित सुनते हो?
2: जी पढ़ाई के साथ साथ जो है मैं रेडियो सुनता हूँ और ये कृषि जगत कार्यक्रम जो आता है हेलो लोक मंजरी हर शनिवार को ये सुनता हूँ और आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम सुनता हूँ। गीत आपके विचार हमारे हेलो फरमाइश कार्यक्रम है, हेलो रेडियो सिटी फोन इन कार्यक्रम है, तो हेलो लोक मंजरी फोन इन कार्यक्रम है और हेलो फ्रेंड्स फोन इन कार्यक्रम है, आपकी फरमाइश कार्यक्रम है, लोक संगीत है, शास्त्रीय संगीत सभी कार्यक्रम सुनता हूँ।
1: बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आप हमारे सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
2: जी आम का पौधा लगा रखा है, अंजीर का पौधा लगा रखा है, केले का पौधा लगा रखा है, मरवे का पौधा लगा रखा है, खेती नहीं करते हैं सर, ऐसे ये लगा रखे है सुंदरता के लिए।
1: अच्छा अच्छा सुंदरता के लिए, इसे कहते हैं घरेलू बागवानी।
2: हाँ जी मैं यही कहना चाहूंगा इसके लिए कि अपनी हरियाली को जो है समय समय पर पानी देते रहना, समय समय पर नुलाई करते रहना चाहिए।
1: जी जी बिल्कुल।
2: हाँ जी मैं आपसे ये जानकारी पूछना चाहता हूँ कि क्या आप हमें भी कोई सदा बार सुना देंगे क्या?
1: जी बिल्कुल, कोशिश करेंगे कि लोकगीत को सुना पाए।
2: सर मैं मित्रों का नाम ले लेता हूँ, महराज मलिक है, शहनाज मलिक है, महराज मलिक है, सानिया मलिक है, मकसूद हुसैन है, माधुरी दुकानदार है, यही मेरे मित्र है।
1: जी नमस्कार,
2: धन्यवाद सर।

0: तो चलिए अब अपने अगले कॉलर से बात करते हैं।
1: हेलो,
0: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी। लोकमंजी,
0: हाँ जी, लोकमंजी से बोल रहे हैं जी।
1: मैं सहारनपुर से सतीश कुमार बोल रहा हूँ।
0: सतीश जी नमस्कार, कैसे हैं आप
1: बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ठीक ठाक, बढ़िया, फर्स्ट क्लास
0: जी? और बताएं क्या करते हैं आप?
1: जी। खेती खाती सी हुआ बस, और कैसे नहीं, बस काम धाम यही है जी। बस ये चल रहा, धान लगा रखा है, गन्ना थोड़ा,
0: जी
1: सब्जी भी ठीक करेला था। अब तो पेड़ लगाने पर लग गए ज्यादा लोग, बहुत पॉपुलर लगा रहे, खूब पॉपुलर।
0: तो आपने भी पॉपुलर की खेती शुरू कर दी है मतलब?
1: हाँ जी, लगा रखी जी आप।
0: अगर नया किसान जो है पॉपुलर की खेती शुरू करना चाह रहा हो तो उसको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए?
1: अरे सावधानी तो बस ये तो लगाना हो आज ही ज्यादातर, नहीं तो बस उसमें जनवरी में बो कैसे अपना, या तो गेहूं में लगाया जाए इसके पेड़,
0: जी
1: और या फिर खाली खेत में, और कोई कोई फसल लगाओ भी जाओ, गेहूं गेहूं तो हर साल हो जाए 4 साल तक, और फिर अपना कटवा दो, फिर अपना दूसरा कुछ और कर लो, सब्जी कर लो या खेती कर लो, कुछ गन्ना कर लो।
0: और आपने गन्ना भी लगाया आपने बताया था, तो उस गन्ने को बरसात के टाइम में उसका किस तरह से रख रखाव करना चाहिए?
1: अभी गन्ने का तो बढ़िया चल रहा है, अभी तो कोई रोग राग नहीं आया, अब तो बंधाई बंधाई शुरू होगी, मुंडा वंडा को तो बांध रहे बोरू, अभी जो टिड्डी हुआ तो बंधी नहीं, अभी राग नहीं सुनवाया, जो कोई हरियाणा में बढ़िया की कोई राग नहीं। हेलो, दो एक नाम है जी, प्रकाश सुभाष रविंदर।
0: चलिए एक खूबसूरत सी हरियाणी राग भी सुनाते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी।
1: नमस्ते, नमस्ते।

साथियों, कार्यक्रम में वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें ज़रूर बताएं। हमारा पता है, कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून 248-001। अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 7:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार उगदगढ़ में योगिता बिष्ट। पली मुख्य समाचार। गढ़वाल और कुमाऊं के जोड़ने वाले रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेल सेवा शुरू, हफ्तम द्वि दिन चलेल ट्रेन। देहरादून ऋषिकेश 4 और 6 लेन परियोजनाओं सब पक्षों के बीच सहमति बनने तक पेड़ों कटाई नहीं है। बद्रीनाथ धाम में कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में SIT एकाए आरोपी के गिरफ्तार करो। और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भौते द्योहुणक रेड और ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तारल। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीला आज वर्चुअल माध्यमल रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेल सेवा का शुभारंभ करो। और यो रेल सेवा हफ्तम द्वि दिन चली। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णवल को की रामनगर देहरादून एक्सप्रेस क्षेत्रीय संपर्क के मजबूत करेल और यात्रियों की संख्या बढ़न पर यह संचालन के प्रतिदिन करी जाने पर ले विचार करी जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में रेल संपर्क के भल करने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रहे और राज्य के 11 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण ले करी जा रहा।
2: गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी।
1: मुख्यमंत्री कहा कि यो नई रेल सेवा उत्तराखंड के विकास यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि छो। उन्होंने कहा कि यो रेल सेवा कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों के बीच संपर्क के मजबूत करेल। बता दूं कि यो ट्रेन रामनगर बटी देहरादून के बीच काशीपुर, रोशनपुर, पिपलसाना, मुरादाबाद, नजीमाबाद और हरिद्वार होते हुए संचालित है। जैल यात्रियों, स्कूली नानतिनों, व्यापारियों और पर्यटकों के सुविधा मिले। देहरादून ऋषिकेश 4 और 6 लेन परियोजना के तहत सब पक्षों के बीच सहमति और विश्वासक वातावरण बनने तक पेड़ों कटाई स्थगित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील यो जानकारी देते हुए कहा कि विकासक दगड़ जनभावनाओं, पर्यावरण और स्थानीय हितों का अनदेखी नहीं करी जाए। सोशल मीडिया के माध्यम यो जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कहा कि यो योजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना छू। यह पर हाई कोर्टक निर्देशों और सभी जरूरी वैधानिक और पर्यावरणीय स्वीकृतियों के अनुरूप कार्रवाई करी जा रही। उन्होंने बताया कि परियोजना में वन्यजीव संरक्षण के लिए लगभग 3.5 किलोमीटर लंब हाथी अंडरपास का प्रावधान करी जा रहा। नान वन्य जीवों आण जाने के लिए खास कलवट लय बनाई जाए। मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव और संबंधित अधिकारियों के सभी हितधारकों, स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों दगड़ विस्तृत संवाद करने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्टक निर्देशों का पूर्ण सम्मान करते हुए अगली कार्रवाई करी जाए। आणवल कावड़ म्योलक दौरान मानव वन्य जीव संघर्षक घटनाओं के रोकने के लिए श्यामपुर और चुनियापुर रेंज में हाईवे के आसपास गश्तक लिजी वन कर्मियों का 10 अतिरिक्त टीम तैनात करी जाए। प्रभागीय वनाधिकारी स्वप्निल अनिरुद्धल बता कि वन विभागक द्वारा नहर पुलबटी श्यामपुर, चुनियापुर और

0: सुरक्षा बढ़तक गश्तक व्यवस्था करी जा रही। यह के अलावा ईएसआई जगह चिन्हित करी जा रही जहाँ वन्य जीवों की आवाजाही बनी रही।
1: क्षेत्र है जो अति संवेदनशील है और संवेदनशील है वन्यजीव के दृष्टि से, उसमें जो है हमारी टीम में तैनात रहेगी और वहाँ पर जो झाड़ी कटान का कार्य होना है और जो साफ सफाई का कार्य होना है और रोड मरम्मत का कार्य होना है वो तेजी से चल रहा है और टीमें तैनात रहेगी ताकि जो कांवड़ में आने वाले श्रद्धालु हैं सुरक्षित इनकी जो है यात्रा संचालित की जा सके।
0: उथा कांवड़ म्यौल 2026 सकुशल आयोजन के लिबेर हरिद्वार प्रशासनल वाहन पार्किंग स्थलों के अतिक्रमण मुक्त बनाना के लिए कार्रवाई तेज कर है। यो क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुरलर बैरागी कैंप पंतदीप पार्किंग और कांगड़ा क्षेत्रक दगड़ विभिन्न स्थानों का निरीक्षण करो। जिलाधिकारी कांवड़ म्यौलक दौरान अतिक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए त्वरित कार्रवाई दल गठित करने के निर्देश दी।
2: पुलिस के द्वारा बनाई जाएगी जो कि पूरा जो मेन कोर हमारा मेला एरिया है हरकी पौड़ी और उसके आसपास का एरिया, वहाँ पर लगातार निरीक्षण करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी अनैतिक कार्य, कोई भी अवैध कार्य, कोई भी अतिक्रमण यहाँ पर न हो।
0: बद्रीनाथ धाम में कथित वित्तीय अनियमितता मामले में विशेष जांच दल एसआईटी एकाई आरोपी के गिरफ्तार कर है। बद्री केदार मंदिर समिति तत्कालीन मंदिर अधिकारी और थाईक भेंट गणना प्रभारी राजेंद्र चौहान के सह अभियुक्त रूप में गिरफ्तार कर है। एसआईटी जांचक दौरान 22, 25 और 29 जूनक सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों का विश्लेषण करो। यो साक्ष्यों के आधार पर राजेंद्र चौहान के ज्योतिर्मठ बटी पूछताछक लीजी लय बेर गिरफ्तार करी गो। पुलिसल बता कि आरोपी के न्यायालय में पेश करने के बाद 14 दिनक न्यायिक हिरासत में भेज है। ध्यान देने बात छू कि यह मामले में नामजद आरोपी प्रमोद नौटियाल के पली के 12 जुलाई हते गिरफ्तार कर बे न्यायिक अभिरक्षा में भेज है।
3: प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जानो जे ताजा समाचारों खुड़ी आप
4: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के यू बुलेटिन अपू लोग आकाशवाणी देहरादून केंद्र बैठे सुनने लग रहा। इन समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड में ले उपलब्ध छन। ताजा समाचार नक लीजिए अपू लोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता।
0: प्रदेशक विभिन्न हिस्सों में आज हल्की बटी मध्यम द्योग दौर जारी छू। कई जगहों पर तेज द्योग कारण सड़क मार्ग प्रभावित हैंगी और मैसू के आड़जण में दिक्कतों का सामना करन पड़ रो। द्योग कारण राज्यक प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हैगे जबकि बहुते जगहों पर गाड़ गधेर उफान पर छी। यही बीच मौसम विभाग राज्य में भो भार बटी बहुत भार द्योग ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर है। नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में कई कई बहुते भार द्योग होने की संभावना छू। वहीं देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और बक्सर जिलों में भार बटी बहुत भार द्यो संभावना जत रहे। अन्य जगहों में कहीं कहीं बहुत द्यो है सकू। द्यो हुणक यो दौर 21 जुलाई तक जारी रुणक संभावना छो। मौसम विभाग महसू हते अनावश्यक यात्रा हैबे बचणक, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और नदी नालू हैबे दूर रुणक अपील कर रहे। चारधाम यात्रियों और पर्यटकों के लिए मौसमक ताजा जानकारी लेणक बाद यात्रा करनक सलाह दी जा रहे। उथा पिथौरगढ़ जिले में धारचुलाक तवाघाट, गुंजी, कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर गर्भाधार और तंपा मंदिरक बीच पहाड़ी बटी माट और बोल्डर घूमना सड़क बाधित है। ये चलते कैलाश मानसरोवर यात्रा चौथु दलक 50 यात्रियों के धारचुला में रोक है। मिली जानकारी के मुताबिक सड़क खुलने के बाद यात्रियों के भो गुंजी के लिए रवाना करी जल। सीमा सड़क संगठन मार्ग बटी मलब हटाना काम में जुट रो। वहीं रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर पहाड़ी बटी बोल्डर घूमना कारण घोड़ डंडी और कंडी सेवा एहतियातन अस्थायी रूपल रोकेनी। हालांकि पैदल यात्रियों की आवाजाही जारी छू। जिला प्रशासनल बता कि मार्ग बटी मलब हटाना काम जारी छू और सुरक्षा का आकलन करने के बाद सेवाएं दोबारा शुरू करी जाल। वहीं मानसूनक दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं हेते प्रभावी ढंगल निपटना के लिए राज्य सरकार पिथौरगढ़ जिला मुख्यालय में एक हेलीकॉप्टर तैनात कर रो। जिलाधिकारी आशीष भड़गाइल बता कि यह हेलीकॉप्टर पिथौरगढ़क अलावा चंपावत, अलमड़, बक्सर और जरूरत पड़ने पर कुमाऊं मंडलक अन्य जिलों में राहत और बचाव कार्यों के लिए उपलब्ध रोल। उन्होंने कहा कि भूस्खलन, बादल फटन, अतिवृष्टि और सड़क संपर्क बाधित होने जैसे आपदाओं के दौरान हेलीकॉप्टर माध्यम राहत सामग्री, चिकित्सा दल और बचाव टीमों के प्रभावित जगहों तक पहुंचाई जाए। रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा के आय सुगम बनाना के लिए ऋषिकेश बद्रीनाथ और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के जोड़ने वाले 900 मीटर लंबी सुरंग निर्माण कार्य पूरे हैगो। वहीं यकदगढ़ बनाई जा रही 200 मीटर लंबो पुल अंतिम चरण में छू। जिलाधिकारी विशाल मिश्राल बता कि पुलक निर्माण कार्य 31 अगस्त तक पूर कर ली जाल। यक बाद पुलक गुणवत्ता सुरक्षा और तकनीकी मानकों जांच लीजिए परीक्षण प्रक्रिया शुरू करी जाल। उन्होंने कहा कि परियोजना पूर्ण होने के बाद रुद्रप्रयाग नगर में यातायातक दबाव कम होल, वाहनों की आवाजाही ज्यादा व्यवस्थित है और यात्राक बखत ले कम होल। येल बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं दगड़ स्थानीय लोगों के लिए सुविधा मिले। पौड़ी गढ़वाल में राजस्व विभागक कार्य प्रणाली के डिजिटल बनाने की दिशा में जिल प्रशासन नई पहल कर रहे। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत जिला के 41 राजस्व न्यायालयों में कंप्यूटर प्रिंटर और यूपीएस लगे हैं। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरियाल बता कि सब तहसीलों में कंप्यूटर उपलब्ध करे हैं। जैल राजस्व वादों के निस्तारण अभिलेखों का रख रखाव और अन्य न्यायालयी कार्यों में तकनीक ज्यादा उपयोग है सके। उन्होंने बता कि राजस्व परिषद जिलक 268 फील्ड कार्मिकों के लैपटॉप उपलब्ध कराना के लिए 60,50,000 रुपए धनराशि स्वीकृत कर है। पहली चरण में 28 लैपटॉप खरीदना कार्यादेश जारी करी जा रहा जबकि बाकी लैपटॉपों खरीद प्रक्रिया जारी छू। अंत में मुख्य समाचार एक बार आई सुनो। गढ़वाल और कुमाऊं के जोड़ने वाले रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेल सेवा शुरू, हप्तम द्वि दिन चले ट्रेन। देहरादून ऋषिकेश 4 और 6 लेन परियोजनाओं सब पक्षों के बीच सहमति बनने तक पेड़ों कटाई नहीं। बद्रीनाथ धाम में कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में एसआईटी एकाए आरोपी के गिरफ्तार करो और प्रदेशक विभिन्न हिस्सों में भौतिद्यो हुणक रेड ऑरेंज अलर्ट। यकदगढ़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यो अंक समाप्त हो। नमस्कार।
3: FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 7:40 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए हम आपको सबसे पहले सुनवाते हैं अंजाम फिल्म से ये गीत। आवाज़ है अमिताभ अभिजीत भट्टाचार्य की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के देहरादून केंद्र को। श्रोताओं, रात्रि के 7:50 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति विशेष कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे भारत के अमरवीर पॉडकास्ट सीरीज। लीजिए सुनिए।

0: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी देहरादून से मैं आशुतोष अनियाल आप सबका स्वागत करता हूं। आप सुन रहे हैं अदम्य साहस, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम उन वीर सैनिकों की गाथाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं जिनके साहस, नेतृत्व और बलिदान ने भारतीय सैन्य इतिहास को गौरवान्वित किया। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के एक ऐसे अधिकारी की जिन्होंने भारत के उत्तर पूर्व में उग्रवाद विरोधी अभियानों के दौरान अपने अद्वितीय साहस का परिचय दिया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। हम बात कर रहे हैं कैप्टन एरिक जेम्स टकर, अशोक चक्र की। हमारे साथ स्टूडियो में भारतीय सेना के एक अधिकारी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट निशांत। लेफ्टिनेंट निशांत, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जय हिंद। कैप्टन एरिक जेम्स टकर जैसे वीर अधिकारी की कहानी साझा करना वास्तव में एक गर्व का विषय है।
0: सर, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि कैप्टन एरिक जेम्स टकर कौन थे।
1: कैप्टन एरिक जेम्स टकर का जन्म 21 अक्टूबर 1927 को कटक में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से प्राप्त की और युवावस्था में ही सेना को अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया। उन्होंने 13 जुलाई 1947 को भारतीय सेना की 2 मराठा लाइट इन्फेंट्री में कमीशन प्राप्त हुआ। अपने सैन्य जीवन में वे एक निर्भीक, दृढ़ निश्चयी और प्रेरणादायक नेता के रूप में जाने गए। उनके अधीन सैनिक उनका अत्यंत सम्मान करते थे और कठिन से कठिन परिस्थितियों में उनके नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास रखते थे।
0: लेफ्टिनेंट निशांत, उस समय उत्तर पूर्व में परिस्थितियां कैसी थी?
1: स्वतंत्रता के बाद उत्तर पूर्व के नागा हिल्स क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियां बढ़ रही थी। घने जंगल, दुर्गम पहाड़ियां, सीमित संचार व्यवस्था और छापामार युद्ध शैली के कारण सेना के लिए अभियान अत्यंत चुनौतीपूर्ण। 1956-57 के दौरान कैप्टन टकर की कंपनी को नागा हिल्स में संचार मार्ग खोलने, प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने तथा उग्रवादी गतिविधियों को नियंत्रण करने का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया था।
0: क्या उन्होंने इन अभियानों में कोई विशेष उपलब्धि हासिल की थी?
1: जी हाँ, अक्टूबर 1956 में कैप्टन टकर ने अपनी कंपनी का नेतृत्व करते हुए चाकाबामा से फेक और आगे मेलुरी तक लगभग 60 मील से अधिक के कठिन मार्ग को सुरक्षित बनाया। इस दौरान उनकी टुकड़ी का कई बार सशस्त्र उग्रवादियों से सामना हुआ। एक मुठभेड़ में घायल होने के बावजूद उन्होंने नेतृत्व जारी रखा और दुश्मन को भारी क्षति पहुंचाई। इसके बाद भी वे लगातार अभियान चलाते रहे और कई उग्रवादियों को गिरफ्तार किया तथा हथियार बरामद किए। उनकी कार्यशैली का मूल मंत्र था, खतरा चाहे कितना भी हो, सैनिक का कर्तव्य उससे बड़ा होता है।
0: जी, अभी जिस तरीके से आपने उनके नेतृत्व की बात बताई, वो अंतिम घटना क्या थी जिसके लिए उन्हें अशोक चक्र प्रदान किया?

0: 2 अगस्त 1957 को कैप्टन टकर एक प्लटून का नेतृत्व करते हुए नागा हिल्स क्षेत्र में खुजामी से किवीकू की ओर बढ़ रहे थे। दुश्मन को उनकी गतिविधियों की पूर्व सूचना मिल चुकी थी। घने जंगल में उग्रवादियों ने उनकी टुकड़ी पर घात लगाकर हमला किया। अचानक हुई तीव्र गोलाबारी में कैप्टन टकर के चेहरे और पैरों में गंभीर चोटें आई, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। घायल होने के बावजूद वे लगातार सैनिकों का नेतृत्व करते रहे, दुश्मन पर सटीक जवाबी फायर करते रहे और अपने साथियों का मनोबल बढ़ाए रखा।
1: जैसे आपने बताया कि गोलीबारी में वो गंभीर रूप से घायल हुए, तो उस निर्णायक क्षण में उन्होंने क्या किया?
0: जब स्थिति अत्यंत ही गंभीर हो गई और निकट युद्ध की नौबत आ गई, तब कैप्टन टकर ने असाधारण साहस का परिचय दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वे अपनी स्थिति पर डटे रहे और अंतिम क्षण तक लड़ते रहे। जब उनका गोला बारूद लगभग समाप्त हो गया, तभी उन्होंने पीछे हटने के बजाय दुश्मन की ओर बढ़कर मुकाबला जारी रखा। अंततः एक स्वचालित हथियार की बर्स्ट फायर से वे वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन तब तक वे अपने सैनिकों को सुरक्षित पुनर्गठन और प्रभावी जवाबी कार्रवाई का अवसर दे चुके थे।
1: जैसा आपने बताया कि गोला बारूद खत्म होने के बाद भी वो लगातार लड़ते रहे और उन्होंने इस युद्ध में अपनी असाधारण वीरता का परिचय दिया। उनके इस बलिदान को राष्ट्र ने किस प्रकार सम्मानित किया, इसके बारे में बताइए।
0: जी, कैप्टन एरिक जेम्स टकर के अद्वितीय साहस, नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया गया। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है और इसे परमवीर चक्र के शांतिकालीन समकक्ष के रूप में माना जाता है।
1: लेफ्टिनेंट निशांत, आज के सैनिकों के लिए और युवाओं के लिए उनकी विरासत क्या संदेश देती है?
0: कैप्टन टकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि नेतृत्व का अर्थ सबसे आगे रहकर जिम्मेवारी निभाना है। कठिन परिस्थितियां महान व्यक्तियों को जन्म देती है। सैनिक का पहला धर्म कर्तव्य है। साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं, बल्कि कर्तव्य के लिए भय पर विजय पाना है। एक सच्चा नेता अपने सैनिकों को आदेश देने से पहले स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनका बलिदान भारतीय सेना की उस परंपरा का प्रतीक है जिसमें कर्तव्य, सम्मान और राष्ट्र सदैव सर्वोपरि रहते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो श्रोता, आज हमने अशोक चक्र से सम्मानित कैप्टन एरिक जेम्स टकर की प्रेरणादायक गाथा सुनी। नागा हिल्स के घने जंगलों में अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि एक सैनिक का साहस परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता। उनका जीवन और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। श्रोताओं, लेफ्टिनेंट निशान से आपने अशोक चक्र विजेता कैप्टन एरिक जेम्स टकर की वीर गाथा तो सुन ली है। चलिए अब आपको बताते हैं अशोक चक्र से जुड़ी कुछ रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारी। श्रोताओं, अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने युद्ध के बाहर शांति के समय में अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया हो। भारत में जब भी ऐसे सैनिक, अर्धसैनिक बलों के कर्मी असाधारण संकट की घड़ी में दूसरों की जान बचाने, आतंकवाद से लड़ने या जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा करने का कार्य करते हैं, तब अशोक चक्र जैसे सम्मान का औचित्य सामने आता है। श्रोताओं, अशोक चक्र एक ऐसा पुरस्कार है जो सैन्य कर्मियों के अतिरिक्त आम नागरिकों को भी असाधारण बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देने के लिए दिया जा सकता है। ये पुरस्कार केवल शौर्य का नहीं बल्कि त्याग, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का भी प्रतीक है। अशोक चक्र की स्थापना 4 जनवरी 1952 को की गई थी। ये स्वतंत्र भारत की उन शुरुआती पहलों में से एक थी जिनके माध्यम से वीरता को औपचारिक और राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। पहले इसे सैन्य और नागरिक वीरता के लिए एक व्यापक श्रेणी के रूप में देखा गया, लेकिन 1967 के बाद इसे अधिक सुव्यवस्थित ढंग से 3 श्रेणियों में बांटा गया, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। इनमें अशोक चक्र सर्वोच्च है। इसे अक्सर शांतिकाल का परमवीर चक्र कहा जाता है क्योंकि परमवीर चक्र युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार है, जबकि अशोक चक्र शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। इस पदक का नाम सम्राट अशोक के प्रसिद्ध अशोक चक्र से लिया गया है, जो भारतीय प्रतीक परंपरा में नैतिकता, धैर्य, प्रगति और धर्म चक्र की अवधारणा से जुड़ा है। पदक के डिजाइन में भारतीय सांस्कृतिक गरिमा झलकती है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि अशोक चक्र केवल सैनिकों तक सीमित नहीं है। ये सेना, वायुसेना, नौसेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों को भी दिया जा सकता है जिन्होंने असाधारण जोखिम उठाकर दूसरों की रक्षा की हो। इस व्यापकता के कारण यह पुरस्कार केवल सैन्य सम्मान नहीं बल्कि राष्ट्रीय वीरता का साझा

एक बन जाता है एक ऐसा पुरस्कार जो दुर्लभ हो। उसका महत्व केवल प्रतीकात्मक नहीं रहता, बल्कि वह राष्ट्र की सामूहिक स्मृति का हिस्सा बन जाता है। जब किसी जवान को यह सम्मान मिलता है, तो उसका नाम सिर्फ पदक सूची में नहीं जुड़ता, बल्कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाता है। यह पुरस्कार हमें याद दिलाता है कि देश की सुरक्षा केवल सीमा पर लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है। कई बार यह आतंकवाद रोधी अभियानों, जंगलों में मुठभेड़ों, बचाव अभियानों, समुद्री जोखिमों या किसी अचानक संकट में भी दिखाई देती है। श्रोताओं, ये वीरता पुरस्कार उस भावना को मान्यता देता है जिसमें मैं से अधिक हम महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय सेना के संदर्भ में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेना की संस्कृति में टीम वर्क, अनुशासन और राष्ट्र सेवा सर्वोपरि माने जाते हैं। अशोक चक्र का महत्व केवल पुरस्कार तक सीमित नहीं है, यह समाज को भी संदेश देता है कि वीरता केवल युद्ध भूमि में ही नहीं होती, बल्कि शांति के समय भी राष्ट्र की रक्षा के लिए अत्यंत साहसिक कार्य किए जाते हैं। यह उन गुमनाम नायकों को पहचान देता है जिनका कार्य अक्सर सुर्खियों में नहीं आता। इन वीरता पदकों को प्राप्त करने वाले सभी वीरों में सबसे बड़ी समानता यही है कि वे अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठकर राष्ट्र और मानवता के लिए कार्य करते हैं। यही कारण है कि अशोक चक्र आज भी भारत की वीरता परंपरा का सबसे उज्ज्वल शांतिकालीन प्रतीक बना हुआ है। भारत के अमरवीर पॉडकास्ट सीरीज में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीर की वीर गाथा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति भारत के अमरवीर पॉडकास्ट सीरीज। FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के देहरादून केंद्र को। श्रोताओं, रात्रि के 8 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में चलिए हम आपको सुनवाते हैं सबसे पहले दे दे प्यार दे फिल्म से ये गीत। आवाज़ है अरमान मलिक की।

आइए श्रोताओं को सुनाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में। ये गीत फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

FM 104.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत का। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत जिसे हमने लिया है बागवान फिल्म से। आवाज़ें होती नारायण और अलका याग्निक की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, रात्रि के 8:20 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे शर्मा बंधु के आवाज़ में भजन।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आपने सुना शर्मा बंधु की आवाज़ में भजन। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है 100.5 MHz पर। श्रोताओं, आप सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में चलिए हम आपको सबसे पहले सुनवाते हैं गोल्ड फिल्म से ये गीत। आवाज़ है यासिर देसाई की।

आप बने आकाशवाणी देहरादून के साथ FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है कभी खुशी कभी गम फिल्म से। आप सुन रहे हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में।

0: कार्यक्रम चल रहा था फिल्म संगीत का, FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के देहरादून केंद्र को। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडम्ब मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
2: लेकिन आप चाहे मुझे NIA की तरफ से भेजिए, ID की तरफ से भेजिए या कश्मीर का CM बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
1: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
3: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमीदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और GV प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजय लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल्कि 2898 AD को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना UBT सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील

0: करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
1: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम वन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरो स्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम वन भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम वन में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। यह अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम वन से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
3: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
0: होर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमेरिका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसैलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसैलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसैलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंता बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में एक व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा HD कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन के को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यू जर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। PV सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही PV सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमरीका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. 72nd National Film Awards announced. Yami Gautam wins Best Actress Award for Article 370, Mammootty for Brahmayugam and Kartik Aaryan for Chandur Champion share Best Actor Award. 20 rebel TMC MPs who joined National Citizens Party of India get Lok Sabha Speaker's approval for separate seating in the House. Massive fire at a firecracker factory in Ahmedabad claims 5 lives. Prime Minister Narendra Modi expresses grief. US-Iran fighting over Strait of Hormuz escalates with attacks on key infrastructure and military targets. Olympic medalists Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain to be India's flag and baton bearers at opening ceremony of Commonwealth Games in Glasgow. And in FIFA World Cup, France to clash with England for third place at Miami Stadium tonight. Hindi film Article 370 has won the Best Film Award in the 72nd National Film Awards. Announcing the awards today in New Delhi this evening, Chairman of Jury Feature Film Jairaj said Mammootty and Kartik Aaryan have won the National Film Awards in Best Actor category for their movies Brahmayugam and Chandur Champion. He said Yami Gautam will be given the Best Actress Award for her performance in the film Article 370.
5: Best actress in leading role, Article 370, Hindi film. For a known performance that portrays a law enforcement agent's unwavering pursuit of truth and justice with sensitivity, courage and compassion. A performance that leaves a profound and lasting impact. Actress Yamini Gautam. Best actor in a leading role, Shade. Chandu Champion, Hindi. For a performance that transcends the conventions of a sports biopic, bringing an unsung hero story to life with dignity, sincerity and lasting impact. Actor Kartik Aaryan.
4: Chairman of Jury Non-Feature Film Asim Kumar Sinha said Bhangar, directed by Sumira Roy, has bagged the Best Non-Feature Film Award. Best Short Film is Hamsafar in Marathi. He said Best Direction Award will be given to Anand L. Rai for Statue of Unity, Ekta Ka Pratik.
6: Best Direction, Statue of Unity, Ekta Ka Pratik, Hindi, Citation, for creatively chronicling the making of the world's tallest statue through dynamic cinematic storytelling, transforming and engineering marvel into a stirring tribute to Sardar Vallabhbhai Patel, Unity and National Pride, Director Anand L. Rai. Best Short Film, Hamsafar Marathi. Through a compassionate cinematic narrative, the film reveals how ordinary objects become deeply personal and how their loss opens a poignant void, sparking and heartfelt search for memory, identity and emotional connection.
4: Best Film Critic Award will be given to Sanjeev Srivastav. Award for Best Writing on Cinema will be given to K. Pradeep Kumar Shetty for his Kannada book Nani Iruvude Nimagagi Nadi Iruvude Nanagagi Kannada Cinema the Tattva Mattu Rajakiya. A report.
7: Rajkumar Periyaswamy will get Best Direction Award for Tamil film Amaran. Sanjay Mishra will receive the award for Best Actor in a Supporting Role, while Sachana Namidas and Rupashree Varkadi will receive the award for Best Actress in a Supporting Role. Shashwat Sajdev and G.V. Prakash Kumar will get the award for Best Music Direction. Abhay Jodhpurkar and Vaikom Vijayalakshmi will receive the Best Playback Singer Award. Telugu movie Chinna Kathakadu will get the Best Children Film Award. Kalki 2898 AD was named Best Feature Film, providing wholesome entertainment. Captain Miller has got award for Best Film Promoting National Social Values. Best Gujarati Film is Maran. Best Oriya Film is Lahari. Best Kannada Film is Mithya. Best Manipuri Film is Sunita. And Best Gadwali Film is Dholi. With Dipendra, Anupam Mish, Akashwani News, Delhi.
4: Lok Sabha Speaker Om Birla has given approval for a separate seating in the House for the 20 rebel TMC MPs who have joined Nationalist Citizens Party of India, NCPI. Mr. Birla also gave his approval to the merger of 6 Shiv Sena UBT MPs with the Shiv Sena led by Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde. With the merger of the 6 MPs, the strength of the Shiv Sena has gone up to 13 from 7 in the lower house of Parliament. The government has convened an all-party meeting tomorrow ahead of the monsoon session of Parliament beginning on Monday. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure smooth functioning of both Houses of Parliament. The monsoon session will commence on Monday and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In Gujarat, 5 people were killed and several others injured today after a massive fire broke out at a firecracker manufacturing and processing unit on the Ramol Gutrad Road in Ahmedabad. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have expressed deep grief at the loss of lives in the fire and prayed for the speedy recovery of the injured. The Prime Minister announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. Our correspondent reports that the fire has been brought under control.
1: Following the tragic outbreak of a massive fire at fireworks factory in Ahmedabad, Rapid Action Force personnel from the nearby Vastral camp rushed to the site immediately to rescue the trapped workers and retrieve the bodies. The injured have been admitted to nearby hospitals for urgent medical treatment, while the Ahmedabad Fire Brigade has brought the blaze under control and initiated the cooling operations. Senior civic officials, including municipal commissioner and mayor, visited the spot to assess the situation. Expressing deep condolences over the tragedy, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel announced an ex gratia assistance of 4 lakh rupees to the next kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. Preliminary police investigation suggests that the manufacturing unit was operating illegally. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
4: Union Home Minister Amit Shah has extended condolences over the tragic accident at a firecracker factory in Ahmedabad. In a social media post, Mr. Shah said every possible medical facility is being provided to the injured. In Andhra Pradesh, 5 fishermen lost their lives after drowning in the Godavari River near Golagudam village of Polavaram district today. The victims had gone to the river for fishing when they were reportedly swept away by the strong current. An investigation has been launched to ascertain the circumstances. Chief Minister N. Chandrababu Naidu expressed profound grief over the incident and conveyed his condolences to the bereaved families. In West Bengal, Union Home and Cooperation Minister Amit Shah held several meetings at Uttarkonna in Siliguri today. More from our correspondent.
8: Union Home Minister Amit Shah today chaired meetings on the implementation of new criminal laws and on birth and death registration at Uttar Konna in Siliguri. Discussions were held on number of issues including the border security, law and order situation along with the security of Chicken Neck. In addition to the Chief Minister of West Bengal Shubhendu Adhikari, superintendents of police, district magistrates of North Bengal and senior BSF officials attended the meetings. Earlier, he took part in the Prohori Shammelan at the Juma Gach BSF camp near Siliguri, where he interacted with BSF personnel and took stock of border security scenarios in North Bengal. Mr. Shah planted trees and laid foundation stone for number of projects. Kollan Laha reporting from Kolkata for Akashvani News.
4: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back, here with us on the news at 9. India's first privately developed orbital rocket Vikram-1 under Mission Agman has successfully reached orbit after completing its final burn and injecting payloads into a 450-kilometer orbit. The liftoff took place at 12.05 p.m. from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. Our correspondent reports that the milestone makes India the third country in the world to achieve private orbital launch capability. Developed under Mission Agman, the rocket is intended to provide cost-effective and flexible launch services for small satellites. Prime Minister Narendra Modi congratulated the Skyroot Aerospace team over a telephone call. Mr. Modi said the successful launch of Vikram-1 under Mission Agman is a major milestone in India's journey towards self-reliance in the space sector.
9: और दूसरा जमीन में भी उस रूप को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ.
4: Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh also congratulated Team Skyroot on the successful launch of Vikram-1. The United States and Iran exchanged fresh strikes today as fighting over the Strait of Hormuz intensified. The heaviest damage was reported in Kuwait, where Iranian strikes hit a water desalination plant and an oil facility, injuring several people and disrupting power generation. It was the second attack on a desalination plant in 2 days, raising concerns in a country that relies on desalination for about 90% of its drinking water. Kuwait Ministry of Foreign Affairs condemned the attacks, calling it a heinous Iranian aggression targeting critical civilian infrastructure and accused Iran of violating the international law. On the other hand, the U.S. Central Command said its latest strikes targeted Iranian surveillance sites, military logistics infrastructure, underground weapon storage and maritime capabilities this morning. Iranian authorities said at least 50 people have been killed and more than 500 injured in U.S. strikes in the past 3 weeks, including 8 killed in a strike on a bridge yesterday. The conflict has increasingly centered on the Strait of Hormuz following the collapse of an interim ceasefire. The Indian Olympic Association, IOA, today announced that Olympic medalists Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain will serve as India's flag and baton bearers at the opening ceremony of the Commonwealth Games in Glasgow. The opening ceremony of the scaled-down multi-sport event will be held on July 23rd at the OVO Hydro Arena. In a press release, IOA President P.T. Usha said the honour recognises their outstanding contribution to Indian sport and wished the entire contingent success at the Games. Mirabai has been India's leading weightlifter for close to a decade. She won the silver medal in the women's 49-kilogram category at the Tokyo Olympics in 2021 and followed it with gold at the 2022 Commonwealth Games in Birmingham. Lavlina Borgohain secured a bronze medal at the Tokyo Olympics and went on to win gold at the 2023 World Boxing Championships. In FIFA World Cup, European rivals France and England will lock horns in the third place playoff match at the Miami Stadium tonight. The match is scheduled to begin at 2:30 a.m. Indian Standard Time. Argentina and Spain will face each other in the finals of FIFA World Cup at the New York New Jersey Stadium tomorrow night. In badminton, Indian shuttler and two-time Olympic medalist PV Sindhu has reached the women's singles final at the Japan Open in Tokyo today. She entered the final after her opponent and world number 4 Chen Yufei of China retired during the second game of the match. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Uttar.

0: आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: के इस अंक में संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में
1: पुरा के पटवा सर के डोले मनवा की ही याद में उठत हिलो
0: स्मृति शेष में नमन फिल्म जगत की कुछ ऐसी हस्तियों को जो इस बीच हमसे बिछड़ गईं। जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशक विजया मेहता।
2: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, सवाल उठाना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
0: जानी माने फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी, जाने माने फिल्मकार, अभिनेता, गायक और संगीतकार की भाग्य

सबसे पहले संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष हैं। 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म हुआ था। जुलाई का महीना प्रेमचंद की याद का महीना होता है, इसलिए संपादकीय में आज हम चर्चा कर रहे हैं उन फिल्मों की जो प्रेमचंद की कृतियों पर आधारित हैं। प्रेमचंद का लेखन भारतीय समाज, भारतीय ग्रामीण जीवन, किसानों की पीड़ा और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का बाकायदा यथार्थवादी चित्रण करता है। आज भी प्रेमचंद उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं। शायद यही वजह है कि विभिन्न भाषाओं के फिल्मकार अपनी फिल्मों के लिए प्रेमचंद की कृतियों को चुनते रहे हैं। उनकी कृतियों पर बनी फिल्मों की बातें हम आगे करेंगे, पर पहले एक दिलचस्प बात। मुंशी प्रेमचंद स्वयं भी मुंबई सिनेमा जगत से जुड़े रहे थे। असल में हंस और जागरण पत्रिकाओं के संपादन की वजह से उन्हें जो नुकसान हुआ, उसके बाद उन्होंने फिल्मों के लिए लिखने और कमाई करने का मन बनाया था। सन 1934 में आर्थिक तंगी के चलते वे बंबई आए और फिल्म कंपनी अजंता सिनेटोन में लेखक के रूप में काम करने लगे। यहां उन्होंने दो फिल्में लिखी, मिल मजदूर और नवजीवन। अपने समय के विख्यात फिल्मकार नानूभाई वकील ने 1934 में उनके प्रख्यात उपन्यास सेवा सदन पर इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आई थी। उन्हें फिल्म जगत का काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपना अनुबंध तक पूरा नहीं किया और साल भर के अंदर ही बनारस लौट गए। मशहूर तमिल फिल्मकार कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम ने सन 1938 में सेवा सदन पर तमिल भाषा में इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी। हिंदी फिल्म के उलट तमिल फिल्म मूल कृति के प्रति ज्यादा ईमानदार थी। इस फिल्म में प्रसिद्ध गायिका एमएस सुब्बलक्ष्मी ने नायिका सुमन की भूमिका निभाई थी। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि पर इसी नाम की फिल्म बनी सन 1941 में।

मुंशी प्रेमचंद भले ही वापस लौट गए हों, लेकिन मुंबई में उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1959 में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा पर कृष्ण चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई, हीरा मोती। इस फिल्म में बलराज साहनी और निरूपा राय मुख्य भूमि

मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति गोदान सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास पर सन 1963 में इसी नाम की फिल्म आई, जिसे त्रिलोक जेटली ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थी राजकुमार, कामिनी कौशल, शशिकला और महमूद की। इस फिल्म के गाने अनजान ने लिखे और संगीत दिया जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने।

सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी ने प्रेमचंद के उपन्यास गबन पर इसी नाम की फिल्म बनाई थी। कलाकार थे सुनील दत्त, साधना, मीनू मुमताज, लीला मिश्रा और कन्हैया लाल वगैरह। संगीत शंकर जयकिशन का था।

0: बांग्ला के महानतम फिल्मकारों में गिने जाते हैं सत्यजीत रे। उन्होंने पूरे करियर में सिर्फ दो हिंदी फिल्में बनाई और संयोग देखिए कि दोनों ही फिल्में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित थी। सन 1977 में सत्यजीत रे ने बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये सत्यजीत रे की पहली हिंदी फिल्म थी जो प्रेमचंद की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। इसमें अवध के दो कुलीन मित्रों मीर और मिर्जा की कहानी है जो शतरंज में इतने डूबे रहते हैं कि अंग्रेजों के हाथों अपने राज्य के पतन की परवाह तक नहीं करते। मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार, सईद जाफरी, अमजद खान और शबाना आजमी वगैरह।
1: प्यादे तो ठीक है
2: जी,
1: तो वजीर और बादशाह भी ठीक है, लेकिन ये पीले घोड़े और रुख में गड़बड़ ना कीजिएगा।
2: सुन लीजिए ना, पीला टमाटर, नींबू घोड़ा, मिर्ची रुख।
0: सत्यजीत रे की दूसरी हिंदी फिल्म थी प्रेमचंद की कहानी सतगति पर आधारित इसी नाम की फिल्म। इस फिल्म में ओमपुरी, स्मिता पाटिल और मोहन अगाशे ने अभिनय किया था।
3: बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, आप दया करके चले चलते और इसका साइड सगन बिचार दे।
4: क्या खड़ा होगा यार,
5: मैं यहाँ खाली बैठा हूँ कि जब जो जहाँ बुलाए उसी दम चल पड़ो।
0: ये कहानी जातिगत शोषण की एक क्रूर और मार्मिक कथा है। बांग्ला के दिग्गज निर्देशक मृणाल सेन ने प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन को आधार बनाकर 1977 में तेलुगु की एक फिल्म बनाई ओका उरी कथा। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। छोटे पर्दे पर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां खूब लोकप्रिय हुई। दूरदर्शन के सुनहरे दिनों में उनके उपन्यास पर आधारित एक धारावाहिक आया निर्मला, जिसे बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा गुलजार ने दूरदर्शन पर प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियों को लेकर एक धारावाहिक बनाया तहरीर मुंशी प्रेमचंद की। ये सीरियल भी काफी चर्चित रहा। इसके तहत पूस की रात, ईदगाह, ठाकुर का कुआं और नमक का दरोगा जैसी कई कहानियों को छोटे पर्दे पर शिद्दत से पेश किया गया था। भले ही प्रेमचंद को जीते जी बंबई की फिल्मी दुनिया रास नहीं आई, पर कमाल की बात यह है कि उनके जाने के बाद सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे कालजयी फिल्मकारों ने उनकी कहानियों को वो सम्मान और गहराई दी जिसकी वे हकदार थी। मुंशी प्रेमचंद की स्मृति को हमारा नमन। ये था संपादकीय मुंशी प्रेमचंद की कृतियों पर बनी फिल्में। और अब स्मृति शेष। स्मृति शेष। स्मृति शेष में आज हम चार हस्तियों को नमन करने जा रहे हैं जो हमसे बीते दिनों बिछड़ गईं। सबसे पहले नमन करते हैं जानी मानी अभिनेत्री और फिल्मकार विजया मेहता को, जिन्होंने 30 जून को इस असार संसार से विदा ली। बरसों पहले की बात है, तकरीबन 90 का दशक, दूरदर्शन पर एक सीरीज आती थी लाइफलाइन। अस्पतालों के जीवन, डॉक्टरों और इंटर्न्स के जूझने और मरीजों से जुड़े अनुभवों पर केंद्रित था ये धारावाहिक। इसकी निर्देशक थी विजया मेहता। एक से बढ़कर एक कलाकार थे इस सीरीज में। तन्वी आजमी, के रैना, मोहन जोशी, शफी नामदार, इला अरुण, पंकज कपूर, ए के हंगल जैसी नामी हस्तियों का जुड़ाव था इस धारावाहिक से। विजया मेहता की पहचान सिर्फ लाइफलाइन टीवी सीरियल नहीं है, उन्होंने भारतीय फिल्म जगत को कुछ कालजयी और बेहद कलात्मक फिल्में दी हैं, पेस्टन जी, राव साहब और हमीदाबाई की कोठी वगैरह। उन्होंने रुपहले पर्दे पर कई बार अभिनय किया, खासतौर पर श्याम बेनेगल की फिल्म कलयुग में, गोविंद नेहलानी की फिल्म पार्टी में दमयंती रानी की उनकी भूमिका सबको याद है। उनकी निर्देशित फिल्म राव साहेब सन 1985 में आई थी और जयवंत दलवी के मराठी उपन्यास पर आधारित थी। इसी उपन्यास पर जयवंत दलवी ने बैरिस्टर नाम का एक नाटक भी रचा था। इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। विजया मेहता को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इसी फिल्म के लिए श्याम भूतकर को मिला सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1988 में विजया मेहता ने पेस्टन जी नामक फिल्म बनाई। असल में ये फिल्म मुंबई में 50 और 60 के दशक में मौजूद पारसी समुदाय की कहानी है।
6: तूने जरू की सूरत देखी है, उसकी आवाज सुनी है? 5 वर्ष के अंदर जरू की क्या हालत बना दी तूने। बच्चा मर गया, पप्पा स्ट्रोक थी बीमार, तू सुख नहीं बात करे। उस औरत ने चेरी को इतना सेल्फिश बना दिया है। पन खुदा सब देखता है, याद रख जे।
0: इस फिल्म को दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम का राष्ट्रीय पुरस्कार।
7: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी,
0: जाने माने फिल्मकार और अभिनेता अमोल पालेकर।
7: इसे दिग्गज कहना भी कम होगा, रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया। अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, अलग किस्म के सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया। मैं इतना ही कहूंगा कि विजया जी मेरी सीनियर थी, क्योंकि मैं सत्यदेव दुबे ग्रुप से था, उसको राइवल ग्रुप माना जाता था। मेरी और विजया जी की एक बड़ी प्यारी सी दोस्ती थी, एक बहुत अच्छा गहरा रिश्ता था।
0: विजय मेहता को हमारा विनम्र नमन। जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज नेहलानी का 4 जून को निधन हो गया। पहलाज नेहलानी की कहानी संघर्ष की दास्तान है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1948 को सिंध पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के बाद परिवार सब कुछ छोड़कर आ गया। पहलाज नेहलानी का बचपन मुंबई के कोलाबा में बीता। घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पहलाज नेहलानी ने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम पकड़ लिए। फिल्मों से बचपन से उन्हें लगाव रहा था। वे कोलाबा की टॉकीजों के बाहर घंटों खड़े रहते। जेब खर्च के लिए वो कभी कभी फिल्मों के टिकट ब्लैक किया करते थे। इसी रास्ते उनकी मुलाकात सिनेमा जगत के कुछ लोगों से हुई और वे फिल्म संसार में बतौर क्लैपर बॉय शामिल हो गए। यहां उन्हें समझ में आया कि अगर अच्छी जिंदगी बितानी है तो फिल्मों से जुड़ा कोई बिजनेस करना होगा। धीरे धीरे पैसे जमा करके उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। वे छोटी फिल्मों के राइट्स खरीदते और उन्हें छोटे थिएटर्स में लगवाते। कुछ ही सालों में पहलाज नेहलानी बंबई और गुजरात सर्किट के एक बड़े वितरक बन गए। सन 1982 में उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी शुरू की, चिराग दीप इंटरनेशनल। उनकी पहली फिल्म थी हथकड़ी, साल 1982। कड़ी कामयाब रही और पहलाज नेहलानी फिल्म जगत के दिग्गज प्रोड्यूसर्स में शामिल हो गए। सन 1985 के आसपास उन्होंने विरार के एक दुबले पतले लड़के को देखा जो कमाल का डांस करता था। उसका नाम था गोविंदा आहूजा। पहलाज नेहलानी ने इस नौजवान को लेकर 1986 में बनाई फिल्म इल्जाम। इस फिल्म ने गोविंदा को सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्में की। 1992 शोला और शबनम, 1993 आंखें,
8: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।
0: पहलाज नेहलानी की प्रमुख फिल्में हैं आग ही आग, पाप की दुनिया और अंदाज 1994।
9: किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो।
0: पहलाज नेहलानी भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। विनम्र नमन। 27 जून को हमसे विदा हो गए तमिल सिनेमा के जाने माने फिल्मकार, गायक और संगीतकार के भाग्यराज। भारतीय सिनेमा, विशेषकर तमिल और हिंदी सिनेमा के इतिहास में के भाग्यराज एक वन मैन आर्मी रहे। एक ही समय में फिल्म के लेखक, निर्देशक, अभिनेता और संगीतकार, सब कुछ एक साथ। मणिरत्नम से लेकर शोमैन राज कपूर तक पटकथा की उनकी जादुई समझ का लोहा मानते थे। जब रजनीकांत और कमल हासन अपनी अपनी स्टाइल से अभिनय की दुनिया पर राज कर रहे थे, तब के भाग्यराज एक साधारण, सीधे साधे और डरपोक आम आदमी के रूप में तमिल सिनेमा में दर्शकों के दिल में उतर गए। के भाग्यराज का जन्म 7 जनवरी 1993 को तमिलनाडु के इरोड जिले के एक साधारण गांव में हुआ था। भाग्यराज का मन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वे अक्सर स्कूल से भागकर सिनेमा घरों में पाए जाते थे। उनकी इस आदत से परेशान होकर उनके पिता ने एक बार हताश होकर कह दिया था, ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। पिता की ये कड़वी बात उनके दिल को चुभ गई। उन्होंने ठान लिया कि वे फिल्मी दुनिया में नाम कमाकर सबको दिखा देंगे। कॉलेज के दिनों में असफल होने के बाद अपनी जेब में कुछ रुपए और दिमाग में ढेर सारी कहानियां लेकर वे चेन्नई आ गए। यहां भाग्यराज ने कई हफ्तों तक निर्देशकों के दफ्तरों के चक्कर काटे। उन दिनों तमिल सिनेमा में एक नए निर्देशक अपनी यथार्थवादी फिल्मों से धूम मचा रहे थे। नाम था भारती राजा। भाग्यराज जब भारती राजा से काम मांगने गए तो उन्होंने कोई भारी भरकम डायलॉग नहीं सुनाया। उन्होंने भारती राजा को अपने गांव के किरदारों और वहां के लोगों के बात करने के अजीबोगरीब लहजे को इतने मजेदार ढंग से सुनाया कि भारती राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने तुरंत के भाग्यराज को अपना सहायक निर्देशक बना दिया। के भाग्यराज ने भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्म 16 वैथिनीले में बतौर सहायक निर्देशक काम किया। इस फिल्म के कलाकार थे कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया था। 2 सालों के अंदर भाग्यराज ने अपनी काबिलियत साबित की और साल 1979 में फिल्म सुवरिल्लाद सिथिरंगल में बतौर निर्देशक और अभिनेता के रूप में एक शानदार शुरुआत की। ये फिल्म सुपरहिट रही। अस्सी के दशक में भाग्यराज का नाम फिल्म हिट होने की गारंटी बन गया था। उन्होंने तमिल सिनेमा को 2 ऐसी फिल्में दी जो आज भी फिल्म मेकिंग के छात्रों को दिखाई जाती हैं। मौन गीतोंगल सन 1981 में आई ये फिल्म पति पत्नी के अहंकार पर बनी एक परिपक्व

सन 1987 में आई अनिल कपूर की फिल्म जुदाई के कई हिस्से इसी फिल्म से प्रेरित थे। सन 1983 में के भागीराज की फिल्म आई मुंथा नई मुदिचू। एक शिक्षक और गांव की शरारती लड़की की इस कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया।

और इधु नम्मा आलू। बहुत कम लोग जानते हैं कि 80 और 90 के दशक की हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्में के भाग्यराज के दिमाग की उपज थी। अमिताभ बच्चन के डबल रोल वाली फिल्म थी आखिरी रास्ता। ये फिल्म असल में के भाग्यराज की फिल्म ओरू कैथियन डायरी की आधिकारिक रीमेक थी। इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन तीनों की बागडोर खुद के भाग्यराज ने संभाली थी।

कन्नड़ की फिल्म राजा बाबू के भागीराज की सुपरहिट तमिल फिल्म रासुकुट्टी की रीमेक थी। जितेंद्र की फिल्म मास्टर जी के भागीराज की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुथानई मुदुचू पर आधारित थी। 27 जून 2026 को भारतीय सिनेमा का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। विनम्र नमन।

के भाग्यराज को याद करते हुए हमने जिक्र किया उन्हें पहला मौका देने वाले निर्देशक भारती राजा का। कैसी विडंबना है कि इसी महीने भारती राजा भी हमसे बिछड़ गए। 10 जून को उन्होंने आखिरी सांस ली। भारती राजा भारतीय सिनेमा के उन गिने चुने निर्देशकों में से एक हैं जिन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। महान निर्देशक मणिरत्नम से लेकर पटकथा के जादूगर के भाग्यराज तक बहुत सारी फिल्मी हस्तियां हैं जो भारती राजा को अपनी प्रेरणा मानती रही। भारती राजा तमिल सिनेमा के वो क्रांतिकारी फिल्म मेकर हैं जिन्होंने बंद स्टूडियो के शीशों को तोड़कर फिल्मों को गांव की असली मिट्टी, खुली हवा और यथार्थ की खुशबू से सराबोर कर दिया था। 70 के दशक के दक्षिण भारतीय सिनेमा का मतलब था भव्य सेट और स्टूडियो के भीतर पूरी शूटिंग, लेकिन भारती राजा ने आकर तमिल सिनेमा का पूरा भूगोल बदल दिया। भारती राजा का जन्म 17 जुलाई 1941 को तमिलनाडु के थेनी जिले के एक खूबसूरत गांव अल्ली नगरम में हुआ था। उनका असली नाम था चिन्नासामी। गांव के खेतों, तालाबों, लोकगीतों और ग्रामीण संस्कृति ने उनके मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ी। वे अक्सर गांव के लोगों के बर्ताव को बहुत बारीकी से देखते थे। फिल्मों में आने से पहले वे स्वास्थ्य विभाग में एक क्लर्क की नौकरी पर थे, पर उनका दिल थिएटर में धड़कता था। आखिरकार नौकरी छोड़कर वे चेन्नई आ गए। सन 1977 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई 16 वैथिनिले। इस फिल्म ने तमिल सिनेमा के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। जब भारती राजा ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से आउटडोर की तो चेन्नई के कई बड़े स्टूडियो मालिकों ने कहा, ये पागल लड़का पूरी फिल्म खराब कर देगा। आउटडोर में न अच्छी लाइटिंग होती है, न आवाज साफ आती है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने इतिहास रच दिया। इस फिल्म में भारती राजा ने कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी को कास्ट किया था।

में पटकथा के बेताज बादशाह के भाग्यराज उनके सहायक निर्देशक थे। भारती राजा की फिल्में सिर्फ गांव की खूबसूरती नहीं दिखाती, वे गांव में फैली रूढ़िवादिता और जातिवाद पर करारा प्रहार भी करती हैं। किसक के पोगुम रेल 1978 में आई ये फिल्म एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी है, जो अलग अलग गांवों में सामाजिक ताने बाने और रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द घूमती है। 1978 में आई सिगप्पू रोजक्कल, ग्रामीण फिल्मों के उस्ताद भारती राजा ने सबको चौंकाते हुए कमल हासन और श्रीदेवी को लेकर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाई थी। ये फिल्म बहुत कामयाब रही। 1987 में आई वेदम पुदिथु, ये फिल्म जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड पर तीव्र प्रहार करती है। तमिल सिनेमा में इतिहास रचने के बाद भारती राजा ने हिंदी सिनेमा का रुख किया। 1986 में उन्होंने बनाई सवेरे वाली गाड़ी, ये उनकी तमिल कल्ट फिल्म किसक के पोगुम रेल का हिंदी रीमेक था। कलाकार थे सनी देओल और पूनम ढिल्लो।

0: सन 1980 में भारती राजा ने अपनी फिल्म सिगप्पू रुज़ाक्कल का हिंदी रीमेक किया रेड रोज के नाम से।
1: हम जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते।
2: पिछले एक हफ्ते से मेरी बहन घर वापस नहीं लौट।
0: 1984 में आई आज का एमएलए राम अवतार। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शबाना आजमी ने काम किया था। 1983 में आई कुमार गौरव और पद्मिनी कोल्हापुरे के अभिनय वाली फिल्म लवर्स।

1984 में आई कानून क्या करेगा, सितारे थे सुरेश ओबेरॉय और दीप्ति नवल। भारती राजा को 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। 1982 में फिल्म अनाथा रथम के लिए, 1986 में फिल्म मुथल मरियाथाई के लिए, 1988 में फिल्म वेदम पुदिथु के लिए, 1985 में फिल्म करुथम्मा के लिए, 1996 में फिल्म अंथी मंथराई के लिए और साल 2001 में कडाल पुक्कल के लिए। भारत सरकार ने सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें साल 2004 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। विनम्र नमन।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का जुलाई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया।

0: आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है देवव्रत मिश्र का सितार वादन। वाराणसी के प्रतिष्ठित संगीत घराने में जन्मे देवव्रत मिश्र ने अपनी मां प्रमिला मिश्रा से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और अपने पिता पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र के मार्गदर्शन में सितार की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार देवव्रत मिश्र ने ठुमरी परंपरा और बनारस घराने के गायकी की विशिष्ट बारीकियां अपने दादाजी ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्र से सीखी। इस प्रभाव ने उनके सितार वादन को एक अनूठी पहचान दी। सितार वादन की शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट और गोल्ड मेडल के साथ संगीत प्रवीण देवव्रत मिश्र ICCR के सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। उन्होंने भारत और विदेशों में कई प्रतिष्ठित मंचों पर सितार वादन की सफल प्रस्तुतियां दी हैं। इनमें तानसेन संगीत समारोह, संकट मोचन संगीत समारोह, सप्तक संगीत समारोह और अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला प्रमुख हैं। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे कई देशों में अपने सितार वादन से संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया है। देवव्रत मिश्र को नेशनल यूथ फेस्टिवल अवार्ड, स्वरमणि अलंकरण, काशी रत्न संगीत शिखर सम्मान, BHU कौस्तुभ सम्मान, जर्मन बेस्ड जैज क्रिटिक अवार्ड और वर्ल्ड म्यूजिक विजनरी अवार्ड USA से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार प्रशांत मिश्र। देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का आरंभ राग जोग से कर रहे हैं। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल निबद्ध हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक टुनाइट वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाय देवव्रत मिश्रा। बॉर्न इनटू डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिक घराना ऑफ वाराणसी, देवव्रत मिश्रा रिसीव्ड इनिशियल म्यूजिक ट्रेनिंग फ्रॉम हिज मदर प्रमिला मिश्रा and underwent formal training in the sitar under the guidance of his father, Padmashri Pandit Shivnath Mishra. An A-grade artist of Akashvani, Devvrat Mishra received distinctive lesson of Thumri tradition and vocal style of the Banaras Gharana from his grandfather, the great Thumri exponent Pandit Mahadev Prasad Mishra. An influence that lent a unique identity to his sitar playing. Postgraduate in sitar and Sangeet Praveen with gold medal, Devvrat Mishra is also an empaneled artist of ICCR. He has delivered successful sitar performances on numerous prestigious platforms, both in India and abroad. Notable among these are the तानसेन संगीत समारोह, संकट मोचन संगीत समारोह, सप्तक संगीत समारोह एंड द इंटरनेशनल ध्रुपद मेला। ही हैज कैप्टिवेटेड ऑडियंसेस विद हिज सितार रिसाइटल्स इन मेनी कंट्रीज सच एज USA, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी। देवव्रत मिश्रा हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल यूथ फेस्टिवल अवार्ड, स्वरमणि अलंकरण, काशी रत्न संगीत शिखर, BHU कौस्तुभ सम्मान, जर्मन बेस्ट जैज क्रिटिक अवार्ड एंड द वर्ल्ड म्यूजिक विजनरी अवार्ड USA। इन टुनाइट्स प्रोग्राम अकंपनीइंग हिम ऑन तबला इज प्रशांत मिश्रा, एन ए ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। देवव्रत मिश्रा इज बिगनिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विद राग जोग, विलंबित एंड ध्रुतगत सेट टू तीन ताल।

0: आप सुन रहे थे राग जोग। देवव्रत मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग गोरख कल्याण में सितार वादन। मध्य लय रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत तीन ताल में है।
1: यू जस्ट हर्ड राग जोग। देवव्रत मिश्रा इज नाउ प्रेजेंटिंग सितार रिसाइटल इन राग गोरख कल्याण। मध्य लय इज सेट टू रूपक ताल एंड द्रुत इज इन तीन ताल।

0: राग गोरख कल्याण के बाद देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का समापन दादरा ताल में निबद्ध राग मिश्र पीलू में धुन से कर रहे हैं।
1: आफ्टर राग गोरख कल्याण, देवव्रत मिश्रा इज कंक्लूडिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विथ धुन कंपोज्ड इन राग मिश्र पीलू सेट टू दादरा ताल।

0: ये थी सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र पीलू में धुन। कलाकार थे देवव्रत मिश्र। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आपके साथ तबले पर संगति की प्रशांत मिश्र ने। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर रिकॉर्ड इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: दिस वॉज धुन इन राग मिश्र पीलू प्लेड ऑन सितार बाई देवव्रत मिश्रा इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक अकंपनीइंग हिम ऑन तबला वॉज प्रशांत मिश्रा अर्लियर रिकॉर्डेड एट आकाशवाणी वाराणसी दिस प्रोग्राम केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।

0: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई है। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नबीदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर को और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कांडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गातादर रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र अडप्पा बीजे अनुष्ठान आज पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे से अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

गहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 11 बज रहे हैं। ये थी हमारी आज की, क्षमा जाते, 11:10 हो रहे हैं। ये थी हमारी आज की सभा। हमारी सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए